हम आकाशवाणी ले से बोल रहे हैं। सुबह के 7:32 हो रहे हैं। प्रस्तुत है श्रीमती दोचे डोलमा से कार्यक्रम रोशनी।

हम सभी जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हम अकेले जी नहीं सकते, अकेले प्रगति नहीं कर सकते और अकेले खुश भी नहीं रह सकते। हमारा जीवन तभी सार्थक होगा जब हम दूसरों के जीवन में खुशी, सहारा और उम्मीद का दीप जला सकें। दूसरों की मदद करना केवल एक अच्छा काम नहीं बल्कि हमारे मानवीय अस्तित्व का मूल आधार है। दोस्तों, हम देखते हैं कि प्रकृति भी हमें इसी सीख से परिचित कराती है। जैसे पेड़ अपनी छाया, फल और ऑक्सीजन किसी से कुछ मांगे बिना दे देते हैं। नदियाँ अपना जल सबके लिए बहाती हैं। सूरज हर रोज बिना किसी भेदभाव के उजाला बांटता है। प्रकृति का हर तत्व निस्वार्थ सेवा और सहयोग का संदेश देता है। जरूरतमंद की मदद करने का मतलब सिर्फ आर्थिक सहायता देना नहीं है। किसी उदास व्यक्ति को दो शब्द हौसले के बोल देना भी मदद है। किसी अजनबी को रास्ता दिखाना भी मदद है। घर के कामों में माता पिता का हाथ बंटाना, कक्षा में कमजोर विद्यार्थियों की पढ़ाई में सहायता करना, यह सब मदद के ही रूप हैं। जब हम किसी का भला करते हैं तो सबसे पहले परिवर्तन हमारे भीतर होता है। हमें भीतर से संतोष मिलता है, आत्मविश्वास बढ़ता है और हमारे जीवन में सकारात्मकता आती है। कई बार एक छोटी सी मदद किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। एक सही समय पर दिया गया सहयोग किसी को निराशा से निकलकर आशा के मार्ग पर ला सकता है। इतिहास भी यही बात का प्रमाण है कि महान वही कहलाए जिन्होंने दूसरों के लिए योगदान दिया। चाहे वह महात्मा गांधी हो, मदर टेरेसा हो, स्वामी विवेकानंद या डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इन सभी की महानता की जड़ में एक ही बात है, सेवा, सहयोग और मानवीयता। हमारा समाज तभी उन्नति कर सकता है जब हर व्यक्ति यह समझे कि मुझे क्या मिला से ज्यादा महत्वपूर्ण है मैंने क्या दिया। यह सोच न सिर्फ समाज को मजबूत बनाती है बल्कि देश को भी आगे बढ़ाती है। आज हम सभी को ये संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने जीवन में दूसरों की सहायता को अपना कर्तव्य समझेंगे। जरूरत पड़ने पर आगे बढ़कर हाथ थामेंगे। ना कोई बड़ा ना कोई छोटा, हर व्यक्ति हमारे सम्मान और सहायता के योग्य है। अंत में मैं केवल इतना कहना चाहूंगी, यदि आप चाहते हैं कि दुनिया बेहतर बने, शुरुआत स्वयं से करें। मदद करना केवल एक कार्य नहीं बल्कि एक आदत बनाएं, क्योंकि अगर हम एक दूसरे का हाथ थामेंगे तो कोई भी मंजिल कठिन नहीं होगा।

0: ndax sang chara ngai tat banang shin dikrim sanan chat nga ji
1: Namaskar,
0: akashwani lele shun dik tang nga to kuchu chot kya cha
1: do
0: ka sata akashwani dilli le samachar prabhat tang morning news sanan
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा। जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा शुरू। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई सुरक्षा कारणों से अपने पिता अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होंगे। पुर्तगाल और स्पेन ने फीफा विश्व कप के अंतिम 16 में जगह बनाई और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका के खिलाफ भारत के दो मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का कार्यक्रम घोषित किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। इनमें पाकिस्तान से संचालित सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। नई दिल्ली में कल भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में हुए पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने पिछले वर्ष 10 नवंबर को दिल्ली में हुई आतंकी घटना की भी कड़ी निंदा की। दोनों देशों ने इस निंदनीय कृत्य के अपराधियों, आयोजकों और वित्त पोषकों को बिना किसी देरी के सजा दिलाने का आह्वान किया। श्री मोदी और सुश्री ताकाइची ने अलकायदा, जैश ए मोहम्मद सहित संयुक्त राष्ट्र में सूचीबद्ध सभी आतंकी समूहों तथा संस्थाओं के खिलाफ समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने सुगम और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता को दोहराया। दोनों नेताओं ने क्वाड ढांचे के अंतर्गत व्यावहारिक सहयोग बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता भी व्यक्त की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय सुगमता मजबूत करने के लिए आसियान सदस्य देशों के साथ सहयोग के महत्व का भी उल्लेख किया। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत और जापान ने भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के रूप में आर्थिक सुरक्षा के महत्व का उल्लेख किया है। आर्थिक सुरक्षा सहयोग पर भारत जापान संयुक्त घोषणा पत्र में कहा गया है कि आर्थिक सुरक्षा साझेदारी आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और आपसी हितों पर आधारित है। दोनों देश 5 प्रमुख क्षेत्रों, सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा तथा औषधि में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करेंगे। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में उनके परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा है। आयोग ने कहा है कि उसने संबंध में दोनों गुटों के दावों और प्रतिदावों पर ममता बनर्जी और पार्टी नेता रुणब्रत बनर्जी को अलग अलग पत्र लिखे हैं। आयोग ने यह भी कहा कि दोनों पक्षों को सोमवार शाम 5:30 बजे तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। ये घटनाक्रम तृणमूल कांग्रेस के अंदर पार्टी के संगठन की संरचना और पार्टी की ओर से कार्य करने के अधिकार को लेकर चल रहे विवाद के बीच आया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के संसदीय और विधायी कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। इनमें समिति प्रणाली, वित्तीय निगरानी, संसदीय विशेषाधिकार और विधानसभाओं में उभरती डिजिटल पहल शामिल है। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा, जिसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर चर्चा की जाएगी। कार्यशाला की अध्यक्षता केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह करेंगे और केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। कार्यशाला के दौरान वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा जारी 16वें वित्त आयोग के ग्रामीण स्थानीय निकाय अनुदानों को लागू करने के दिशा निर्देशों पर चर्चा होगी। विचार विमर्श से केंद्र राज्य सहयोग को सुदृढ़ करने और 2047 तक विकसित भारत बनाने की परिकल्पना के अनुरूप पंचायतों को बेहतर शासन, बुनियादी सुविधाओं, सार्वजनिक सेवाओं और समावेशी ग्रामीण विकास प्रदान करने के लिए सशक्त बनाने का मजबूत ढांचा विकसित करने में सहायता मिलने की उम्मीद है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: अभियान
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते टीबी रोगी व परिजन को पोषण जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर का दर्शन करेंगे। ये यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी।
4: बम बोले और हर हर महादेव के जयकारों के बीच अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था आज सुबह पवित्र गुफा की तरफ रवाना हो गया। अगले 57 दिनों की इस यात्रा के दौरान लाखों श्रद्धालु नुनवन पहलगाम और बालतल रास्तों से होते हुए बाबा बर्फानी के यहां अपनी हाजिरी देंगे। दोनों रास्तों पर अधिकारियों ने मेडिकल कैंप, आराम करने की जगहें, लंगर, पीने के पानी की सुविधा और मौसम की पल पल की जानकारी रखने जैसे व्यापक इंतजाम किए हैं। यात्रा को सुरक्षित रूप से पूरा करने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस बीच यात्रियों का दूसरा जत्था आज सुबह जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से निकलकर घाटी की तरफ रवाना हो गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।

0: ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई अपने पिता और पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार में सुरक्षा कारणों से शामिल नहीं होंगे। भारत में ईरान के प्रतिनिधि आयतुल्ला हकीम इलाही ने बताया कि धमकियों और निगरानी जोखिमों के कारण मुज्तबा खामनेई का सार्वजनिक रूप से सामने आना सुरक्षित नहीं है। ईरान में पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम 4 से 9 जुलाई तक ईरान और इराक में होगा। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरिटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। इस पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि समारोह में इन दोनों भारतीय प्रतिनिधियों की उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यता से जुड़े संबंधों के महत्व का परिचायक है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में 27 लोग मारे गए और 90 लोग घायल हो गए हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि बुधवार रात को हुई ये बमबारी यूक्रेन की ओर से रूस में नागरिक ठिकानों पर किए गए लंबी दूरी के हमलों के जवाब में थी। रूस पर किए जा रहे लगातार हमलों को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने 40 दिनों का ताबड़तोड़ हमला बताया है। सीरिया में कल राजधानी दमिश्क के एक कैफे में हुए विस्फोट में कम 9 लोगों की मौत हो गई। सीरिया के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इस घटना में 20 लोग घायल हुए हैं। फिलहाल किसी भी गुट ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। सुरक्षा बलों ने हमले की जांच के लिए इलाके की घेराबंदी कर दी है। दमिश्क के गवर्नर माहिर मारवान इदलिबी ने कहा है कि दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार।
1: स्पेन और पुर्तगाल फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। पुर्तगाल ने आज क्रोएशिया को 2-1 से हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। इससे पहले स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की की। मंगलवार को डलास में प्री क्वार्टर फाइनल में स्पेन का सामना पुर्तगाल से होगा। इससे पहले फ्रांस, नॉर्वे, कनाडा, मोरक्को, ब्राजील, पैराग्वे, बेल्जियम, अमरीका और इंग्लैंड भी अंतिम 16 में पहुंच चुके हैं। प्री क्वार्टर फाइनल में सोमवार को इंग्लैंड का सामना मैक्सिको से होगा। अमरीका मंगलवार को बेल्जियम के साथ खेलेगा। इस बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका और भारत के बीच 2 मैच की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। यह श्रृंखला 15 से 27 अगस्त तक खेली जाएगी। पहला टेस्ट 15 अगस्त से गोल अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट 23 अगस्त से कोलंबो में खेला जाएगा। ये श्रृंखला ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है। उधर इंग्लैंड ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। लंदन में कल दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 40 रन से हरा दिया। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने पहले सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर खिताबी मुकाबले में जगह बनाई। रविवार को लंदन के लॉर्ड्स में फाइनल में इंग्लैंड का सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: और खेल खबरों के बाद एक दुखद घटना। आंध्र प्रदेश के मरकापुरम जिले में आज सुबह कंभम के पास एक सड़क दुर्घटना में 4 लोगों की मौत हो गई और 8 अन्य घायल हो गए। ये दुर्घटना खाद से लदे एक ट्रक के ऑटो रिक्शा को टक्कर मारने से हुई। घायलों को गिदलूर और कुंभम के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। बाद मौसम के, उत्तराखंड में मॉनसून पूर्ण रूप से सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने आज कई जिलों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। नैनीताल और बागेश्वर जिलों में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, चमोली, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग में भी कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश की संभावना है। विभाग ने संवेदनशील क्षेत्रों को लोगों को सतर्क रहने और यात्रा करते समय सावधानी बरतने की सलाह दी है। दक्षिण पश्चिम मानसून दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ चुका है। मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, केरल, माहे, उत्तराखंड और विदर्भ में मूसलाधार बारिश हो सकती है। दिल्ली में दिन में बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश की संभावना है। राजधानी में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: धन्यवाद फरहत। भारत और जापान के बीच कई महत्वपूर्ण समझौते होने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने सचित्र प्रकाशित किया है। जनसत्ता लिखता है, भारत और जापान मिलकर बनाएंगे सैन्य साजो सामान, मोदी और तकाईची में शिखर वार्ता। अमर उजाला ने जापान के प्रधानमंत्री के संतूर पर हाथ आजमाने का चित्र दिया है। पत्र लिखता है, संतूर बजाकर चौंकाया, पीएम मोदी समेत कई लोग हैरान। सुप्रीम कोर्ट द्वारा एआई से बने फर्जी फैसलों की कानूनी मिसालें देने पर सख्त रुख अपनाने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने दिया है। दैनिक जागरण लिखता है, एआई से लिखे गए फर्जी फैसले जहरीली गैस जैसे, अदालत ने कहा फैसलों के प्रति जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। नीट जेईई में निर्णायक हो सकते हैं 12वीं के अंक, नीट पुनर्परीक्षा के नतीजे 20 जुलाई को, हिंदुस्तान की सुर्खी है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में फिर राम मंदिर परिसर पहुंची एसआईटी, रडार पर हैं 100 लोग, ट्रस्टी से पूछताछ, नवभारत टाइम्स की खबर है। शेयर बाजार में निवेशकों पर 3 लाख करोड़ की बारिश, सेंसेक्स में 579 अंकों का उछाल, लोकसत्य की खबर है। अमीर युवाओं की पसंद बदली, 40% से ज्यादा भारतीय छुट्टियां मनाने के लिए अब कोरिया, मिस्र, जापान, मालदीव जैसे नए देश जा रहे, दैनिक भास्कर की सुर्खी है। पत्र लिखता है, ट्रेवल इंश्योरेंस लेने वाले हर साल 10% बढ़ रहे। खामेनेई के अंतिम संस्कार यात्रा से पहले हवाई निगरानी हुई कड़ी, कई राष्ट्राध्यक्षों के साथ 2 करोड़ लोग जुड़ सकते हैं, राजस्थान पत्रिका की खबर है। कई समाचार पत्रों ने देश भर के कई राज्यों में हो रही बारिश का चित्र दिया है। देश बंधु की सुर्खी है, दिल्ली में मानसून ने दी दस्तक, लोगों को तेज धूप और गर्मी से मिली राहत, राजस्थान पत्रिका के शब्द हैं, राजस्थान और दिल्ली पहुंचा मानसून, 2 दिन अति बारिश का अलर्ट। हिंदुस्तान ने संपादकीय पन्ने पर भारत जापान के सभ्यतागत संबंध पर लेख प्रकाशित किया है, शीर्षक है, भारत जापान रिश्तों में नई गर्मजोशी।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाईची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा। जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा शुरू। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई सुरक्षा कारणों से अपने पिता अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होंगे। पुर्तगाल और स्पेन ने फीफा विश्व कप के अंतिम 16 में जगह बनाई। और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका के खिलाफ भारत के 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का कार्यक्रम घोषित किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Prime Minister Narendra Modi and his Japanese counterpart Sanae Takaichi strongly condemn terrorism and violent extremism in all its forms and manifestations. Election Commission seeks responses from rival factions of Trinamool Congress regarding competing claims about parties' organizational elections and authorized signatories. Annual Sri Amarnath Yatra begins from both Pehelgam and Baltal routes in Jammu and Kashmir. Iran Supreme Leader Mojtaba Khamenei to skip father Ali Khamenei's funeral over security fears. Spain beat Austria 3-0 to enter round of 16 at FIFA World Cup. And BCCI announces schedule for India's 2-match test series against Sri Lanka to be played from the 15th to the 27th of next month. Prime Minister Narendra Modi and his Japanese counterpart Sanae Takaichi have unequivocally and strongly condemned terrorism and violent extremism in all its forms and manifestations, including cross-border terrorism from Pakistan. The 16th India-Japan Annual Summit joint statement said both leaders condemned in the strongest terms the terrorist attack in Pehelgam, Jammu and Kashmir on the 22nd of April last year. The leaders also took note of the United Nations Security Council monitoring team report of 29 July 2025 mentioning the resistance front. We have a report.
4: Prime Minister Narendra Modi and Japanese Prime Minister Sanae Takaichi also strongly condemned the terrorist attack in Delhi on November last year. The two leaders called for the perpetrators, organizers and financiers of the reprehensible act to be brought to justice without delay. They also called for concerted action against all UN-listed terrorist groups and entities including Al-Qaeda, ISIS, Lashkar-e-Tayyaba, Jaish-e-Mohammed and their proxies. The two prime ministers stressed the need for resolute action to eliminate terrorists, safe havens, dismantle terrorist financing networks and their nexus with transnational crime and halt the cross-border movement of terrorists. Towards the shared goal of a resilient and prosperous Indo-Pacific, the two prime ministers reiterated their commitment to advancing cooperation among like-minded countries. They welcomed the steady progress under the Quad framework and reaffirmed their commitment to enhancing practical cooperation. Saklayan Akhtar for Akashwani News, Delhi.
3: India and Japan have reaffirmed the shared commitment to the salience of economic security as one of the foundational pillars of the India-Japan Special Strategic and Global Partnership. The India-Japan Joint Declaration on Economic Security Cooperation said the economic security partnership is underpinned by mutual trust, shared values and aligned interest, and is a recognition that the prosperity, security and economic futures of the two sides are deeply intertwined. It added that this declaration is a recognition that the synergy between the updated free and open Indo-Pacific and the mutual and holistic advancement for security and growth across regions, Mahasagar Initiative, provides both sides with the required impetus to furthering economic security cooperation. Election Commission of India, ECI, has sought responses from rival factions of All India Trinamool Congress, AITC, regarding competing claims about the party's organizational elections and authorized signatories. We have a report.
5: The Election Commission said in a statement that it has written separate letters to Mamata Banerjee and party leader Ritobroto Banerjee regarding the claims and counterclaims by both factions with respect to organizational elections and authorized signatories of the AITC. The Commission said both sides have been directed to submit their responses by 5:30 p.m. on Monday. The development comes amid a dispute within the Trinamool Congress over the party's organizational structure and the authority to act on its behalf before the Election Commission. Such disputes are governed by the Election Symbols Reservation and Allotment Order, under which the Commission examines rival claims, supporting documents and submissions from the contending factions before taking a decision where necessary. The ECI has not expressed any view on the merits of the rival claims and has sought written responses from both factions before proceeding further in the matter. Chirag Jha, Akashwani News, Delhi.
3: Iran's Supreme Leader Mujtaba Khamenei will not attend the funeral of his father, former Supreme Leader Ali Khamenei, due to security concerns. According to the current leader's representative in India, Ayatollah Hakim Ilahi, threats and surveillance risks made it unsafe for the leader to appear in public. Early on Wednesday, Iran's Foreign Minister Sayed Abbas Araghchi issued a sharp warning to the United States. In a social media post, Araghchi urged President Donald Trump to restrain its close ally Israel from threatening Iran after Israeli Defense Minister Israel Katz said that Iran's Supreme Leader Mojtaba Khamenei was marked for death. He said any threat against Iran's leadership would receive a strong response. Iran is scheduled to hold funeral ceremonies for former Supreme Leader Ali Khamenei from July 4th to July 9th in Iran and Iraq. Governor of Bihar, Lieutenant General retired Syed Atta Hasnain and Minister of State for External Affairs Pavitra Margarita will visit Iran today to attend the funeral ceremony of late Supreme Leader of Iran Grand Ayatollah Sayyid Ali Khamenei. Minister of External Affairs said the high-level representation in the ceremony underscores the importance of civilizational ties, including people-to-people connection between the two countries, providing a robust foundation to political and economic engagements. Lok Sabha Speaker Om Birla will inaugurate the two-day orientation program for newly elected members of the West Bengal Legislative Assembly in Kolkata today. The program aims to familiarize newly elected members with various aspects of parliamentary and legislative functioning, including committee systems, financial oversight, parliamentary privileges and emerging digital initiatives in legislatures. The inaugural session of the program will be attended by Deputy Chairperson of the Rajya Sabha, Harivansh, Union Minister of Parliamentary Affairs Kiran Rijiju, Chief Minister of West Bengal Shubhendu Adhikari and others. Ministry of Panchayati Raj will organize a national workshop of state Panchayati Raj ministers in New Delhi today to deliberate on recommendations of the 16th Finance Commission. The workshop will be chaired by Union Minister of Panchayati Raj, Rajiv Ranjan Singh, Lallan Singh, in the presence of Union Minister of State, Professor S.P. Singh Baghel. During the workshop, the discussions will focus on the operational guidelines for implementation of the 16th Finance Commission, rural local body grants issued by the Department of Expenditure, Ministry of Finance. This is Akashvani giving you the news. For quick news updates around the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download news on AIR app. The annual Sri Amarnath Yatra began this morning from both Pehelgam and Baltal routes in Jammu and Kashmir. Lakhs of devotees from across India are expected to undertake the sacred journey to the Amarnath Cave Shrine during the 57-day-long pilgrimage. Pilgrims travel to the holy Amarnath Cave, located at an altitude of nearly 3,888 meters, to seek the blessings of Lord Shiva and witness the naturally formed ice shivling. The Yatra will culminate on August 28, coinciding with the festival of Raksha Bandhan. The first batch of pilgrims, comprising more than 4,800 people, including women and children, left for Amarnath Cave Shrine from twin base camps of Noonwan and Baltal this morning. We have more from a correspondent.
6: Amid chants of Bam Bam Bole and Har Har Mahadev, thousands of Yatris embarked on a tough but spiritually enriching journey to the 3,880-meter high cave shrine this morning. During the 57-day pilgrimage, lakhs of devotees are expected to take up the 48-kilometer route from Nunwan Pahalgam in Anantnag district and the shorter but steeper 14-kilometer route from Baltal in Gandharbal district and pay obeisance at the holy shrine. Along the twin routes, authorities have put in place comprehensive facilities including medical camps, resting points, langars, drinking water stations and real-time weather monitoring systems. Meanwhile, the second batch of Yatris has left from Jammu this morning and is expected to reach the valley later this afternoon. Ishfaq Shah, Akashvani News, Srinagar.

0: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों
1: के लिए है।
2: बीप तुमने इसे मोबाइल चार्ज करना,
1: दिमाग चार्ज कर अपना।
3: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
1: देखा
2: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल।
3: अब क्या करोगे?
2: फ्री वाईफाई है ना?
1: बुद्धू सुधर जा।
3: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई,
2: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
3: RBI कहता है
4: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।

नाक संगी शरंगे बचपन फिल्मिलु किशोर कुमार ने सना जाच लुयांग स्टिक का निनपिन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल कसता फिल्मिलु टिक्षे में स्टिंगजुक पेका मिस्टर एंड मिसेस 55 फिल्मिलु गीता दत्त ने सना जात मचरू सुल्तानपुरी तोम्सका निलुआ यांग स्टिकन ओपी नायर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाईची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। इनमें पाकिस्तान से संचालित सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। नई दिल्ली में कल भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में हुए पहलगाम हमले की कड़ी निंदा की।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाईची ने पिछले वर्ष 10 नवंबर को दिल्ली में हुई आतंकी घटना की भी कड़ी निंदा की। दोनों देशों ने इस निंदनीय कृत्य के अपराधियों, आयोजकों और वित्त पोषकों को बिना किसी देरी के सजा दिलाने का आह्वान किया। श्री मोदी और सुश्री तकाईची ने अलकायदा, जैश ए मोहम्मद सहित संयुक्त राष्ट्र में सूचीबद्ध सभी आतंकी समूहों तथा संस्थाओं के खिलाफ समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने सुगम और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता को दोहराया। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत और जापान ने भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के रूप में आर्थिक सुरक्षा के महत्व का उल्लेख किया है। आर्थिक सुरक्षा सहयोग पर भारत जापान संयुक्त घोषणा पत्र में कहा गया है कि आर्थिक सुरक्षा साझेदारी आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और आपसी हितों पर आधारित है। दोनों देश 5 प्रमुख क्षेत्रों सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा तथा औषधि में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करेंगे। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंदी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में उनके परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा है। आयोग ने इस संबंध में दोनों गुटों के दावों और आपत्तियों पर ममता बनर्जी और पार्टी नेता ऋतव्रत बनर्जी को अलग अलग पत्र लिखे हैं। आयोग ने कहा कि दोनों पक्षों को सोमवार शाम 5:30 बजे तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के संसदीय और विधायी कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य के लिए विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। इनमें समिति प्रणाली, वित्तीय निगरानी, संसदीय विशेषाधिकार और विधानसभाओं में उभरती डिजिटल पहल शामिल है। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा, जिसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर चर्चा की जाएगी। कार्यशाला में वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा जारी 16वें वित्त आयोग के ग्रामीण स्थानीय निकाय अनुदानों को लागू करने के दिशा निर्देशों पर चर्चा होगी। कार्यशाला की अध्यक्षता केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह करेंगे। ईरान के सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामेनेई अपने पिता और पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में सुरक्षा कारणों से शामिल नहीं होंगे। भारत में ईरान के प्रतिनिधि आयतुल्ला हकीम इलाही ने बताया कि सुरक्षा जोखिमों के कारण मुस्तफा खामेनेई का सार्वजनिक रूप से सामने आना सुरक्षित नहीं है। ईरान में पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम 4 से 9 जुलाई तक ईरान और इराक में होगा। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थयात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर का दर्शन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में वार्षिक अमरनाथ यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। एक पत्र में श्री मोदी ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में एक सनातन अध्याय बताया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका और भारत के बीच क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला के मैचों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। ये श्रृंखला 15 से 27 जुलाई तक खेली जाएगी। पहला टेस्ट 15 जुलाई से गाले अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में और दूसरा टेस्ट 23 जुलाई से कोलंबो में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकायची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। ईरान के सर्वोच्च नेता मुश्तबा खामनेई सुरक्षा कारणों से अपने पिता अली खामनेई की अंतिम यात्रा में शामिल नहीं होंगे। बिहार के राज्यपाल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार समारोह में शामिल होंगे। यूक्रेन की राजधानी कीव पर हुए रूस के हमलों में 27 लोग मारे गए। पुर्तगाल और स्पेन ने फीफा विश्व कप के अंतिम 16 में जगह बनाई और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका के खिलाफ भारत के 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का कार्यक्रम घोषित किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकायची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। इनमें पाकिस्तान से संचालित सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। नई दिल्ली में कल भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। एक रिपोर्ट।
1: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। पूरे विश्व में सुजुकी की 2/3 कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
0: और आइए ज्यादा जानकारी के लिए चलते हमारे संवाददाता सखलीन अख्तर के पास।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकायची ने पिछले वर्ष 10 नवंबर को दिल्ली में हुई आतंकी घटना की भी कड़ी निंदा की। दोनों देशों ने इस निंदनीय कृत्य के अपराधियों, आयोजकों और वित्त पोषकों को बिना किसी देरी के सजा दिलाने का आह्वान किया। श्री मोदी और सुश्री ताकायची ने अलकायदा, जैश ए मोहम्मद सहित संयुक्त राष्ट्र में सूचीबद्ध सभी आतंकी समूहों तथा संस्थाओं के खिलाफ समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने सुगम और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता को दोहराया। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत और जापान ने भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के रूप में आर्थिक सुरक्षा के महत्व का उल्लेख किया। आर्थिक सुरक्षा सहयोग पर भारत जापान संयुक्त घोषणा पत्र में कहा गया है कि आर्थिक सुरक्षा साझेदारी आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और आपसी हितों पर आधारित है। इसके अनुसार दोनों देशों की समृद्धि, सुरक्षा और आर्थिक भविष्य आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। दोनों देश 5 प्रमुख क्षेत्रों, सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा तथा औषधि क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष हैं और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, AI, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में समझौते किए हैं। ये समझौते दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के अनुकूल और असीमित बनाएंगे। श्री मोदी ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है।
1: आर्थिक दुनिया, सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है। लेकिन जैसे कहा जाता है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ, द टफ गेट गोइंग। भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की GDP ग्रोथ 7.7% रही। इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजन फिलोसॉफी यानी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट अपनाते हुए अपने इकोनॉमिक DNA को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं।
0: विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष के वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद से 120 से अधिक बिजनेस टू बिजनेस समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
2: दोनों नेताओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र और उससे अलग शांति, समृद्धि तथा स्थिरता सुनिश्चित करने में विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की भूमिका को स्वीकार किया है। ऊर्जा और आर्थिक सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं।
3: इन द इंडो पैसिफिक एंड इवन बियॉन्ड इज कंसर्न।
0: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई अपने पिता और पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार में सुरक्षा कारणों से शामिल नहीं होंगे। भारत में ईरान के प्रतिनिधि आयतुल्ला हकीम इलाही ने बताया कि धमकियों और निगरानी जोखिमों के कारण मुज्तबा खामनेई का सार्वजनिक रूप से सामने आना सुरक्षित नहीं है। इससे पहले बुधवार को ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराग़ची ने अमरीका को कड़ी चेतावनी दी। इसराइल के रक्षा मंत्री इसराइल कार्ट्ज़ ने कहा था कि ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई इसराइल के निशाने पर हैं। श्री अराग़ची ने कहा कि ईरानी नेतृत्व के खिलाफ किसी भी धमकी का कड़ा जवाब दिया जाएगा। ये बयान कतर की राजधानी दोहा में अमेरिका और ईरान के वार्ताकारों के बीच बातचीत के बाद आए। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि समारोह में इन दोनों भारतीय प्रतिनिधियों की उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यता से जुड़े संबंधों के महत्व का परिचायक है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में 27 लोग मारे गए और 90 लोग घायल हो गए। हमले में 30 स्थानों पर मुख्य रूप से आवासीय भवन और नागरिक सुविधाओं को निशाना बनाया गया। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि बुधवार रात को हुई बमबारी यूक्रेन की ओर से रूस में नागरिक ठिकानों पर किए गए हमलों के जवाब में थी। रूस पर किए जा रहे लगातार हमलों को यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमीर ज़ेलेंस्की ने 40 दिनों से जारी हमलों का जवाब बताया। इन हमलों में मुख्य रूप से तेल रिफाइनरी को निशाना बनाया गया है। इस कारण यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध शुरू होने के 4 साल से अधिक समय बाद रूस में ईंधन संकट पैदा हो गया है। सीरिया में कल राजधानी दमिश्क के एक कैफे में हुए विस्फोट में 9 लोगों की मौत हो गई। सीरिया के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इस घटना में 20 लोग घायल हुए हैं। फिलहाल किसी भी गुट ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। सुरक्षा बलों ने हमले की जांच के लिए इलाके की घेराबंदी कर दी है। दमिश्क के गवर्नर माहिर मारवान इदलिबी ने कहा कि दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार।
4: स्पेन और पुर्तगाल फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। पुर्तगाल ने आज क्रोएशिया को 2-1 से हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। इससे पहले स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की की। मंगलवार को डलास में प्री क्वार्टर फाइनल में स्पेन का सामना पुर्तगाल से होगा। इससे पहले फ्रांस, नॉर्वे, कनाडा, मोरक्को, ब्राजील, पैराग्वे, बेल्जियम, अमेरिका और इंग्लैंड भी अंतिम 16 में पहुंच चुके हैं। प्री क्वार्टर फाइनल में सोमवार को इंग्लैंड का सामना मेक्सिको से होगा। अमेरिका मंगलवार को बेल्जियम के साथ खेलेगा। इस बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका और भारत के बीच 2 मैच की टेस्ट

0: क्रिकेट श्रृंखला का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। ये श्रृंखला 15 से 27 अगस्त तक खेली जाएगी। पहला टेस्ट 15 अगस्त से गोल अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट 23 अगस्त से कोलंबो में खेला जाएगा। ये श्रृंखला ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है। उधर इंग्लैंड ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। लंदन में कल दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 40 रन से हरा दिया। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने पहले सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर खिताबी मुकाबले में जगह बनाई। रविवार को लंदन के लॉर्ड्स में फाइनल में इंग्लैंड का सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सुनाया तकाची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। ईरान के सर्वोच्च नेता मुश्तबा खामनेई सुरक्षा कारणों से अपने पिता अली खामनेई की अंतिम यात्रा में शामिल नहीं होंगे। बिहार के राज्यपाल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरिटा आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार समारोह में शामिल होंगे। यूक्रेन की राजधानी कीव पर हुए रूस के हमलों में 27 लोग मारे गए। पुर्तगाल और स्पेन ने फीफा विश्व कप के अंतिम 16 में जगह बनाई। और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका के खिलाफ भारत के 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का कार्यक्रम घोषित किया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

नमस्कार, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। समय हो चुका है सुबह के 10:31 और 8 सेकंड। ये वक्त है कार्यक्रम दिल का मेल बॉक्स का, तो तैयार हो जाइए अपना संदेश और अपनी फरमाइश हम तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि हम खोल चुके हैं अपने दिल का मेल बॉक्स। तो दोस्तों, देर किस बात की, अपना फोन उठाइए और लिख भेजिए हमें अपने दिल का संदेश अपने नाम और अपने पते के साथ। ये मेल आपको भेजना है fmgoldairdelhi@gmail.com पर। जी हाँ, एक बार फिर नोट कर लीजिए, fmgoldairdelhi@gmail.com पर। दोस्तों, आप हमें कोई शायरी, कोई अच्छी लाइनें, कोई ऐसी बात जो आपके दिल के करीब हो वो भी लिखकर भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उसे आज के प्रोग्राम में शामिल करें। और तब तक आप सुनिए ये बेहद ही खूबसूरत नगमा।

फिल्म जानी दुश्मन से ये खूबसूरत गीत आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारीलाल का और बोल वर्मा मलिक के।

दोस्तों आइए अब रुख करते हैं दिल के मेल बॉक्स की तरफ और देखते हैं कि पहला संदेश हमें किसका प्राप्त हुआ है। तो पहला संदेश हमें चंडीगढ़ सिटी से आया है सतीश अनेजा बिमला अनेजा का और ये लिख रहे हैं, नमस्कार भाई जी, प्रोग्राम में आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। तो जी हम भी एफएम गोल्ड के पूरे परिवार की तरफ से आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में अभिनंदन करते हैं। इन्होंने बड़ी खूबसूरत लाइन लिखी है कि लड़ लो झगड़ लो लेकिन परिवार से अलग होने की मत सोचो, क्योंकि उन पत्तों की कोई कदर नहीं होती जो पेड़ से गिरकर अलग हो जाते हैं। जी हाँ, बेहद ही खूबसूरत बात कही है आपने और मुझे लगता है कि आज के समय पर इन बातों का ध्यान में रखना और अमल में

रखना बहुत जरूरी है। इसी के साथ अगला मेल हमें प्राप्त हुआ है जिला मुरादाबाद दूल्हापुर गांव उत्तर प्रदेश से, और इसे लिखने वाले हैं मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल सीमा, मानवी तन्वी, लक्ष्य सोनी, मोहनी ऋतिक, बलवीर सिंह। इसी के साथ अगला मेल हमें प्राप्त हुआ है लक्ष्मण लोखंडे का, महाराष्ट्र से ये हमें लिख रहे हैं। इनके साथ इस मेल में शामिल है कल्पनाताई लोखंडे, शैलेश लोखंडे, प्रतीक्षा लोखंडे और रक्षता लोखंडे। इसी के साथ अगला मेल हमें उत्तम नगर दिल्ली से प्राप्त हुआ है और इसे लिखने वाले हैं बोधराज खोरवाल, कमला रानी, भानु प्रकाश, गीतिका खोरवाल। और अगला मेल हमें प्राप्त हुआ है अफरोज शेख, पता नेमुआ, सुपौर बिहार से हमें लिख रहे हैं मेल, तो भाई आपका भी बहुत शुक्रिया। इसी के साथ अगला मेल हमारे पास पहुंचा है मेरठ से, ये मेल हमें अनिल जैन लिख रहे हैं। इनके साथ जैन साहब, संयम जैन, मुस्कान जैन, मास्टर जिव्यम भी शामिल हैं इस मेल में। और अगला मेल हमें भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा, पूजा परिहार का प्राप्त हुआ है, तो आपका भी बहुत स्वागत है इस मेल में। दोस्तों अगला मेल हमें कृष्णा पार्क दिल्ली से सुविंदर सिंह जोड़ा, स्वीटी दीवाना का प्राप्त हुआ है और ये एक खूबसूरत गीत की फरमाइश कर रहे हैं, तो आइए इनकी फरमाइश पर सुनते हैं ये बेहद ही खूबसूरत नगमा।

फिल्म भीम हीर रांझा से ये खूबसूरत गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। आइए श्रोताओं, एक नजर फिर डालते हैं अपने दिल के मेल बॉक्स की तरफ और देखते हैं कि अगला मेल हमें किसका प्राप्त हुआ है। और जब तक मैं मेल पढ़ूं तब तक आपको याद दिला दूं, अगर आपने भी अब तक हमें मेल नहीं किया है तो आप हमें जल्दी से मेल कर दीजिए और नोट कर लीजिए हमारा ईमेल आईडी। हमारा ईमेल आईडी है fmgoldair@gmail.com पर। आइए सुनते हैं और पढ़ते हैं आपके खूबसूरत मेल। अगला मेल हमें प्राप्त हुआ है नवाब अहमद का। ये लिख रहे हैं कि कोई भी गीत आप हमें सुनवा दीजिए, और इनके साथ इस मेल में शामिल है अशरफ अली, नवाब अहमद, बाबुल कश्यप, सलीम अख्तर। इसी के साथ अगला मेल हमें वीरमगंज जंक्शन से अजीत भावसार का प्राप्त हुआ है, और इन्होंने बहुत ही खूबसूरत लाइनें लिखी हैं कि नहीं कोई फिक्र करता कुठारा घात करता है, हमारी पीठ पीछे वो हमेशा बात करता है, भरोसा तोड़ कर देखो दिए आंखों में आंसू, बस करे नाटक दिखावा भर बहुत उत्पात करता है, समझ आती नहीं उनको जो पहले से ही शातिर है, भरी महफिल में बस शब्दों की सुन बरसात करता है। भाई बड़ी ही अनुभव युक्त बात कही है आपने, तो इस सुंदर लाइनों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। इसी के साथ हमें अगला मेल प्राप्त हुआ है ऊपर कोटा मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से, और इस मेल को लिख रहे हैं मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी और पूरा अब्बासी परिवार। इसी के साथ अगला मेल हमें प्राप्त हुआ है शेरवानी स्कूल गंज गुड़वारा से, और इसे लिख रहे हैं आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ अनवर मास्टर, लुबाना अंसारी और आलिया अंसारी। अगला मेल हमें प्राप्त हुआ है मुंबई से, और इसे लिख रहे हैं अनु बड़जातिया, शमशुल खान, अनुराज बेनारा, और ये खूबसूरत लाइन भी शामिल कर रहे हैं अपने मेल में। ये लिखते हैं कि फूल देते खुशबू, फल देते मिठास, पेड़ चुपचाप निभाते रिश्ता खास, हरियाली का साया, ठंडी हवा की सौगात, पेड़ों के बिना अधूरी है सारी कायनात। अगला मेल हमें प्राप्त हुआ है दोस्तों शिव नारायण का, जो कि चित्रकूट उत्तर प्रदेश से ये मेल लिख रहे हैं और एक बेहद ही खूबसूरत गीत की फरमाइश कर रहे हैं, तो आइए इनकी फरमाइश पर सुनते हैं ये बेहद ही खूबसूरत नगमा।

फिल्म नदिया के पार से ये खूबसूरत गीत आप सुन रहे थे हेमलता और जसपाल सिंह की आवाज में। दोस्तों आइए अब शामिल करते हैं आज के कुछ और स्पेशल संदेश जो आपने हमें लिखकर भेजे हैं, आज के प्रोग्राम में उन्हें शामिल कर लेते हैं। दोस्तों अगला मेल हमें मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर और रतनमाला आरती गौरी और ओम कुमार सुरलकर का प्राप्त हुआ है। ये लिख रहे हैं वर्मा सर जी वेलकम, तो जी आपका भी बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। इसी के साथ हमें अगला मेल प्राप्त हुआ है कृष्ण नगरी मथुरा से और इस मेल को लिख रहे हैं सबा अंसारी, शकील अंसारी, हिना अंसारी, बुशरा अंसारी, गुलिस्ता रानी, नंदिनी और अंजलि। अगला मेल हमें नई दिल्ली से प्राप्त हुआ है और इस मेल को लिख रहे हैं कमलेश, मुकुल, सचिन और दीपांशु। इसी के साथ अगला मेल हमें प्राप्त हुआ है नवाब अहमद भारती का और इनके साथ इस मेल को लिख रहे हैं सलीम अख्तर। इन्होंने लिखा है आदाब सर जी, कोई भी सॉन्ग में हमारा नाम शामिल कर लीजिए। तो देखिए जनाब, हमने आपका नाम शामिल कर लिया। इसी के साथ अगला मेल हमें प्राप्त हुआ है गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से और इस मेल को लिख रहे हैं बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार। इन्होंने लिखा है श्रीमान राम प्रकाश वर्मा जी नमस्कार, तो जी आपको भी नमस्कार। इसी के साथ अगला मेल हमें प्राप्त हुआ है दतरेंगी से और इसे लिख रहे हैं भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा, रुद्र वर्मा। और इसी के साथ एक और मेल हमें मोहाली चंडीगढ़ से प्राप्त हुआ है। माफ कीजिएगा, कई बार आप सही शब्द नहीं लिखते, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा टाइप करते वक्त ध्यान दें। ये मेल हमें लिख रहे हैं टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह और डॉक्टर अमनदीप जी। और अगला मेल हमें प्राप्त हुआ है सोमेश्वर उत्तराखंड से और ये लिखने वाले हैं दीपक जोशी, गणेश जोशी, विमला जोशी, माया जोशी, अजय नेहा, शालिनी, आयुष और हिया। ये खूबसूरत गीत की फरमाइश कर रहे हैं, तो आइए इनकी फरमाइश पर आपको सुनवाते हैं एक बेहद ही खूबसूरत नगमा।

दोस्तों डालें नजर मेल बॉक्स की तरफ तो कुछ और मेल हमें प्राप्त हुए हैं, और ये अगला मेल हमें प्राप्त हुआ है तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, मेघा मस्कीन का ये मेल हमें लिख रहे हैं चंडीगढ़ से। इन्होंने लिखा है, राम प्रकाश जी गुड मॉर्निंग, एनी सॉन्ग में मैसेज ले लीजिए। तो देखिए हमने आपका मैसेज शामिल कर लिया। इसी के साथ अगला मेल हमें प्राप्त हुआ है लालगिरी गोस्वामी, हेमलता और हीना का, ये मेल हमें लिख रहे हैं और साथ ही लिख रहे हैं कार्यक्रम दिल का मेल बॉक्स पेश करता आदरणीय राम प्रकाश जी आपको सादर नमस्कार। तो जी आपको भी नमस्कार। आप लिख रहे हैं कि आपकी आवाज बहुत दिनों बाद सुनकर हमें अच्छा लगा। तो जी आपका मेल बहुत दिनों बाद पढ़कर हमें भी अच्छा लगा। अगला मेल हमें रोशन लाल देवांगन, कौशल्या देवांगन और हेमलता डिंपल देवांगन का मेल हमें प्राप्त हुआ है। ये लिख रहे हैं कि राम प्रकाश जी नमस्कार, कोई भी गीत

में शामिल कर लीजिए। तो लीजिए जनाब, हमने आपको इस खूबसूरत गीत में शामिल कर लिया। अगला गीत हमें, माफ कीजिएगा, अगला मेल हमें प्राप्त हुआ है ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत मक्कड़ और कमल मक्कड़ का। और ये मेल हमें लिख रहे हैं, इन्होंने एड्रेस नहीं लिखा है, माफ कीजिएगा। और दोस्तों, आज के कार्यक्रम दिल का मेल बॉक्स में हम आपसे विदा लेते हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि मैं आपसे मिलूंगा ठीक 11:25 पर कार्यक्रम तस्वीर के साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। इनमें पाकिस्तान से संचालित सीमापार आतंकवाद भी शामिल है। नई दिल्ली में कल भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा की।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने पिछले वर्ष 10 नवंबर को दिल्ली में हुई आतंकी घटना की भी कड़ी निंदा की। दोनों देशों ने इस निंदनीय कृत्य के अपराधियों, आयोजकों और वित्त पोषकों को बिना किसी देरी के सजा दिलाने का आह्वान किया। श्री मोदी और सुश्री तकाइची ने अलकायदा, जैश ए मोहम्मद सहित संयुक्त राष्ट्र में सूचीबद्ध सभी आतंकी समूहों तथा संस्थाओं के खिलाफ समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने सुगम और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता को दोहराया। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत और जापान ने भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के रूप में आर्थिक सुरक्षा के महत्व का उल्लेख किया है। आर्थिक सुरक्षा सहयोग पर भारत जापान संयुक्त घोषणा पत्र में कहा गया है कि आर्थिक सुरक्षा साझेदारी आपसी विश्वास, साझे मूल्यों और आपसी हितों पर आधारित है। दोनों देश 5 प्रमुख क्षेत्रों, सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा तथा औषधि में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करेंगे। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत अपनी मानवीय और चिकित्सा सहायता को और तेज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर राहत कार्यों की तस्वीरें साझा करते हुए बताया कि भारतीय सेना का फील्ड अस्पताल वहां प्रभावित लोगों को लगातार आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं दे रहा है। इस मुश्किल समय में स्थानीय लोग भारतीय डॉक्टरों और मेडिकल टीम की निस्वार्थ सेवा की सराहना कर रहे हैं। भारत वेनेजुएला में सबसे पहले मदद करने वाले देशों में शामिल है। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंदी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में उनके परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा है। आयोग ने इस संबंध में दोनों गुटों के दावों और आपत्तियों पर ममता बैनर्जी और पार्टी नेता ऋतव्रत बैनर्जी को अलग अलग पत्र लिखे हैं। आयोग ने कहा कि दोनों पक्षों को सोमवार शाम 5:30 बजे तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनेई अपने पिता और पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में सुरक्षा कारणों से शामिल नहीं होंगे। भारत में ईरान के प्रतिनिधि आयतुल्ला हकीम इलाही ने बताया कि सुरक्षा जोखिमों के कारण मुज्तबा खामेनेई का सार्वजनिक रूप से सामने आना सुरक्षित नहीं है। ईरान में पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम 4 से 9 जुलाई तक ईरान और इराक में होगा। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरिटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा, जिसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर चर्चा की जाएगी। कार्यशाला में वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा जारी 16वें वित्त आयोग के ग्राम

0: दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त आनंद
1: और मैं अदिति।
0: हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रोग्राम मेरा वजूद, बताओ और कमाओ। मेरा वजूद के इस प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप घर बैठे ऑनलाइन रियल एस्टेट के रेफरल प्लेटफॉर्म से जुड़कर अपना वजूद बना सकते हैं,
1: क्योंकि मेरा वजूद का लक्ष्य ही हर व्यक्ति को रियल एस्टेट के लाभ से जोड़ना है। अब आप चाहे हाउसवाइफ हो, स्टूडेंट हो या रिटायर्ड पर्सन, जब ऑनलाइन का है जमाना तो ऑनलाइन से ही कमाना सही है ना?
0: दोस्तों, एक बहुत बड़े शायर ने लिखा है कि विसाले यार से दूना हुआ इश्क, मर्ज बढ़ता गया जूं जूं दवा की। इसका मतलब है कि इश्क वो तकलीफ है जिसका इलाज आसान नहीं होता। अपने किसी खास से मिलने की चाहत कुछ इस तरह से दिल और दिमाग पर छा जाती है।
1: जैसे जैसे अपने किसी खास से मिलने की चाहत पूरी होती है या मिलने की कोशिश की जाती है, वैसे वैसे इश्क और दीवानगी दोगुनी हो जाती है। ठीक उसी तरह जैसे किसी बीमारी का इलाज करने पर वो बीमारी कम होने के बजाय ज्यादा बढ़ती चली जा रही हो।
0: इश्क और मुश्क छुपाने से नहीं छुपता। जैसे कि खुशबू को आप चाहे कितने ही कमरों में बंद क्यों ना कर दें, उसकी महक बाहर आ ही जाती है। ठीक उसी तरह किसी के दिल में छिपा हुआ प्यार भी लोगों की नजरों से छुप नहीं पाता, ये अपने आप जाहिर हो ही जाता है।
1: कहते हैं कि अगर एक बार किसी के दिल में सच्चे प्यार का एहसास हो जाए तो दुनिया की कोई भी मुसीबतें या रुकावटें उसे रोक नहीं सकती। दुनिया की कोई भी आंधी प्यार की इस आग को बुझा नहीं सकती।

0: जानता था कि मेरे मल्टीटास्किंग स्किल्स एक दिन मुझे कमाई भी कराएंगे।
1: न मेरे कोई दुकान, न मेरा कोई ऑफिस, मेरा मोबाइल है मेरी दुकान,
2: मेरा वजूद। बताओ और कमाओ। आज ही रजिस्टर करें www.meravajood.com पर।
3: दोस्तों, अब जब बात दिल और मोहब्बत की चली है तो फिर एक बात ये भी कह दी जाए कि मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। इसका मतलब ये है कि सच्ची मोहब्बत हर किसी के बस की बात नहीं होती।
4: इसके लिए एक खास और पवित्र दिल की जरूरत होती है। जैसे हर धुन हर इंस्ट्रूमेंट पर नहीं बज सकती, वैसे ही प्यार के जज्बात हर साधारण दिल में नहीं पनपते। वैसे कहने को तो ना जाने कितने ही लड़के और लड़कियां आजकल ऐसे मिल जाएंगे जो कहेंगे कि हमें प्यार हो गया है और अब हम अपने प्यार के लिए कुछ भी कर जाएंगे।
3: लेकिन सच इसके बिल्कुल अलग होता है। जरा सी दोस्ती को जो प्यार का नाम दे देते हैं, वो बहुत जल्दी इस रिश्ते से बाहर भी हो जाते हैं। फिर बहाना चाहे समाज का हो या परिवार के ना मानने का, लेकिन सच तो ये है कि को प्यार का मतलब ही नहीं पता होता। वो बस टाइम पास करते हैं।
4: और ये जो टाइम पास करते हैं, उनके अलग होने के बहाने भी अलग होते हैं। वो कभी कहेंगे कि परिवार नहीं मान रहा, कभी कहेंगे कि क्या करूं, हमारी सोसाइटी तुमसे बहुत ऊपर है, या फिर तुम कमाते कितना हो।
3: बहाने तो बहुत हैं, मगर जिसका दिल टूटता है, दर्द वही जानता है।

0: पूरा दिन बस नाश्ता लंच और डिनर, सबकी जरूरतें पूरी करते करते जाने कब मेरा खुद का वजूद कहीं खो गया। क्या मेरी पहचान बस यहीं तक है?
1: मेरा वजूद बताओ और कमाओ, आज ही रजिस्टर करें www.meravajood.com पर।
2: वैसे अगर सच में कहा जाए तो प्यार सिर्फ प्यार ही नहीं होता, बल्कि प्यार एक जिम्मेदारी है, एक विश्वास भी है। और जब दोनों ही चाहने वाले इस बात को समझते हैं तो उनकी मंजिल आसान हो जाती है। हो सकता है कि शुरू में किसी के परिवार वाले या किसी का समाज इस बात को ना समझे,
1: लेकिन जो दिल से साथ होते हैं वो परिवार को और समाज को ठीक से समझा ही लेते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि परिवार के लोग इस वजह से भी तैयार नहीं होते कि दोनों में से कोई शायद अपनी जिंदगी में तब तक कामयाब न हुआ हो,
2: तो आगे चलकर वो जीवन का बोझ कैसे उठाएगा, ये भी एक टेंशन की बात है। लेकिन अगर दिल में सच्ची चाह हो तो पुरुष हो या महिला, जिंदगी के किसी भी दौर में कामयाब हो सकते हैं। और आजकल तो वैसे भी पैसा कमाने के बहुत सारे विकल्प मौजूद हैं। जरूरी है तो बस उन्हें समझने की जरूरत है, तो बस उन्हें समझने की।
1: अब ये आपके ऊपर है कि आप अपने समवन स्पेशल की खुशियों का ख्याल रख सकते हैं या नहीं। वैसे कुछ भी कहा जाए, प्यार को चीज ही ऐसी है कि अगर किसी को दिल से हो जाए तो फिर दोनों ही लोग एक होने का कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेते हैं।
3: एक तेरा साथ, एक तेरा साथ हमको दो जा।

0: हम गृहिणियों को मोहल्ले की हर खबर रहती है ना, कौन सा घर बिका, कौन सा खाली है, बस यही जानकारी मैंने मेरा वजूद पर डालना शुरू की। अब मैं बिजनेस भी संभालती हूँ।
1: मेरा वजूद, बताओ और कमाओ। आज ही रजिस्टर करें www.meravajood.com पर।
2: दोस्तों, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मेरा वजूद,
1: बताओ और कमाओ। इसे आप अपना हाई अर्निंग साइड इनकम का इनोवेशन भी कह सकते हैं। बस आपको जेन्युइन प्रॉपर्टी परचेजर सेलर की डिटेल मेरा वजूद एग्जीक्यूटिव के साथ शेयर करनी है।
2: ना कहीं आना और ना ही कहीं जाना, बाकी की सेल परचेज देखेगी हमारी कंपनी और फिर आपका फायदा ही फायदा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें मेरा वजूद 9355-387-21 पर।
3: इतनी परेशान क्यों लग रही हो?
4: मन करता है कि तुम्हारा हाथ बटाऊं, पर मुझे नौकरी देगा कौन?
5: आज तुम जैसी हजारों महिलाएं घर बैठे अपनी नॉलेज और नेटवर्क से लाखों कमा रही हैं।
1: कैसे? मेरा वजूद, बताओ और कमाओ। आज ही रजिस्टर करें www.meravajood.com पर। दोस्तों, प्रोग्राम आपने सुना, आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं, क्योंकि मेरा वजूद का लक्ष्य ही हर व्यक्ति को रियल स्टेट के लाभ से जोड़ना है।
2: जीवन में हम उसी दिन बड़े हो जाते हैं जब अपने आंसू खुद ही पोंछकर हम फिर से खड़े हो जाते हैं।
1: हमारा पता है मेरा वजूद, बताओ और कमाओ, सी ब्लॉक मार्केट 16, सेक्टर 41, नोएडा। आज ही रजिस्टर करें www.meravajood.com पर।
2: एक बार फिर आज ही के दिन शुक्रवार सुबह 11:10 FM गोल्ड पर
1: हम आपके साथ होंगे लेकर प्रोग्राम मेरा वजूद,
2: बताओ और कमाओ। तब तक के लिए आनंद
1: और अदिति को इजाजत दीजिए। नमस्कार, नमस्कार।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। समय हो चुका है सुबह के 11:25 और 44 सेकेंड्स। मैं आपका रेडियो हम सफर आप सभी का स्वागत करता हूं कार्यक्रम तस्वीर में।

आज की कार्यक्रम तस्वीर में हम आपकी आंखों के सामने लाएंगे एक ऐसी तस्वीर जिसे देख के बाद आप घर बैठे ही इस गर्मी के मौसम में भी ठंडक का अनुभव करने लगेंगे, क्योंकि आज जहां हम आपको लेकर चलने वाले हैं उस जगह को भारत का ठंडा रेगिस्तान भी कहा जाता है। तो भाई देर किस बात की, चलिए आपको लेकर चलते हैं इस बेहद ही खूबसूरत सुहाने सफर पर।

दोस्तों, जिंदगी की भाग दौड़ में कभी कभी मन चाहता है कि कुछ पल ऐसे मिल जाए जहां सिर्फ सन्नाटा हो, पहाड़ों की ठंडी हवाएं हो, नीले आसमान के नीचे सफेद बादलों का कारवां हो और दूर तक फैली प्रकृति बस मुस्कुराती हुई ही दिखाई दे। तो आज हम आपको लेकर आए हैं हिमाचल प्रदेश की एक ऐसी ही जादुई दुनिया में, जिसे देखकर लगता है कि मानो धरती ने यहाँ खुद अपने हाथों से स्वर्ग सजाया हो। और इस जगह का नाम है स्पीति घाटी। जी हाँ, स्पीति का अर्थ होता है मध्य भूमि, यानी भारत और तिब्बत के बीच की धरती। तकरीबन 12,000 फीट की ऊंचाई पर बसी ये घाटी दुनिया के सबसे ऊंचे बसे हुए इलाकों में गिनी जाती है। यहाँ की सड़कें, ऊंचे ऊंचे पहाड़, नीला आसमान और दूर तक फैली शांत वादियां हर यात्री को अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं। स्पीति घाटी में मुख्य रूप से स्पीति नदी बहती है और इसके साथ कई अन्य नदियां भी इस घाटी में शामिल होती हैं। स्पीति घाटी चारों तरफ से पर्वत श्रृंखलाओं से घिरी होती है। इसके उत्तर में लद्दाख, पूर्व में तिब्बत, दक्षिण में बुशहर और पश्चिम में कुल्लू शामिल है। भारत और तिब्बत के बीच बसी इस घाटी ने सदियों से संस्कृति, आध्यात्म और प्रकृति को अपने आंचल में समेट रखा है। यहाँ बारिश बहुत कम होती है, इसलिए इसे कोल्ड डेजर्ट यानी ठंडा रेगिस्तान भी कहते हैं। दोस्तों, यहाँ बारिश तो बहुत कम होती है, लेकिन यहाँ प्रकृति अपनी खूबसूरती बरसाने में कोई कमी नहीं रखती और इसीलिए स्पीति में लगभग 250 दिन आसमान बिल्कुल साफ रहता है। रात के समय यहाँ तारों की चादर दिखाई देती है, जिसे देखकर लगता है कि पूरे ब्रह्मांड में आसमान और तारे आपके बिल्कुल पास आ गए हों।

दोस्तों, स्पीति की पहचान केवल उसके पहाड़ ही नहीं है, बल्कि उसकी आत्मा बसती है यहाँ के मठों में, और उनमें सबसे प्रसिद्ध मठ है की मोनेस्ट्री। तकरीबन 1000 साल पुराना ये बौद्ध मठ पहाड़ की ढलान पर इस तरह से बना हुआ है कि मानो बादलों ने उसे अपनी गोद में बिठा लिया हो। सुबह जब यहां घंटियां बजती हैं तो पूरा वातावरण मंत्रों की मधुर ध्वनि से भर जाता है। यहां रहने वाले भिक्षु सादगी, धैर्य और प्रेम का संदेश देते हैं। कहते हैं कि अगर जीवन में कभी मन अशांत हो तो एक बार की मोनेस्ट्री की पहाड़ी पर बैठकर यहां का सूर्योदय देख लीजिए, आपका मन अपने आप शांत हो जाएगा। अगर स्पीति की बात हो और चंद्रताल झील का जिक्र ना हो तो बात अधूरी रह जाती है। चंद्रमा के आकार की ये झील समुद्र तल से लगभग 4300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। सुबह इसका रंग नीला, दोपहर में फिरोजी और शाम होते होते इसका रंग सुनहरा हो जाता है। इसे देखकर ऐसा लगता है कि मानो प्रकृति हर घंटे कोई नई तस्वीर बना रही हो। कहते हैं कि पूर्णिमा की रात चंद्रताल का दृश्य जिंदगी भर नहीं भूलता। दोस्तों, चंद्रताल के अलावा यहाँ कई और भी पर्यटन स्थल हैं जहाँ आप घूमने जा सकते हैं, जैसे चीचम ब्रिज, धनकर झील और धनकर मठ, डेमुल गांव, काजा, कुंजी मठ, किब्बर वन्य जीव अभ्यारण्य, कुंजुम दर्रा, लोसर, शेरखाग मठ, माने योगमा गांव, मिट्टी का गांव, पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान, ताबू मठ और उसकी गुफाएं, और हिक्किम गांव भी आप जा सकते हैं। हिक्किम गांव में दुनिया का सबसे ऊंचा डाकघर है और यहां से भेजे गए संदेश यानी पत्र हमेशा के लिए यादगार बन जाते हैं।

0: दोस्तों, आज के कार्यक्रम तस्वीर में हम बात कर रहे हैं स्पीति घाटी के बारे में, और भी बहुत ही दिलचस्प बातें हम आपके साथ साझा करने वाले हैं, लेकिन अभी वक्त है एक छोटे से अंतराल का।
1: तू आन है, तू शान, तू ही देश का अभिमान है। अब आप भी बढ़ाएं देश का सम्मान। शॉर्ट सर्विस कमीशन अफसर बनकर भारतीय नौसेना की एग्जीक्यूटिव एजुकेशन और टेक्निकल ब्रांच ज्वाइन करने के लिए अविवाहित पुरुष और महिला उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। आवेदन की अंतिम तिथि है 27 जुलाई 2026। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.joinindiannavy.gov.in। जॉइन इंडियन नेवी।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको

0: अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र इस अभियान में एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

जी हाँ, आप देखिए क्या है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम तस्वीर सुन रहे हैं आप अपने दोस्त राम प्रकाश वर्मा के साथ। आज की तस्वीर में हम बात कर रहे हैं स्पीति घाटी के बारे में। दोस्तों, स्पीति के लोग बेहद ही सरल, मेहनती और अतिथि देवो भव की भावना वाले होते हैं। उनका रहन सहन, उनकी संस्कृति, उनका भोजन सब कुछ अनोखा होता है। यहाँ पर पारंपरिक रूप से जौ और काली मटर की खेती की जाती है। इसके अलावा यहाँ पर हरी मटर और अन्य कई छोटी मोटी फसलें भी उगाई जाती हैं। वैसे आपको बता दें कि यहाँ का मौसम बहुत ही ठंडा होने की वजह से यहाँ साल में सिर्फ एक ही बार फसल उगाई जा सकती है। यहाँ के स्थानीय लोग बकरी और भेड़ जैसे पशुओं का पालन भी किया करते हैं। बात करें यहाँ के स्थानीय त्योहारों की तो यहाँ मुख्य रूप से गुईटोर, लाडचा मेला, स्पीति लोसार, थुकचू, दचांग और सिया मैंटोक जैसे त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। वहीं बात करें यहाँ के स्थानीय व्यंजन की तो यहाँ का थुकपा और मोमोज काफी पसंद है, और साथ ही मशहूर है यहाँ की बटर वाली चाय। तो भाई, जब भी आप स्पीति जाए तो यहाँ की बटर वाली चाय बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। स्पीति घाटी केवल प्राकृतिक सुंदरता का ही नहीं बल्कि रोमांच का भी दूसरा नाम है। यहाँ पर बाइक राइडिंग, ट्रैकिंग, कैंपिंग और फोटोग्राफी का अलग ही आनंद आता है। यहाँ हर मोड़ पर एक नई कहानी, एक नया दृश्य और एक नया अनुभव आपका इंतजार करता है। दोस्तों, अगर आप भी स्पीति जाने का प्लान बना रहे हैं तो यहाँ जाने का सबसे अच्छा समय है मई से सितंबर के बीच का, क्योंकि सर्दियों में यहाँ भारी बर्फबारी होती है और तापमान 0 डिग्री से भी नीचे चला जाता है।

दोस्तों आइए अब बात कर लेते हैं स्पीति घाटी तक कैसे पहुंचा जाए। तो दोस्तों यहां तक पहुंचने के लिए आप बस, ट्रेन या हवाई जहाज में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। यहां जाने के लिए आपको मनाली या शिमला में से किसी भी एक रास्ते का चुनाव करना पड़ता है। अगर आप बस से जाना चाहते हैं तो शिमला से रेकोंग पेओ के लिए सुबह 5 बजे वाली बस पकड़ना जरूरी है और फिर इसके बाद काजा के लिए जाना होगा। इस सफर में आपको तकरीबन 24 घंटे का वक्त लग सकता है। अगर आप मनाली होकर जाना चाहते हैं तो मनाली से भी आपको सुबह 5 बजे वाली बस पकड़नी होगी जो कि आपको काजा तक ले जाएगी। वहीं अगर आप ट्रेन का सफर करना चाहते हैं तो आपको जोगिंदर नगर रेलवे स्टेशन तक पहुंचना होगा। यह रेलवे स्टेशन स्पीति घाटी का सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन है और स्पीति घाटी से तकरीबन 360 किलोमीटर दूर है। जोगिंदर नगर रेलवे स्टेशन तक पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले पठानकोट पहुंचना होगा और वहां से आप टॉय ट्रेन पकड़कर जोगिंदर नगर जा सकते हैं। उसके बाद आप मनाली होते हुए स्पीति घाटी जाने के लिए टैक्सी या बस का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप हवाई मार्ग का प्रयोग करना चाहते हैं यानी आप एरोप्लेन से जाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको चंडीगढ़ या शिमला जाना होगा और यहां से आप कुल्लू हवाई अड्डे तक की फ्लाइट ले सकते हैं। कुल्लू हवाई अड्डे पर टैक्सी, एटीएम और निशुल्क सामान ले जाने की सुविधा भी उपलब्ध है। कुल्लू हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद आप स्पीति घाटी के लिए टैक्सी या बस का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों स्पीति घाटी के सफर पर निकलने से पहले सुनिश्चित कर लें कि आपका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक हो और साथ ही आप कुछ गर्म कपड़े भी रख लें और यहां जाने से पहले मौसम का हाल भी जरूर जान लें।

दोस्तों, यात्रा सिर्फ किसी जगह तक पहुंचने का नाम नहीं होती। यात्राएं हमारे व्यक्तित्व में नई समझ, नए अनुभवों को जोड़ती हैं, या यूं कहिए कि हमें खुद से भी मिलवा देती हैं। स्पीति घाटी की यात्रा भी एक ऐसी ही यात्रा है। अगर कभी जीवन में अवसर मिले तो आप यहाँ जरूर जाइएगा। हो सकता है कि यहाँ की खामोशी आपके भीतर का शोर हमेशा के लिए शांत कर दे। इसी खूबसूरत सोच के साथ मैं राम प्रकाश वर्मा आपसे विदा लेता हूँ। आज की तस्वीर में फिलहाल इतना ही। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

कसता कच्चे धागे फिल्मेलो लता मंगेशकर तंग कुमार सानू ने सनाचात लुरसोम खान आनंद बख्शी यांगलू यांग श्रीखान नुसरत फतेह अली खान।

0: आप सभी श्रोताओं का उमंग कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार, मैं हूँ विमलेश।
1: नमस्कार, मैं हूँ अजीत। आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है कस्बा बराड़ा, जिला अंबाला, हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, विजेंद्र कुमार, जयजान, नूर, नमन, सिमरत, मन्नत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द राहुल जी ने। लिखते हैं,
0: खुद को बेहतर बनाना ही असली प्रतिस्पर्धा है। किसी से भी ईर्ष्या का सीधा मतलब ये है कि हमने सामने वाले व्यक्ति को हमसे ज्यादा श्रेष्ठ मान लिया है।
1: बहुत बहुत सुंदर विचार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है तहसील ठियोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी का।
0: दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, बाबू, दिव्यांश और सूरज कुमार ढाकसे जी लिखते हैं।
1: प्रिय अजीत जी और विमलेश जी, आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार। हमें आपका उमंग कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है। हम आपका उमंग कार्यक्रम FM और DTH के रेडियो चैनल पर सुनते हैं। आपके उमंग कार्यक्रम में एक से बढ़कर एक जानकारियां सुनने को मिलती हैं, जो हमें बेहद पसंद आती हैं। धन्यवाद।
0: छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा, प्रिंस वर्मा और यशस्वी वर्मा।
1: आप सभी श्रोताओं को हम धन्यवाद प्रस्तुत करते हैं संदेशों को भेजने के लिए। निवेदन है कि इसी प्रकार से हमारे उमंग कार्यक्रम से जुड़े रहिए। आप सबका स्वागत है एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए में। आइए अब चलते हैं इसकी अगली कड़ी में। इस सप्ताह श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं खनिज पदार्थों की।
0: अब तक हमारी चर्चा का विषय रहा कोयला, सोना और हीरा। तो अजीत जी, आज हमारा क्या विषय रहेगा? श्रोता बड़ी उत्सुकता से जी जानना चाहते हैं।
1: विमलेश जी, आज हमारा विषय बहुत रोचक होने जा रहा है। आज हम एक ऐसे खनिज की बात करेंगे जो पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाता है, और तो और हम उस पर चलते फिरते भी हैं। अच्छा चलिए, श्रोताओं को दीजिए कुछ हिंट।
0: ठीक है, तो श्रोताओं, उस खनिज का उपयोग हमारे कंप्यूटर, मोबाइल और अनेक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में भी किया जाता है। ये हमारे शरीर में भी पाया जाता है।
1: और ये कुछ पौधों में भी पाया जाता है, विशेषकर बांस और घास में तो पाया ही जाता है।
0: श्रोताओं, ये हमारे स्मार्टफोन और कंप्यूटर्स में तो होता ही है, इंटरनेट के उपकरणों और अंतरिक्ष के उपग्रहों में भी चिप्स के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। और हाँ, इससे कांच भी बनता है। तो श्रोताओं, आपने समझ लिया होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं।
1: अगर आप सोच रहे हैं कि वो खनिज पदार्थ सिलिका है, तो आप बिल्कुल सही हैं। आइए अब जानते हैं कि सिलिका क्या है। विमलेश जी, आपसे करते हैं शुरुआत।
0: श्रोताओं, सिलिका सिलिकॉन और ऑक्सीजन से बना एक प्राकृतिक खनिज है। ये पृथ्वी की भूपरपटी में सबसे अधिक पाए जाने वाले खनिज पदार्थों में से एक है। आइए सबसे पहले जानते हैं सिलिका शब्द कहाँ से आया।
1: श्रोताओं, सिलिका शब्द लैटिन भाषा के सिलेक्स शब्द से आया है, जिसका अर्थ है चकमक या कठोर पत्थर। बता दें कि पृथ्वी की सामान्य रेत का अधिकांश भाग सिलिका से ही बना होता है। इसी सिलिका से एक विशेष वैज्ञानिक प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन को अलग करके सिलिकॉन बनाया जाता है,
0: और इसी सिलिकॉन से बनते हैं मोबाइल, कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में लगाए जाने वाले चिप्स। सुंदर क्वार्ट्स क्रिस्टल वास्तव में सिलिकॉन का ही रूप है। अजीत जी, एक प्रश्न मेरे मन में आता है, वो ये है कि क्या जिस रेत या धूल पर हम चलते हैं, क्या वही सिलिका है?
1: विमलेश जी, ऐसा कहना आंशिक रूप से सही है, पर पूरी तरह से नहीं। ये जानना जरूरी है कि साधारण रेत या धूल के कण पूरी तरह से सिलिका नहीं होते। धूल कई प्रकार के कणों का मिश्रण होती है, जैसे मिट्टी, जैविक पदार्थों के अवशेष और कुछ खनिज।
0: बता दें कि सिलिका सबसे अधिक रेगिस्तान और समुद्र की रेत में पाई जाती है, लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि ऐसा क्यों?
1: ऐसा इसलिए कि रेगिस्तान बनते हैं बहुत सारी चट्टानों के टूटने से। इन चट्टानों में खनिज पदार्थों के रूप में सिलिका पहले से ही मौजूद होती है। चट्टानों के टूटने से सिलिका के कण रेत और मिट्टी में फैल जाते हैं, और जहाँ तक समुद्र की बात है, यहाँ सिलिका की मात्रा बहुत अधिक होती है, क्योंकि नदियाँ समुद्र की ओर बढ़ती हुई पहाड़ों और चट्टानों को जब अपने जल प्रवाह से घिसती हैं, तो उन चट्टानों में मौजूद सिलिका के कणों को समुद्र तक ले आती हैं। श्रोताओं, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि समुद्र तट की एक मुट्ठी रेत में मौजूद सिलिका के कणों ने हजारों किलोमीटर की यात्रा की है। तो विमलेश जी, हजारों वर्षों से मनुष्य सिलिका या रेत को देखता आया है, लेकिन ये विचार कैसे आया कि ये इतना महत्वपूर्ण है?
0: इसकी कहानी बड़ी रोचक है। 1824 में स्वीडन के रसायन शास्त्री जॉन जेकब वर्जिलियास ने पहली बार सिलिका से ऑक्सीजन को अलग करके सिलिकॉन की खोज की। लेकिन प्राचीन काल से ही मिस्र और चीन के लोगों ने इसके द्वारा कांच और आभूषण बनाने शुरू कर दिए थे, क्योंकि ये बहुत चमकदार होता है। 1906 में पहली बार इससे पहला इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाया गया।
1: फिर धीरे धीरे शोध होते गए।

0: आज ये मानव सभ्यता का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। आज हम इसके बिना सौंदर्य प्रसाधनों, चिकित्सकीय उपकरणों, उद्योगों, कंप्यूटर, मोबाइल फोन्स, इंटरनेट, सौर उपकरणों और उपग्रहों की कल्पना तक नहीं कर सकते।
1: तो श्रोताओं, ये थी आज की जानकारी सिलिका खनिज के बारे में। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
0: तो हमारा आज का प्रश्न है, सिलिका और सिलिकॉन में क्या फर्क है? आप हमारे IVRS नंबर पर यानी 8800-440-5559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी CIT NCERT को फॉलो जरूर कीजिए। आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है, कैसे जानते हैं हम अपना अतीत।
1: इस कार्यक्रम में विशेष रूप से इतिहास के विभिन्न स्रोतों के बारे में विस्तार से बताया गया है और संदेश दिया गया है कि हमारी ऐतिहासिक विरासत महान है।
2: दोस्तों नमस्कार, एक नजर अतीत की ओर श्रृंखला में आपका स्वागत है। ये जानने के लिए कि कल क्या हुआ था या आज क्या हो रहा है, हम रेडियो सुन सकते हैं, टेलीविजन देख सकते हैं या फिर अखबार पढ़ सकते हैं, लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था ये कैसे जाना जा सकता
3: है ना साथियों? अच्छा सवाल। यही सवाल निधि और आदिका के मन में भी था। वे छुट्टियों में अपनी नानी के घर गई हुई थी। हुआ यूं कि एक दिन वे समाचार पत्र पढ़ रही थीं। अचानक उनकी निगाह समाचार पत्र के एक अंश पर पड़ी जहां छपा था, लगभग 2000 साल पहले। वे सोचने लगीं,
4: भला ये कोई कैसे जान सकता है कि 2000 साल पहले क्या हुआ था?
5: हाँ, 2000 साल पहले।
4: नानी माँ?
6: हाँ निधि।
4: ओ नानी माँ, कहाँ हो?
6: अरे यहीं हूँ। आ जाओ निधि, आओ आदिका बेटी।
4: अरे ये क्या सारे बक्से खोल रखे हैं? क्या कर रही हो?
6: हाँ हाँ, बताती हूँ, जल्दी क्या है।
4: कितने ढेर सारे कपड़े हैं नानी माँ, ये तो बहुत पुराने हैं ना?
6: हाँ बेटी, बहुत पुराने हैं, तुमसे और तुम्हारी मम्मी से भी पुराने। और पता है निधि, आदिका जानती हैं आप ये कपड़े हमने कब पहने थे?
4: नहीं पता, बताओ ना रानी माँ।
6: अरे ये कपड़े तो हमारी शादी के हैं।
4: नाना नानी की शादी के कपड़े? भाई वाह, नानी पहले और आज के कपड़े कितने अलग अलग दिखते हैं, है ना?
6: हाँ हाँ निधि, समय के साथ साथ सारी चीजें बदल जाती हैं।
4: नानी एक बात मेरे मन में भी आ रही है, और वो ये कि बहुत पुराने बातों को कैसे जाना जा सकता है?
6: अरे बिटिया, ये बताने के लिए तो हमारे पंकज से बढ़िया और कोई नहीं हो सकता।
4: हाँ हाँ, मामा जी से पूछेंगे।
6: हाँ बिटिया, वो तो पुरातत्व वेत्ता है ना?
4: मामा जी।
2: अरे निधि, ओ आदिका, कैसी कट रही तुम्हारी छुट्टियाँ?
4: बहुत अच्छी तरह मामा जी, आज सुबह हम समाचार पत्र पढ़ रहे थे।
2: ये तो बहुत अच्छी बात है
4: जी, उसमें छपा था लगभग 2000 साल पहले। ये लेख किसी सभ्यता के बारे में था मामा जी। भला ये कोई कैसे जान सकता है कि 2000 साल पहले क्या हुआ था?
2: अच्छा अच्छा, तो ये बात है। आओ आओ यहाँ बैठो। अरे बैठो बैठो, मैं तुम्हें कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ, जरा इसे देखो, बता सकती हो कि ये क्या है?
4: ये किसी खुदरी सी शीट की तस्वीर है, इसमें कुछ लिखा गया है, शायद गोदकर।
2: शाबाश निधि, तुमने बिल्कुल ठीक पहचाना। ये खुरदरी शीट दरअसल एक पेड़ की छाल है जिसे भोज वृक्ष कहा जाता है।
4: अच्छा, भोज वृक्ष?
2: हाँ, भोज वृक्ष हिमालय क्षेत्र में मिलता है। इसकी छाल पर या ताड़ के पत्तों पर उन दिनों लोग हाथ से लिखते थे। हाथ से लिखी होने के कारण ये पांडुलिपि कही जाती है।
4: पांडुलिपि? ये हमें कहाँ मिली है
2: निधि? ये पांडुलिपियाँ ज्यादातर प्राचीन मंदिरों और विहारों से खुदाई में प्राप्त हुई हैं। तुम्हें पता है

0: कुछ पुरानी गुफाओं में भी मिली हैं।
1: अच्छा।
0: और बेटी मैं तुम्हें बताता हूँ, इन पांडुलिपियों में उस समय की धार्मिक परंपराओं, राजाओं के जीवन, दवाइयों, कला और विज्ञान की जानकारी हमें मिलती है। हमें कई नाटक और कविताएं भी मिलती हैं।
1: ये किस भाषा में है?
0: बहुत अच्छा सवाल पूछा है बेटी तुमने। ये ज्यादातर संस्कृत, तमिल और प्राकृत भाषा में है। उन दिनों प्राकृत भाषा का इस्तेमाल आम लोग करते थे।
1: मामा जी अब आगे भी बताइए ना।
0: हाँ, बताता हूँ। अरे धैर्य रखो। अतीत या पुराने समय के बारे में हमें पांडुलिपियों से तो पता चलता ही है, लेकिन हमें बहुत सारी जानकारियाँ अभिलेखों और शिलालेखों से भी मिलती हैं।
1: अच्छा।
0: अभिलेख को अंग्रेजी में इंस्क्रिप्शन कहते हैं। इंस्क्रिप्शन शब्द से ही इंस्क्राइब निकला है, जिसका मतलब है लिखना, खोद कर लिखना या उत्कीर्ण करना। इसको उकेरना भी कहते हैं।
1: अच्छा।
0: और हाँ, अतीत को जानने के लिए हम अभिलेखों का भी अध्ययन करते हैं। ऐसे अभिलेख हमें पत्थर या धातु पर खोद कर लिखे हुए मिलते हैं। लगभग 2250 वर्ष पुराने पत्थर पर लिखा अभिलेख या शिलालेख हमें वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से मिला है।
1: अच्छा।
0: ये सम्राट अशोक के आदेश पर लिखा गया है। पत्थर पर लिखने की कला को एपिग्राफी भी कहते हैं और शिलालेख को
2: एपिग्राफ।
0: शाबाश निधि।
2: मामा जी, अभिलेख और शिलालेख में क्या फर्क है?
0: देखो, अभिलेख को किसी भी कठोर वस्तु पर लिखा जा सकता है, मतलब ये कोई धातु भी हो सकती है। ये अभिलेख हमें पकी मिट्टी, सिक्के, तांबे और चांदी पर भी लिखे मिले हैं। लेकिन शिला का मतलब होता है पत्थर। ये लेख पत्थरों पर ही लिखे जाते हैं।
2: मामा जी, आपने शिलालेख की बात की, ऐसे पत्थर पर हमें क्या लिखा हुआ मिलता है?
0: ऐसे पत्थर पर कभी कभी राजा लोग अपने आदेशों को खुदवाते या उत्कीर्ण करवाते थे, ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें और उसका पालन कर सकें।
1: मामा जी, मैंने सुना है कि भूविज्ञानियों के अध्ययन से भी हमें अपने अतीत के बारे में पता चलता है।
0: आदिका, बिल्कुल ठीक सुना है तुमने। भूविज्ञानी मिट्टी के नमूनों, पुराने पत्थरों, पहाड़ों और महासागरों का अध्ययन करते हैं और पता लगाते हैं कि पहले पृथ्वी कैसी थी और आज क्या उसका स्वरूप कुछ बदला है।
1: ओह, कितना रोचक है ये सब जानना।
0: हाँ आदिका, रोचक तो है ही। तो दोस्तों, हमारा समय अब समाप्त होता है। इस वायदे के साथ कि एक नजर अतीत की ओर श्रृंखला में आपसे फिर भेंट होगी। अब आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।
3: तो साथियों, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। अब आपके लिए कुछ करने को, तो चलिए बनाते हैं अभिलेख। तो सबसे पहले आप मुलायम मिट्टी या क्ले लीजिए, फिर
4: हमारे देश के इतिहास में स्त्रियों के त्याग और महानता की अनगिनत कहानियां मिलती हैं। ऐसी कुछ विरल स्त्रियों में से एक है रानी दुर्गावती। दुर्गावती का जन्म मध्य प्रदेश के महोबा नामक स्थान पर सन 1524 में हुआ था। उसके पिता कीर्ति सिंह कालंजर के राजा थे। दुर्गावती अभी छोटी ही थी कि उसकी मां का देहांत हो गया। पिता ने उसे बचपन से ही घुड़सवारी और अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा दी और ये देखकर बहुत खुश होते कि उनकी बेटी राजनीति और शासन की समस्याओं को सुलझाने में भी उतनी ही कुशल थी जितनी तीर चलाने में। एक बार की बात है,

शाबाश शाबाश मोती शाबाश, आज तुमने खूब साथ दिया। हाँ मैं जानती हूँ कि तुम थक गए हो, तुम्हें प्यास भी लग रही है, पर क्या करूँ,

0: शिकार के पीछे इतना तेज दौड़े कि अपने सब साथी पीछे छूट गए। चलो कुछ देर यहीं आराम करते हैं, तब तक बाकी लोग भी आ जाएंगे। ये लो, कुछ लोग तो शायद आ ही पहुंचे। अरे ये क्या, ये तो हमारे साथियों में से कोई नहीं। इसके कपड़ों से तो लगता है कि ये कोई मुगल सरदार है।
1: माशाल्लाह, ऐसी खूबसूरत लड़की और वो भी इस बयाबान जंगल में।
0: आपने मेरा रूप तो देखा, पर शायद ये नहीं देखा कि मेरे हाथ में तीर कमान भी है।
1: जी हाँ देख रहा हूँ, पर सच पूछे तो आप जैसी हसीन लड़कियों के हाथ में तीर कमान शोभा नहीं देते।
0: बस बस वहीं खड़े रहो, शायद तुम नहीं जानते कि मैं कालंजर की राजकुमारी दुर्गावती हूँ।
1: अखा अखा, तो आप ही हैं राजकुमारी दुर्गावती। अरे वाह, जैसा सुना था वैसा ही पाया। अरे आपकी सुंदरता और बहादुरी के किस्से तो दूर दूर तक फैले हुए हैं। इस इलाके के सभी राजे रजवाड़े आपको पाने की हसरत रखते हैं। ज़हे नसीब जो आपके दीदार हुए। अब जरा
0: फिर आगे बढ़ रहे हो, क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? कौन हो तुम?
1: मैं आसिफ खान हूँ, कड़ा का सूबेदार। आपको अपनी मलिका बनाना चाहता हूँ, और आज जब ऐसा सुनहरी मौका हाथ आ ही गया है तो अभी आपको अपने साथ ले जाऊंगा।
0: जरा हाथ तो लगाकर देख आसिफ खान, तूने दुर्गावती का रूप देखा, अब दुर्गा का रूप भी देख।
1: अच्छा वाह, और
0: हाँ तो आसिफ खान, अब जरा अपनी बात दोहराओ। मेरी तलवार तुम्हारा लहू चखने को बेचैन है।
1: मुझे माफ कर दीजिए राजकुमारी जी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, फिर कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। आप तो मेरी बहन जैसी हैं।
0: ठीक है, पर आइंदा कभी किसी लड़की पर बुरी नजर मत डालना, वरना इस देश की बेटियों को दुर्गा और चंडी बनते देर नहीं लगती।
1: अजी मेरी तौबा, जो अब किसी की तरफ आंख उठाकर भी देखूं।
0: चल बेटा मोती।
1: आज की इस बेइज्जती को मैं कभी नहीं भूलूंगा दुर्गावती। तुमसे आज की इस हार का बदला ना लिया तो मेरा नाम भी आसिफ खान नहीं।
2: एक बार दलपरचाह ने राजा कीर्ति सिंह को शिकार खेलने के लिए मनियागढ़ के जंगलों में आने का निमंत्रण दिया। शिकार की शौकीन दुर्गावती भी साथ गई। दलपत शाह इस साहसी युवती पर मुग्ध हो गए और उसे अपनी पत्नी बनाने का निश्चय कर लिया। दोनों का विधिवत विवाह हुआ। डेढ़ वर्ष बाद दुर्गावती ने एक पुत्र को जन्म दिया। बालक का नाम वीर नारायण रखा गया। लेकिन दुर्गावती के जीवन का यह सुख शांति का समय अधिक दिन नहीं रहा।
0: आधार सिंह जी, आप स्वर्गीय महाराज के मंत्री ही नहीं थे, आप उनके मित्र और चिंतक भी थे। आप ही बताइए मैं क्या करूं।
3: महारानी, आप स्वयं योग्य हैं, मैं भला आपको क्या सलाह दे सकता हूं। पर हां, इतना अवश्य जानता हूं कि स्वर्गीय महाराज अपने जीवन काल में बराबर राजकाज में आपसे सलाह लेते थे और आपकी राय की कदर करते थे। वे ये कभी पसंद नहीं करते कि आप कायरों की भांति जीवन से मुंह मोड़ लें।
0: ठीक है आधार सिंह जी, घोषणा करवा दीजिए, कुमार वीर नारायण गोंडवाने के नए राजा हैं और रानी दुर्गावती आज से सिर्फ उनकी ही नहीं समस्त गोंड राज्य की माता है।

0: राजमाता की जय, राजमाता की जय हो, राजमाता की जय हो।
1: रानी दुर्गावती ने शासन की बागडोर अपने मजबूत हाथों में संभाल ली। उसने किसानों को अधिक उत्पादन के लिए प्रेरित किया, उद्योगों को प्रोत्साहित किया, पानी की समुचित व्यवस्था के लिए कुएं और तालाब खुदवाए, पुराने कुओं की मरम्मत करवाई। वह राज्य के सभी भागों के अधिकारियों को बुलाकर उनके समस्याओं के बारे में बातचीत करती और कभी कभी स्वयं भी दौरा करती थी। राजकीय कोष और सेना की रानी स्वयं देखभाल करती थी। उसके कुशल शासन में गोंडवाना एक संपन्न राज्य बन गया। दिल्ली के मुगल बादशाह अकबर ने गोंडवाना पर अधिकार करना चाहा। आसफ खां के नेतृत्व में मुगलों की बड़ी भारी फौज गोंडवाना की ओर चल पड़ी। रानी पहले से सतर्क थी। आक्रमण हुआ। रानी की सेना बहुत बहादुरी से लड़ी। कई मोर्चों पर तो उसकी जीत भी हुई। लेकिन रानी के एक पुराने शत्रु रेवतीगढ़ के राजा सुधार सिंह ने धोखा दिया। सुधार सिंह साधु के वेश में इधर उधर फिरता और जासूसी करता। उसी ने अकबर को गढ़ा पर हमला करने के लिए प्रेरित किया था। इनाम जागीर पाने के लालच में वो इधर की खबर उधर पहुंचाया करता था।
2: अलख निरंजन।
3: साधु बाबा।
2: अब अच्छा,
3: यहाँ कहाँ घुसे चले आ रहे हो? ये रानी दुर्गावती का किला है, साधुओं का जमघट नहीं।
2: अरे वो तो हम भी जानते हैं बच्चा, लेकिन साधु तो रमता राम होते हैं, आज यहाँ कल वहाँ। अभी मुगलों की छावनी से चले आ रहे हैं
3: क्या?
2: हाँ, बाप रे बाप, क्या लश्कर है बच्चा
3: है?
2: हाथी, घोड़े, तोप, बंदूक, बड़ा भारी इंतजाम है।
3: अच्छा,
2: हाँ
3: बहुत बड़ी फौज है।
2: और नहीं तो क्या बच्चा, अरे मुगल लोग जब चूहे के शिकार पर भी निकलते हैं ना, तो शेर के शिकार की तैयारी करके चलते हैं। और फिर यहाँ, अरे यहाँ तो रानी दुर्गावती से मुकाबला है, बड़ी जबरदस्त तैयारी करके निकले हैं बच्चा।
3: तो हमारे यहाँ भी जबरदस्त तैयारी है बाबा।
2: अच्छा,
3: रानी माँ ने रसद, पानी, हथियार सबका ऐसा बंदोबस्त किया है कि मुगल साल भर भी घेरा डाले पड़े रहे तो भी गढ़ में किसी चीज की कमी नहीं होगी।
2: हैं? क्या कहते हो बच्चा, साल भर का इंतजाम है?
3: बिल्कुल है।
2: और भगवान ना करें कोई हारी बीमारी ऐसी हो जाए कि बाहर निकलना जरूरी

0: किसी से नहीं कहेंगे?
1: हाँ, हमारे महल से एक गुप्त सुरंग शहर के बाहर वाले बगीचे तक जाती है।
0: गुप्त सुरंगों का पता तुम्हारे जैसे मामूली सैनिकों को कैसे पता चलेगा? यूं ही डींग मार रहे हो तुम।
1: यूं ही डींग नहीं मारता साधु महाराज, मैं बदन सिंह हूं, बदन सिंह, रानी माँ का खास सेवक। इतना सा था जब मुझ अनाथ को रानी माँ ने सहारा दिया था।
2: पुरुष वेश में लड़ रही रानी के बहादुरी देखकर मुगलों के छक्के छूट गए। मुगल सैनिक जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। दूसरे दिन फिर घमासान युद्ध हुआ। वीर नारायण घायल हो गए थे, उन्हें रणभूमि से दूर चौरागढ़ भेज दिया गया। रानी हाथी पर बैठकर लड़ रही थी कि तभी
3: क्या हुआ रानी माँ? अरे आपकी कनपटी में तीर लगा है माँ।
4: ओ मेरा ध्यान छोड़ गनु, तू हाथी को संभाल।
3: हाथी को क्या संभालूं रानी माँ, ये तो पहले ही भालों से छिप चुका है। अब तो कुछ देर संभला रह सके तो बड़ी बात है, लेकिन आप, ओह कितना खून बह रहा है।
4: ये खून तो वीरांगनाओं का आभूषण है गनु।
5: रानी माँ देर न कीजिए, आप मेरा ये घोड़ा लेकर यहाँ से शीघ्र निकल जाइए। चौरागढ़ में राजा साहब भी हैं, वहीं जाना ठीक रहेगा।
4: अब इसका समय नहीं रहा आधार सिंह जी, मुगल सैनिक चारों ओर से घिरते आ रहे हैं। आसिफ खान से मेरा पुराना बैर है, उसके हाथों अपनी दुर्गत कराने से अच्छा है आप अपने हाथों मेरा अंत कर दें।
5: नहीं नहीं रानी माँ, नहीं, ये पाप मुझसे नहीं हो सकेगा, इसकी आज्ञा मुझे मत दीजिए रानी माँ।
4: अच्छा तो गनु बेटा, तू अपनी कटार मुझे दे।
5: रानी माँ,
3: मेरी कटार से अपने प्राण लेकर तुम मुझे इस तरह पापी नहीं बना सकती माँ। मैं तुम्हारा महावत हूँ, तुम्हारे साथ ही रहूंगा।
6: श्रोताओं, इसी के साथ अब हमारा आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
7: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
6: नमस्कार।

0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत और फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। पेरिस में भारत फ्रांस व्यापार गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देश तकनीक, नवाचार, ऊर्जा और डिजिटल विकास के क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। श्रीमती सीतारामन ने फ्रांस की कंपनियों और निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि भारत और फ्रांस न्याय के क्षेत्र में भरोसेमंद साझेदार हैं। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत मानवीय और चिकित्सा सहायता को और तेज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर राहत कार्यों की तस्वीरें साझा करते हुए बताया कि भारतीय सेना का फील्ड अस्पताल वहां प्रभावित लोगों को लगातार आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं दे रहा है। वेनेजुएला स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि दक्षिण अमेरिकी देश में भारत के मानवीय राहत प्रयासों को जनता से इसकी सेवा की गुणवत्ता के लिए व्यापक प्रशंसा मिली है। वेनेजुएला में हाल ही में आए भीषण भूकंप में मृतकों की संख्या बढ़कर 2,595 हो गई है। इस आपदा में 12,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं, जबकि 189 इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई हैं। स्थिति को देखते हुए कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्से रोड्रिगेज ने देश में 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। भारत ने वेनेजुएला के अधिकारियों से नाविक राकेश चौहान के शव के साथ छेड़छाड़ और अंग निकाले जाने की घटना की गहन जांच की मांग की है। कराकस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि घटना के सामने आने के बाद से ही दूतावास संबंधित स्थानीय अधिकारियों के सामने इस मामले को उठा रहा है। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची भारत की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट गई हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस यात्रा से भारत और जापान के बीच महत्वपूर्ण साझेदारी और मजबूत हुई है। दोनों देशों ने साझा विकास, समृद्धि तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सहयोग बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। जापान के कई समाचार पत्रों और मीडिया संस्थानों ने नई दिल्ली में आयोजित 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन को सकारात्मकता से प्रकाशित किया है। इनमें दोनों देशों के बीच रणनीतिक और आर्थिक सहित कई क्षेत्रों में बेहतर होते संबंधों को रेखांकित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची द्वारा शिखर सम्मेलन में द्विपक्षीय सहयोग के सभी क्षेत्रों की समीक्षा के बाद इन्हें मजबूत करने के लिए किए गए समझौतों के बाद जापान के मीडिया ने इन्हें प्रकाशित किया है। युवा मामलों के विभाग ने आज नई दिल्ली में माय भारत के उद्योग संघ सम्मेलन का आयोजन किया। इस अवसर पर युवा मामले और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने में देश के युवाओं की प्रमुख भूमिका है। युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने कहा कि सरकार युवाओं के लिए चल रहे कार्यक्रमों को और प्रभावी बनाने पर काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान और गुजरात दौरे पर रहेंगे। राजस्थान में वे जोधपुर हवाई अड्डे की नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। 480 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना को सालाना 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। प्रधानमंत्री राजस्थान के बालोतरा में 1,06,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। इनमें पेट्रोकेमिकल, रेलवे, सड़क, ऊर्जा और शहरी परिवहन से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिन की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर में दर्शन करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि अमरनाथ यात्रा देश की आध्यात्मिक विरासत और उसकी आस्था को रेखांकित करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में एक सनातन अध्याय बताया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने पूरे मार्ग पर उच्च स्तरीय व्यवस्थाएं की हैं। फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। 7 जुलाई मंगलवार को उसका मुकाबला कोलंबिया या घाना से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi and his Japanese counterpart Sanae Takaichi have unequivocally and strongly condemned terrorism and violent extremism in all its forms and manifestations, including cross-border terrorism from Pakistan. The 16th India-Japan Annual Summit joint statement said both leaders condemned in the strongest terms the terrorist attack in Pahalgam in Jammu and Kashmir on the 22nd of April last year. The leaders also took note of the United Nations Security Council monitoring team report mentioning the resistance front. The two leaders called for the perpetrators, organizers and financiers of the reprehensible act to be brought to justice without delay. They also called for concerted action against all UN-listed terrorist groups and entities, including Al-Qaeda, ISIS, Daesh, Lashkar-e-Taiba, Jaish-e-Mohammed, and their proxies. Prime Minister Sanae Takaichi has since departed from India. Prime Minister Narendra Modi will visit Rajasthan and Gujarat tomorrow. During his visit, he will lay the foundation stone and inaugurate various development projects worth around 1.06 lakh crore rupees in Balotra, Rajasthan. These projects span multiple sectors including petrochemicals, urban transport, railways, roads, renewable energy and power transmission. The Prime Minister will inaugurate the new terminal building at Jodhpur Airport. He will also launch the modified Uran scheme in Jodhpur. He will dedicate India's first greenfield integrated refinery cum petrochemical complex to the nation at Pachpadra in Balotra, marking a landmark achievement in the country's energy and petrochemical sector. Mr. Modi will also lay the foundation stone for phase two of the Jaipur Metro Rail project. The Prime Minister will also hand over appointment letters to around 54,000 youth recruited across various departments of the government of Rajasthan. Later in the evening, the Prime Minister will visit Gujarat, where he will inaugurate the CG semi-outsourced semiconductor assembly and test facility in Sanand. Finance Minister Nirmala Sitharaman has said the India-France strategic partnership is well placed to drive the next phase of sustainable, resilient and innovation-led growth. Addressing the India-France Business Roundtable in Paris, she said the global economy is undergoing rapid transformation due to technological advances, supply chain diversification, energy transition and geopolitical developments. The finance minister invited French businesses and investors to partner with India in its journey towards Viksit Bharat 2047. Lok Sabha Speaker Om Birla has said for the creation of a developed India by 2047, developed Bengal is essential. Addressing the two-day orientation program for the newly elected members of West Bengal Legislative Assembly at the New Town Convention Centre in Kolkata, the Lok Sabha Speaker said today digital ecosystem and AI are being incorporated into the legislative houses.
2: This is a time for digital innovation and for AI technology. The digital parliament brings debate, discussions, government policies, laws, welfare initiatives and budget information into a single platform. It provides access to both the union budget and the state budgets, making governance more transparent and accessible. Under the leadership of our Honorable Prime Minister, all government ministries have been brought together through the digital parliament. It enables citizens to stay informed about parliament proceeding, and consequently debates and discussion from across the country can be found in the digital parliament.
1: The annual Sri Amarnath Ji Yatra began this morning from both Pahalgam and Baltal routes in Jammu and Kashmir. Lakhs of devotees from across India are expected to undertake the sacred journey to the Amarnath Cave Shrine during the 57-day long pilgrimage. In the FIFA World Cup, Switzerland defeated Algeria 2-0 to reach the round of 16 in Vancouver in Canada. In another match, Spain defeated Austria 3-0 in the round of 32 at Los Angeles Stadium in Inglewood, California to book a place in the round of 16. Meanwhile, Portugal also advanced to the round of 16 after defeating Croatia 2-1 in their round of 32 match in Toronto, Canada. And with that, we end this news bulletin.
3: मीडियम वेव 284.9 मीटर्स यानी 1053 किलोहर्ट्ज़

और शॉर्ट वेव 49 मीटर्स बैंड पर ये आकाशवाणी लेह की आवाज़ है। आइए सुनते हैं फौजी भाइयों के लिए फिल्मी गीतों का प्रोग्राम।

जय हिंद फौज भाइयों, इस वक्त के प्रोग्राम में आप सुनेंगे फिल्म गीत। तो आइए प्रोग्राम के शुरुआत में सुनते हैं स्नेहा और के आवाज़ों में यादें फिल्म से ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे श्रेया घोषाल और अजय की आवाज़ों में सिंगम फिल्म से गीत। लीजिए आप सुनिए फौजी भाइयों ये अगला गीत नमस्ते लंदन फिल्म से राहत फतेह अली खान और कृष्णा की आवाज़ों में।

फिल्म गीतों के इस प्रोग्राम में आइए आप सुनते हैं तुलसी कुमार और साथियों की आवाज़ों में पाठशाला फिल्म से ये गीत। गीतकार और संगीतकार है हनीफ शेख।

फौज भाइयों के इस प्रोग्राम के अंत में आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर और रूप कुमार राठौड़ की आवाज़ों में वीर जरा फिल्म से ये गीत।

इस गीत के साथ फौज भाइयों के लिए इस वक्त का प्रोग्राम समाप्त होता है। हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।

0: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं असलम बेग। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अमरनाथ यात्रा को मुल्क की रूहानी रिवायत और सकाफती इत्तेहाद को एक लाफानी बाब करार दिया है। उन्होंने अकीदतमंदों को मुबारकबाद दी है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने फ्रांस के ताजिरों और सरमायाकारों को मदऊ किया है कि वो विकसित भारत 2047 की जानिब भारत के सफर में शरीक हों। उन्होंने भारत फ्रांस दिफाई शराकतदारी को मुस्तहकम बनाने के लिए कहा। मगरबी बंगाल में कानून साज असेंबली के 9 मुंतखब अरकान के लिए एक 2 रोजा तारुफी प्रोग्राम शुरू किया गया है। भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत जलजले से मुतासरा वेनेजुएला के लिए इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर दी जाने वाली इमदाद में इजाफा किया है। यहां तकरीबन 2600 अफराद हलाक हो गए और हजारों अब भी लापता हैं। भारत के महकमे मौसमियात ने गुजरात, गोवा, मध्य प्रदेश, ओडिशा और मध्य प्रदेश के इलाकों में कल तक के लिए शदीद और बहुत शदीद बारिश के पेश नजर रेड अलर्ट जारी किया है। और फीफा आलमी कप में वैंकूवर में स्विट्जरलैंड अल्जीरिया को 2-0 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में सालाना अमरनाथ यात्रा के आगाज पर अकीदतमंदों को मुबारकबाद दी है। अकीदतमंदों के नाम एक खत में जनाब मोदी ने श्री अमरनाथ यात्रा को मुल्क की रूहानी रिवायत और सकाफती इत्तेहाद में एक लाफानी बाब करार दिया। उन्होंने कहा कि बाबा बर्फानी के मुबारक दर्शन लाखों अकीदतमंदों की जिंदगी में एक नाकाबिल फरामोश और नेक लम्हा होता है। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन ने भी सालाना अमरनाथ यात्रा के आगाज पर सभी अकीदतमंदों को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि अमरनाथ यात्रा भारत की सबसे ज्यादा काबिल एहतराम और कदीम यात्राओं में शामिल है। इससे मुल्क की लाफानी रूहानी विरासत और अकीदे और भक्ति की जारी और सारी रिवायत की अक्कासी होती है। सालाना श्री अमरनाथ यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से शुरू हुई। उम्मीद है कि पूरे भारत से लाखों अकीदतमंद इस 57 रोजा यात्रा के दौरान श्री अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे। ये यात्रा 28 अगस्त को मुकम्मल हो जाएगी, जब रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाएगा। यात्रा का पहला जत्था श्री अमरनाथ गुफा के लिए ननवान और बालतल के दोनों बुनियादी कैंपों से आज सुबह रवाना हुआ। तफसील हमारे नामनिगार से।
1: बम बम भोले।

0: जिले में बालतल से 14 किलोमीटर का रास्ता है। दोनों ही रास्तों पर हुक्काम ने भरपूर सहूलियात मुहैया की हैं, जिनमें मेडिकल कैंप, कयाम की जगहें, लंगर, पीने के पानी और मौसम पर बरवक्त नजर रखने के इंतजाम शामिल हैं। हिफाजती इंतजाम भी भरपूर तरीके से किए गए ताकि यात्रा को महफूज बनाया जा सके। इसी दौरान यात्रियों का दूसरा जत्था आज सुबह जम्मू से रवाना हुआ। उम्मीद है कि यह आज बाद दोपहर वादी पहुंच जाएगा। श्रीनगर से अशफाक शाह की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं फैसल खान।
1: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल राजस्थान और गुजरात का दौरा करेंगे। राजस्थान के दौरे में वज़ीर-ए-आज़म जोधपुर हवाई अड्डे की नई टर्मिनल इमारत का इफ्तिताह करेंगे। 480 करोड़ रुपए की लागत से तामीरशुदा इस इमारत में सालाना 20 लाख मुसाफिरों को संभालने की गुंजाइश है। जनाब मोदी जोधपुर में नजरसानीशुदा उड़ान स्कीम का भी आगाज करेंगे। इस स्कीम का मकसद हवाबाजी के शोबे की क्यादत में तरक्की के अगले मरहले को तेज करना है। ये प्रोजेक्ट जामे और पायदार फजाई रबते को यकीनी बनाने के लिए कई अहम इकदाम पर मुश्तमिल है। वजीर आजम राजस्थान के बलोतरा में तकरीबन 1.06 लाख करोड़ रुपए मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे और कई प्रोजेक्टों का इफ्तिताह भी करेंगे। ये प्रोजेक्ट पेट्रोकेमिकल, शहरी नकल व हमल, रेलवे, सड़कों, काबिल तजदीद तवानाई और बिजली की तरसील समेत कई शोबों से वाबस्ता है। बाद में शाम को वजीर आजम गुजरात जाएंगे, जहां वो सनंद में बाहर से मंगाए गए CG सेमी कंडक्टर्स के कलपुर्जों की तरतीब और तजर्बाती मरकज का इफ्तिताह करेंगे। ये प्रोजेक्ट इंडिया सेमी कंडक्टर मिशन के तहत मंजूर शुदा इब्तदाई 4 प्रोजेक्टों में शामिल है, जिस पर 7,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की सरमायाकारी की गई है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा है कि भारत फ्रांस स्ट्रेटेजिक साझेदारी पायदार, मजबूत और इख्तिरा पर मबनी तरक्की के अगले मरहले को आगे बढ़ाने के लिए बेहतरीन बुनियाद फराहम करती है। पेरिस में भारत फ्रांस कारोबारी गोलमेज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मोहतरमा सीतारमन ने कहा कि आलमी मईशत तेजी से बदल रही है, जिसकी अहम वजूहत तकनीकी तरक्की, सप्लाई चेन में तनवो, तवानाई की मुंतकली और जोग्राफियाई और सियासी तब्दीलियां हैं। वजीर खजाना ने फ्रांस के सनतकारों और

0: के काबिल एतमाद शराकत दार हैं। उन्होंने कहा कि ये शराकत दारी काबिल एतमाद मस्नूई जहानत, डिजिटल बुनियादी ढांचे और अगले सिलसिले की जदीद टेक्नोलॉजीज के शोबों में नई सरमायाकारी और तआवुन के वसी मौके फराहम करती है। दोनों मुल्कों के दरमियान बढ़ते हुए इक्तसादी ताल्लुकात का जिक्र करते हुए वजीरा खजाना ने कहा कि पिछली एक दहाई में भारत और फ्रांस के दरमियान दोतरफा तजारत दोगुना हो गई है। उन्होंने मजीद कहा कि इस वक्त भारत में तकरीबन 1000 फ्रांसीसी कंपनियां काम कर रही हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मगरबी बंगाल कानून साज असम्बली के नौ मुंतखबा अरकान के लिए एक दो रोज़ा तारुफी प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा है। इसका इफ्तिताह लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने आज कोलकाता में न्यू टाउन कन्वेंशन मरकज में किया। मगरबी बंगाल के वजीर आला स्वयंदु अधिकारी, पार्लियामानी उमूर के मरकजी वजीर किरण रिजिजू और दीगर रियासती कानून साज असम्बलियों के अरकान और बहुत सी दीगर शख्सियतें इस तकरीब में शिरकत कर रही हैं। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने अपने खिताब में कहा कि कानून साज अरकान के लिए कानून साजी के अमल और निज़ाम की मुकम्मल जानकारी के साथ साथ ये लाजमी है कि वो नई टेक्नोलॉजीज, इख्तिरा, मस्नूई जहानत AI और डिजिटल टेक्नोलॉजी का मुअस्सर तरीके से इस्तेमाल करें।
1: ये समय डिजिटल का समय है, डिजिटल के नवाचार का समय है और AI टेक्नोलॉजी का भी समय है। आप देश और दुनिया की विधानसभाएं, पार्लियामेंट, उनकी डिबेट, उनकी चर्चाएं, उनके अच्छे अनुभव, उनके विचार, जनता के अच्छे कल्याण, नीतियां, कानून, ये सब आज एक प्लेटफॉर्म पर आप देख सकते हैं। आप दुनिया के बजट देख सकते हैं, देश के अलग राज्यों के बजट देख सकते हैं। हमने माननीय प्रधानमंत्री जी के आग्रह पर एक प्लेटफॉर्म पर सारी देश की विधायी संस्थाओं को ला दिया है। इसलिए डिजिटल संसद में आपको संपूर्ण देश की चर्चा, डिबेट आपको वहां पर मिलेगी।
0: भारत ने ऑपरेशन एमस्तात के तहत जिलजिले से मुतासरा वेनेजुएला के लिए इंसानी हमदर्दी की इमदाद तेज कर दी है। वजारत खजाना ने तिब्बी राहत की मौजूदा कोशिशों की तस्वीरें शेयर करते हुए कहा है कि आर्मी फील्ड अस्पताल वेनेजुएला में मुतासरा लोगों को तिब्बी देखभाल की सहूलत फराहम कर रहा है। वेनेजुएला के कारगुजार सदर डेलसी रेड्रिग्ज ने मुल्क में 7 रोज के कौमी शोक का ऐलान किया। वेनेजुएला में 24 जून को आए शदीद जलजिले में हलाकतों की तादाद बढ़कर तकरीबन 2600 हो गई है। इसके अलावा 12,000 से ज्यादा अफराद जख्मी भी हुए हैं। 189 इमारतें मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई हैं। नौजवानों के उमूर के महकमे ने आज नई दिल्ली में माई भारत की सनती तंजीमों के कॉन्क्लेव का इनेकाद किया। इस कॉन्क्लेव में SOCHM, फिक्की, CAIT और CII समेत सरकर्दा सनती तंजीमों ने शिरकत की। इस प्रोग्राम का मकसद सनती इदारों को माई भारत के निजाम से मुतारिफ कराना और सनती अंजुमनों, कॉरपोरेट इदारों और सरकारी सेक्टर की कंपनियों को इस मुहिम में शामिल होने के लिए मदऊ करना है। भारत के महकमा मौसमियात ने गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और मगरबी मध्य प्रदेश में कल तक के लिए शदीद से बहुत शदीद बारिश के पेश नज़र रेड अलर्ट जारी किया है। ये पेशगोई भी की गई है कि छत्तीसगढ़, मशरकी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में गुजरात गरज चमक के साथ छींटा पड़ेगा। स्विट्जरलैंड अल्जीरिया को 2-0 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। ये मैच कनाडा के वैंकूवर में खेला गया। और आखिर में खास खास खबरों का खुलासा एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अमरनाथ यात्रा को मुल्क की रूहानी रिवायत और सकाफती इत्तेहाद में एक लाफानी बाब करार दिया है। उन्होंने अकीदतमंदों को मुबारकबाद दी है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने फ्रांस के ताजिरों और सरमायाकारों को मदऊ किया है कि वो विकसित भारत 2047 की जानिब भारत के सफर में शरीक हों। मगरबी बंगाल में कानून साज असम्बली के 9 मुंतखब अरकान के लिए एक 2 रोज़ा तारुफी प्रोग्राम शुरू किया गया है। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: कार्यक्रम शुरू। भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भूकंप प्रभावित वेनेजुएला को मानवीय सहायता तेज की। भूकंप से लगभग 2600 लोगों की मौत, हजारों लोग अब भी लापता। गुजरात, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में कल मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिन की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे।
1: हजारों की तादाद में यात्री इस समय धार्मिक उत्साह के साथ पवित्र गुफा में भगवान शिव के आशीर्वाद लेने और शिवलिंग के दर्शन करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। यात्रा के दोनों रास्तों पर यात्रियों को पानी, भोजन और विश्राम स्थल उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि इस कठिन यात्रा के दौरान उनकी सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। उत्साहित यात्रियों ने सुविधाओं और व्यवस्थाओं की सकारात्मक प्रशंसा की है।
2: जो प्रशासन ने इंतजाम किया है वह खूबी बहुत अच्छा।
1: इस बीच आज सुबह जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक एडवाइजरी जारी करके यात्रियों से निवेदन किया है कि वो केवल अपनी पंजीकृत तिथियों पर ही यात्रा का आरंभ करें। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से रेश बाक्षा।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि अमरनाथ यात्रा सबसे प्राचीन तीर्थ यात्राओं में से एक है। ये देश की आध्यात्मिक विरासत और उसकी आस्था को रेखांकित करती है। तीर्थयात्रियों को लिखे एक पत्र में श्री मोदी ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में एक शाश्वत अध्याय बताया। प्रधानमंत्री ने श्रद्धालुओं से यात्रा के दौरान 5 संकल्प लेने का भी आग्रह किया। इनमें पूरी यात्रा के दौरान स्वच्छता बनाए रखना, सभी सुरक्षा और प्रशासनिक दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करना, वोकल फॉर लोकल पहल के तहत अपने यात्रा खर्च का कम से कम 10% स्थानीय उत्पादों पर खर्च करके स्थानीय अर्थव्यवस्था का समर्थन करने, एक पेड़ माँ के नाम अभियान को बढ़ावा देने के लिए रक्षाबंधन पर भाई बहन को एक पौधा उपहार में देना, ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन और विकसित भारत के दृष्टिकोण में योगदान देकर राष्ट्र प्रथम की भावना को आगे बढ़ाना शामिल है। गृहमंत्री अमित शाह ने बताया कि केंद्र सरकार ने पूरे मार्ग पर उच्च स्तरीय व्यवस्था की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत और फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। पेरिस में भारत फ्रांस व्यापार गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देश तकनीक, नवाचार, ऊर्जा और डिजिटल विकास के क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
3: श्रीमती सीतारमन ने फ्रांस की कंपनियों और निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि भारत और फ्रांस एआई के क्षेत्र में भरोसेमंद साझेदार हैं। उन्होंने आधार, यूपीआई, डिजीलॉकर और इंडिया स्टॉक जैसे डिजिटल सेवाओं का भी उल्लेख किया और कहा कि दुनिया के लगभग आधे रियल टाइम डिजिटल भुगतान भारत में होते हैं। उन्होंने कहा कि स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत का इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर वैश्विक वित्तीय केंद्र के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है और इसमें निवेश तथा वित्तीय सेवाओं के नए अवसर उपलब्ध हैं। समाचार कक्ष से अमीशा।
0: भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत मानवीय और चिकित्सा सहायता को और तेज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर राहत कार्यों की तस्वीरें साझा करते हुए बताया कि भारतीय सेना का फील्ड अस्पताल वहां प्रभावित लोगों को लगातार आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं दे रहा है। वेनेजुएला स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि दक्षिण अमेरिकी देश में भारत के मानवीय राहत प्रयासों को जनता से इसकी सेवा की गुणवत्ता के लिए व्यापक प्रशंसा मिली है। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। 24 जून को देश में आए जबरदस्त भूकंप में मरने वालों की संख्या लगभग 2595 हो गई है, जबकि 12,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और 189 इमारतें नष्ट हो गई हैं। पिछले सप्ताह कैराकस के उत्तर में 7.5 और 7.2 तीव्रता के 2 जबरदस्त भूकंप आए, जिनसे भारी तबाही हुई। अधिकारियों ने बताया कि हजारों लोग लापता हैं और बचाव तथा राहत कार्य जारी है। भारत ने वेनेजुएला के अधिकारियों से नाविक राकेश चौहान के शव के

0: साथ छेड़छाड़ और अंग निकाले जाने की घटना की गहन जांच की मांग की है। कारकस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि घटना के सामने आने के बाद से ही दूतावास संबंधित स्थानीय अधिकारियों के सामने इस मामले को उठा रहा है। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची भारत की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट गई हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस यात्रा से भारत और जापान के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत हुई है। दोनों देशों ने साझा विकास, समृद्धि तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सहयोग बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। जापान कैबिनेट के जनसंपर्क अधिकारी ने आज भारतीय पारंपरिक अभिवादन नमस्ते के महत्व का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने भारत यात्रा के दौरान हाथ जोड़कर एक दूसरे का अभिवादन किया। सोशल मीडिया पोस्ट में जापान के अधिकारी ने बताया कि दोनों हथेलियों को जोड़कर किया जाने वाला ये अभिवादन अंजलि मुद्रा कहलाता है और यह सम्मान, विनम्रता तथा आदर का प्रतीक है। जापान के कई समाचार पत्रों और मीडिया संस्थानों ने नई दिल्ली में आयोजित 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन को प्रकाशित किया है। इनमें दोनों देशों के बीच रणनीतिक और आर्थिक सहित कई क्षेत्रों में बेहतर होते संबंधों को रेखांकित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची द्वारा शिखर सम्मेलन में द्विपक्षीय सहयोग के सभी क्षेत्रों की समीक्षा के बाद इन्हें मजबूत करने के लिए किए गए समझौतों के बाद जापान के मीडिया ने इन्हें प्रकाशित किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज कोलकाता के न्यू टाउन कन्वेंशन सेंटर में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए दो दिन के संसदीय और विधायी कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री बिरला ने कहा कि बंगाल को वर्ष 2047 तक विकसित बनाने के लिए काम किया जा रहा है।
1: बंगाल की विरासत जो गौरवपूर्ण है, उस विरासत को भी पुनर्जीवित करते हुए आधुनिकता के समय नए युग की तरह 2047 तक विकसित भारत के सपनों को साकार करने के लिए बंगाल को विकसित बनाने का, बंगाल को सांस्कृतिक पुनर्जागरण, बंगाल को उद्योग व्यापार की दृष्टि से बेहतर बनाना, समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन को बदलने के लिए आप सब मिलकर काम करेंगे।
0: श्री बिरला को उद्घाटन समारोह से पहले गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1947 में बंगाल की तत्कालीन विधान परिषद में वर्तमान पश्चिम बंगाल को भारत में शामिल करने के प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। युवा मामलों के विभाग ने आज नई दिल्ली में माय भारत के उद्योग संघ सम्मेलन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उद्योग जगत के हितधारकों को माय भारत के इकोसिस्टम से परिचित कराना और उद्योग संघों, कॉरपोरेट तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को इस पहल में शामिल होने के लिए आमंत्रित करना था। इस अवसर पर युवा मामले और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने में देश के युवाओं की प्रमुख भूमिका है। युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने कहा कि सरकार युवाओं के लिए चल रहे कार्यक्रमों को और प्रभावी बनाने पर काम कर रही है।
2: इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के साथ माय भारत पोर्टल के और यूथ मिनिस्ट्री के बारे में यहाँ पे मीटिंग आज हमने आयोजित की है। माय भारत प्लेटफॉर्म के साथ कैसे अलाइन कर पाए कि जिसके माध्यम से और विजिबिलिटी हमारी बढ़े और ज्यादा से ज्यादा हम डिस्ट्रिक्ट तक, विलेजेस तक ये सभी प्रोग्राम इनको लेके जाए कि जिसका ज्यादा से ज्यादा फायदा हमारे देश के युवाओं को होगा और एक अच्छा आउटपुट उसके माध्यम से हमें मिलेगा और नेशन बिल्डिंग के लिए ये हमारे यूथ आगे बढ़ के काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान और गुजरात दौरे पर रहेंगे। राजस्थान में वे जोधपुर हवाई अड्डे की नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। 480 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना को सालाना 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। प्रधानमंत्री राजस्थान के बालोतरा में 1,06,000 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में 3 अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। नियुक्त किए गए अतिरिक्त न्यायाधीशों में सुनीता गंधम, अल्लापति गिरिधर और पुरुषोत्तम कुमार चिंतालापुड़ी शामिल हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार ऐप के माध्यम से आधार

0: अपने ईमेल सीधे अपडेट करने की सुविधा निशुल्क उपलब्ध कराई है। ये सुविधा 1 जुलाई से 6 महीने की अवधि के लिए लागू है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल तक गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में आंधी तूफान और बिजली गिरने की भी संभावना व्यक्त की है। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में आज भी तेज बारिश जारी रही। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बृहन्मुंबई नगर निगम ने अपनी आपातकालीन टीमों को अलर्ट पर रखा है।
1: सक्रिय मानसून को देखते हुए राष्ट्रीय आपदा मोचन दल NDRF की 5वीं बटालियन ने महाराष्ट्र और गोवा के संवेदनशील जिलों में राहत एवं बचाव दलों की अग्रिम तैनात की है। बाढ़ बचाव उपकरणों और प्रशिक्षित कर्मियों से बनी ये टीमें मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर, सांगली, सतारा, धाराशिव, नागपुर तथा अन्य संवेदनशील स्थानों पर तैनात की गई है, ताकि वर्षा से जुड़ी किसी भी आपत्ति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। निवेदिता, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: पंजाब और हरियाणा के अधिकांश हिस्सों के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में 5 से 8 जुलाई तक तेज बारिश, बिजली और गरज के साथ तूफान की संभावना है। इसे देखते हुए चंडीगढ़ स्थित मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं सरफिरोजी।
2: फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। एक अन्य मैच में कैलिफोर्निया लॉस एंजेलिस स्टेडियम में खेले गए राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। आज अर्लिंगटन में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। मैच भारतीय समय अनुसार रात 11:30 बजे से खेला जाएगा। बेल्जियम, अमरीका और इंग्लैंड भी कल राउंड ऑफ 16 में पहुंच गए। इस बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका और भारत के बीच क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला के मैचों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। ये श्रृंखला 15 से 27 अगस्त तक खेली जाएगी। पहला टेस्ट 15 अगस्त से गाल अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट मैच 23 अगस्त से कोलंबो में होगा। ये श्रृंखला ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है।
0: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.4% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 291 अंक बढ़कर 77,793 पर, जबकि निफ्टी 105 अंक की वृद्धि के साथ 24,281 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री अमरनाथ जी यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में शाश्वत अध्याय बताया। श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने फ्रांस के निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। भारत फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी को मजबूत करने का आह्वान किया। पश्चिम बंगाल में विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन का ओरिएंटेशन कार्यक्रम शुरू। भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए मानवीय सहायता तेज की। भूकंप से लगभग 2,600 लोगों की मौत, हजारों लोग अब भी लापता। गुजरात, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में कल मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: मीडियम वेव किलोहर्ट्स चिक्सोंग आप चुंगा सुम यांग ना मीटर्स बैंड निपक्या केचु केपजी तांग चुजुरकु शॉर्ट वेव मीटर्स जिप चुजर की थोक ने ngaje आकाशवाणी लेने जुंजिक ताइन निमे चुतो निस्तांग पे सोंस्तोक कासता चुतो निस्तांग स्कर्मांग आप चुंगा चुपा जुंग लुरिक सांचेस लापुलिन इना चांग मेसंग सोंला फुनचोक थिरिंग सरकाने जुंग लुजिक सनाता

0: तो जुले नमस्कार, एक बार फिर हाजिर हो चुके हैं लेकर के आप सबका मनपसंद प्रोग्राम हेलो फरमाइश। जी हाँ, मैं हूँ आप सबका होस्ट दिलिक्स, और शुरू करते हैं आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम की, जहाँ पर आप हमें कॉल करते हैं और अपने गानों की फरमाइशें रखते हैं। बेसब्री से इंतजार रहता है हमें, ताकि हम आपसे बात कर सके और आपकी गानों की फरमाइशें सुन सके। तो आइए शुरू करते हैं हमारे सबसे पहले कॉलर के साथ।
1: हेलो फरमाइश
2: जी, आदाब सर।
1: आदाब, सलाम अलैकुम।
2: सलाम अलैकुम सर, ठीक हो?
1: बस जनाब, हम ठीक हैं, आप कैसे हैं जनाब?
2: बस मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर, आप सुनाए, आपके यहाँ सब ठीक है? आपका पूरा टीम ठीक है? मैं श्रीनगर से बात कर रहा हूँ साहिल सर।
1: जी बिल्कुल साहिल साहब, आप तो हमारे पड़ोस में ही बैठे हैं।
2: जी बिल्कुल सर,
1: हमारा सारा टीम ठीक है। और आप सुनाइए, आपके यहाँ मौसम कैसा है?
2: श्रीनगर में तो आजकल मौसम बहुत ही खूबसूरत है, टूरिस्टों का भी रश है, और हर हाल ही में माता खीर भवानी का मेला भी खत्म हुआ है, और अब 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, साहिल साहब आप करते क्या हैं?
2: जी मैं कश्मीर आर्ट के साथ करता हूँ सर।
1: बिल्कुल, फिर तो आपको टूरिस्टों के साथ रोज मिलना मिलाना रहता होगा।
2: बिल्कुल सर,
1: इस बार टूरिस्ट कैसा है साहिल साहब?
2: बहुत अच्छा रश है सर इस बार।
1: चलो बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात है। और गाना कौन सा सुनना चाहेंगे आप?
2: गाना सुनने से पहले मैं एक गजल आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ।
1: अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया हो गया।
2: आदत ही बना ली है इस शहर के लोगों ने, बदल लेना आवाज बदल लेना, की मोहब्बत में अतवार बदल लेना, मौसम जो नया आए रफ्तार बदल लेना, अजियार वही रखना अहबाब बदल लेना, जाते हुए राही को मंजिल का पता देकर, जाते हुए राही को मंजिल का पता देकर रास्ते में रुला देना, आदत ही बना ली है इस शहर के लोगों ने, एक खेल समझ लेना शिद्दत की मोहब्बत को, जब चाह चले जाना जब चाह चले आना, आदत ही बना ली है इस शहर के लोगों ने। जी सर,
1: बहुत खूब, तो आपको शेर व शायरी का भी शौक है?
2: जी सर बिल्कुल बिल्कुल,
1: बहुत ही खूब शायरी सुनाई आपने, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
2: आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर।
1: जी साहिल साहब, गाना कौन सा सुनना चाहेंगे?
2: एक फिल्म आई थी कच्चे धागे।
1: जी बिल्कुल,
2: उसका एक नगमा है, हाय हाय एक लड़का मुझको खत लिखता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, आपके साथ हमें कौन सुन रहा है साहिल साहब?
2: जी पहले तो जो भी इस वक्त ये हमारा हेलो फरमाइश सुन रहे हैं वो सब सुनेंगे, और है मेरे भाई दो मुश्ताक और इम्तियाज।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
2: और है मोहम्मद शफी कुंदूज साहब।
1: बिल्कुल साहिल साहब, आपकी फरमाइश पर पेश करते हैं कच्चे धागे फिल्म से ये खूबसूरत सा गाना।

0: बहुत अच्छा प्रोग्राम जाता है आपके यहाँ से, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है कि आपके यहाँ से पूरे भारत की श्रोता जुड़ते हैं, क्योंकि जब से ये टीकेट के माध्यम से या न्यूज ऑन एआर ऐप के माध्यम से आया, तब से लेकर सुविधा ये होगी कि पूरे भारत की श्रोता जुड़ जाते हैं, क्योंकि आकाशवाणी देश का जो चैनल है पॉप करो रहा है। पहले क्या होता, पहले रेडियो में शायद हमारे यहाँ नहीं आता, नहीं पकड़ता,
1: जी बिल्कुल
0: तो अब ये है कि हम किसी भी माध्यम से सुन सकते, चाहे डीटीएच के माध्यम से, चाहे न्यूज ऑन एआर ऐप के माध्यम से। अब तो शायद उम्मीद करता हूँ अब आकाशवाणी ने एक नया ऐप बना है, ओटीटी प्लेटफॉर्म, उससे भी आ जाएगा, तो फिर उससे उसके माध्यम से सुन पाएंगे।
1: बहुत ही अच्छा लगा राकेश जी सुनकर कि आपको इतनी सारी जानकारी है।
0: जी, इसकी हम आकाशवाणी से, सिर्फ आकाशवाणी के माध्यम से जानकारी लेते हैं, क्योंकि मैं कहना चाहता हूँ कि सिर्फ आकाशवाणी सिर्फ सुनना ही नहीं है, आकाशवाणी के बारे में हमें जानकारी भी होनी चाहिए कि कौन कौन सा केंद्र है, किस माध्यम से चलता है। नहीं तो मेरे लिए तो कुछ लोग बोलते हैं हिमाचल के श्रोता हमारे, और बोलते हैं कि हम तो वही शिमला के अलावा कहीं कॉल करते हैं। मतलब शिमला तो ठीक है, वो तो हमारा जन्मभूमि है, तो लेकिन ये है कि अपने भारत वर्ष के किसी भी केंद्र पे अगर कॉल करेंगे तो अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें क्या होता है आकाशवाणी में अपने विचार रखने का मौका मिलता है, चाहे कोई भी आकाशवाणी केंद्र पर आप ट्यून कर लो।
1: बहुत ही अच्छे विचार हैं राकेश जी आपके, और बहुत ही अच्छा लगा कि आप अपने ही स्टेशन के अलावा आप दूसरे स्टेशनों में भी कॉल कर सकते हैं, ऐसा विचार आप रखते हैं, ये बहुत ही अच्छी विचार है राकेश जी। बिल्कुल राकेश जी, गाना कौन सा सुनना चाहेंगे आप?
0: फिल्म का नाम है राजा,
1: जी बिल्कुल
0: और गाने के बोले हैं आंख मिलाते डर लगता है कहीं इश्क ना हो जाए।
1: जी बिल्कुल राकेश जी, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपकी फरमाइश पर पेश करते हैं राजा फिल्म का ये खूबसूरत सा गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: मेरा नाम है पूरा वर्मा और मैं आपसे बात कर रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट जयपुर राजस्थान गांव का नाम अंत में लोकल।
0: बिल्कुल पूरन वर्मा जी, हम आपको पहचान गए, कैसे हैं आप?
1: मैं सर बढ़िया हूँ सर। वो पिछली बार से रिकॉर्डिंग नहीं बजी थी सर, कुछ कारण हो गया था।
0: हाँ पूरन जी, उसके लिए हम तहे दिल से क्षमा चाहेंगे, क्योंकि उस दिन तकनीकी खराबी की वजह से ना ये हम ब्रॉडकास्ट नहीं कर पाए, तो उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे पूरन जी।
1: तो आप कैसे हो सर? वहाँ का मौसम कैसा हो रहा है? हमारे यहाँ तो बादल छा रहे और बारिश का मौसम हो रहा है
0: जी। पूरन जी, हमारे यहाँ बारिश, धूप, बादल तीनों ही आसमान में देखने को मिल रहे हैं, तो मौसम के बारे में मैं कुछ पर्टिकुलर आपको नहीं बता पाऊंगा क्योंकि हमें एक ही दिन में बारिश भी देखने को मिल रही है, धूप भी देखने को मिल रही है और बादल भी छा रहे हैं। और बताएं क्या चल रहा है आपके यहाँ?
1: बस सर बढ़िया है, आपका कार्यक्रम सुनते रहते हैं, इंतजार कर रहा था कब मेरा कॉल लगे तो लग गया।
0: बिल्कुल पूरन जी, और आप लोगों की ये प्रेम है कि आप अगर कॉल ना भी लगे तो अगली बार फिर से ट्राई करते हैं, और इसी के लिए हम आभारी हैं आपके जी। पूरन जी, गाना कौन सा सुनना चाहेंगे पूरन जी?
1: जी सर, फिल्म का नाम है घरवाली और बारवाली और गाने के बोले नेपाल की ठंडी हवा, ऐसा कुछ गाना है वो।
0: जी बिल्कुल पूरन सिंह जी, आपके साथ हमें कौन सुन रहा है पूरन जी?
1: जी सबसे पहले आप सुन रहे हैं, मेरा दोस्त है और रमेश प्रजापति जी है, गोल्डी भाई है, बिमल है, अमल है और जितने कॉलर लाइव सुन रहे हैं तमाम श्रोताओं के लिए सुनाना चाहता हूँ सर ये गाना। और राकेश,
0: बहुत बहुत धन्यवाद पूरन जी, आपकी फरमाइश पर पेश करते हैं घर वाली बाहर वाली फिल्म का ये खूबसूरत सा गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: ग्राम सनोतिया जिला गुना मध्य प्रदेश से सर जी, आपका भाई मैं मांगीलाल चंदेल बोल रहा हूँ
0: जी। मांगीलाल चंदेल जी, कैसे हैं आप?
1: सर जी, आपकी दुआ और भगवान की कृपा से मैं बढ़िया हूँ, और मैं इस बार से यही कामना करता हूँ कि आप भी बढ़िया हो।
0: हम बिल्कुल ठीक है मांगीलाल जी, और आप सुनाएं, आप कैसे हैं?
1: बस मैं भी बढ़िया हूँ सर जी।
0: क्या चल रहा है, बारिश के आसार हैं कि नहीं?
1: बारिश के आसार 19 तारीख में बहुत भयंकर बारिश हुई थी, और फिर कल भी 24 में भयंकर हो गई, और अब भी संभावना हो रही है, गरजना हो रही है, काले काले बादल आसमान में छाए हुए हैं, बिजली चमक रही है, बहुत सुहावना मौसम हो रहा, और पानी बिल्कुल आने वाला है, घंटा आध घंटा के अंदर पानी बरसने वाला।
0: बिल्कुल बिल्कुल मांगीलाल जी, और ये तो अच्छी खबर हो गई आपकी खेतों के लिए फिर।
1: सर जी, पानी बरस जाएगा, क्या है, हम किसान हैं तो फसल बो देंगे रबी की, जो भी हमको बोना है, मक्का बोते हैं, धान लगाते हैं, सोयाबीन लगाते हैं, उड़द लगाते हैं, मूंगफली लगाते हैं, जी इस तरह की रबी की फसल हम, खरीफ की फसल हम।
0: जी बिल्कुल मांगीलाल जी, आपका नाम हर एक कॉलर, हर एक हमारे जितने भी जो भी कॉल करते हैं उस ग्रुप में आपका नाम आता ही आता है।
1: हाँ सर जी, मित्र हैं वो हमारे, मित्र हैं, आपस में लेते लेते नाम, वीडियो के माध्यम से मित्र बन चुके हैं सर जी।
0: और ये बहुत ही खूबसूरत बात है कि रेडियो के माध्यम से आप लोगों में इतनी अच्छी और गहरी मित्रता है।
1: हाँ सर जी, मैं अपने मोड़े से बढ़ाई तो नहीं करूंगा, लेकिन भारत के हर राज्य में हमारे मित्र बने हुए हैं।
0: बिल्कुल जी मांगीलाल जी, गाना कौन सा सुनना चाहेंगे मांगीलाल जी?
1: सर जी, फिल्म का नाम रहेगा 9-2-11
0: जी,
1: और गाने के बोल है, आँखों में क्या जी पहला बादल
0: जी।
1: हाँ ये ना सर जी, हमारे कुछ मित्र हैं, उनको डेडिकेट रहेगा, वो मित्र हैं नरेश प्रजापति जी हैं, गजराज लोधी जी हैं, बसंती लाल जी हैं, केसरी सिंह राजपूत जी हैं, राम बाबू शर्मा जी हैं, भगवान सिंह परमार जी हैं, अमर सिंह साहू जी हैं, शेख हैदर खान जी हैं, और हमारे मित्र हैं त्रिपुरा से अविनाश जी, आशुतोष जी, संगीता बहन जी, और कश्मीर से हैं हमारे मित्र अतीब अहमद रैना
0: जी। जी बिल्कुल बिल्कुल मांगीलाल जी, आपकी फरमाइश पर पेश करते हैं 9-2-11 फिल्म का ये खूबसूरत सा गाना। बहुत बहुत धन्यवाद।

0: बस तेरा इंतजार है।
1: देखने में भोले हो पर वो बड़े चंचल।
0: हाँ चल में क्या जी।

0: हेलो फरमाइश
1: सर जी, नमस्कार।
0: नमस्कार सर,
1: मैं रमेश प्रजापति ग्राम माया तहसील रहती जिला सीहोर एमपी से बोल रहा हूँ। सर जी,
0: जी रमेश जी, कैसे हैं आप?
1: स्वस्थ है, मस्त है, गर्मी के आनंद ले रहे हैं, दुकान में बैठे हैं, काम कर रहे हैं। काफी दिन हो गया था, सोचा मैंने फोन लगाता हूँ, तो 4 बजे से परेशान हो रहे हो लग पाया।
0: बिल्कुल बिल्कुल, आपकी यही आपका प्रेम है और यही आपकी शिद्दत है जो आप 4 बजे से फोन लगा रहे हैं और आखिर में अंततः आपका फोन लग ही गया। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके रमेश जी। क्या करते हैं रमेश जी आप?
1: मैं सिलाई का काम करता हूँ, टेलर हूँ
0: जी। तो आप किस तरह के कपड़े सिलते हैं?
1: पैंट शर्ट कुर्ता पजामा कमीज सफारी
0: जी जी जी
1: और सफारी सूट और ये आता ना सलवार कुर्ता
0: जी। बिल्कुल रमेश जी, तो आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे खूबसूरत कपड़े सिलते हैं
1: जी।
0: जी बिल्कुल,
1: कपड़े तो एक से बढ़कर एक मिलते हैं, भले अपन पहनेंगे लेकिन बनाएंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: जी।
0: अच्छा रमेश जी, आप हमारे लद्दाख का रेडियो कब से सुन रहे हैं?
1: मेरे को तो होगा 2-3 साल।
0: अच्छा, लद्दाख का हमारा रेडियो सुन के
1: जी
0: कैसा लगता है आपको हमारा रेडियो?
1: अरे बहुत अच्छा कार्यक्रम लगता सर जी आपका, क्योंकि आप इधर हिंदी इतनी बढ़िया बोलते हो आप लोग।
0: जी जी रमेश जी
1: जी, और आपका प्रेम बहुत बढ़िया जो हमको खींच के लाता है। हम मतलब जरूर मतलब कितने सोचे तो भी काम कितने हमारे पास हो, इसके बाद भी काम का समय निकाल कर आपके पास फोन लगाते हैं।
0: बहुत ही अच्छा लगा रमेश जी ये सुनकर कि आप हमारा रेडियो इतने टाइम से सुन रहे हैं और आपको अच्छा लग रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गाना कौन सा सुनना चाहेंगे रमेश जी?
1: ये फिल्म है जय श्री शिवराम
0: जी,
1: उसमें गाना है पापा मेरे मैं छोटी से बड़ी हो गई।
0: जी बिल्कुल। अच्छा रमेश जी, जानना चाहेंगे हमारे साथ आपके साथ हमें कौन सुन रहा है रमेश जी?
1: हमारे साथ हमारे ये मित्र है, एक तो लोकेंद्र वर्मा है उज्जैन से
0: जी,
1: धर्मवीर है दिल्ली से, माहिला चंदेल है, भगवान सिंह परमार है, पूरन वर्मा जी है, रजनी जी, केसी सिंह राजपूत है, माहिला चंदेल है, प्रेम सिंह सिसोदिया है, आशुतोष जी है, संगीता जी है, शिवलुहार है विदिशा से, पूनम जी है कानपुर से, और अविनाश जी है, राकेश जी है शिमला से, बिमल है असम से, अमल है गोल्डी है, पूनम जी है कानपुर से, अमर सिंह साहू है भाई को मुंडा है, रमेश पात्रे जी है, और तनुश्री है, एक बच्ची है हमारी छोटी सी तनुश्री का, उसका आज जन्मदिन है, लेकिन कार्यक्रम तो कल आ गया, लेकिन आज ही से उसको विश कर देते हैं, वहाँ जो उसका जन्मदिन।
0: अरे वाह, आपके बच्ची को हमारी पूरे ऑल इंडिया ले के टीम की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, और आप ही के फरमाइश पर पेश करते हैं इस खूबसूरत से गाने को।
2: पापा में

0: हेलो फरमाइश। नमस्कार सर।
1: सर मैं गुजरात से बात कर रहा हूँ।
0: जी सर।
1: धीरज जबारी है मेरा नाम।
0: जी
1: समय मिलने पर आकाशवाणी देश से जुड़ते हैं तो बहुत अच्छा लगता है सर।
0: जी धीरज जी, बहुत अच्छा लग रहा है हमें भी आपसे बात करके। धीरज जी आप क्या करते हैं?
1: सर मैं प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ और समय मिलने पर आकाशवाणी के कार्यक्रम सुनता हूँ, बहुत अच्छा लगता है।
0: जी बिल्कुल, प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं धीरज जी।
1: जी सर, और आकाशवाणी से इतना लगाव है कि सुने बिना नहीं रह सकते सर।
0: ये तो आपने बहुत ही अच्छी बात कही और हमें बहुत अच्छा लगा कि आप एक प्राइवेट कंपनी में होने के बावजूद भी समय निकालते हैं अपने आकाशवाणी के लिए, और ये आपका प्रेम है।
1: जो अपना सहिता जो भी माध्यम होता है सर,
0: जी
1: इसके लिए श्रोता कुछ न कुछ करता है, अपना कुछ न कुछ कीमती समय बता के वो सुनता है, और रेडियो सुनने में एक फायदा एक भी है तो अपना कार्य करते जाओ और रेडियो सुनते जाओ।
0: बिल्कुल बिल्कुल धीरज जी, बहुत ही अच्छी बात कही आपने, कार्य के साथ साथ रेडियो सुन सकते हैं आप। धीरज जी कैसा चल रहा है आपका मौसम और कैसा है आपके यहाँ?
1: सर बादल छाए और हम यही चाहते है कि बारिश आ जाए, मोर भी यानी अपनी आवाज से बारिश को पुकार रहे, लेकिन बारिश आता नहीं, अपनी तरह से काम करता है इंसान को, कुदरत पर निर्भर है वो बात तो पक्की है।
0: बिल्कुल बिल्कुल धीरज जी, हम सभी कुदरत पर निर्भर हैं, बट दुआ करते हैं, उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द आपके यहाँ बारिश हो।
1: जी सर, अगर जो कुदरत में जो हमारा जो मौसम है, जो हवामान है, वो जो बदलता है तो उसमें कहीं ना कहीं हमारा ही भूमिका है, तो उसको स्वच्छ रखने के लिए, उसको पर्यावरण को हम बचाने के लिए हमारी बहुत अहम भूमिका है अगर हम चाहें तो।
0: बिल्कुल धीरज जी, आपने रेडियो के माध्यम से इतनी अच्छी बात कह दी हमारे सभी लिसनर्स को कि अगर हम चाहें तो हम अपने पर्यावरण को बिगाड़ भी सकते हैं और हम चाहें तो इसे सवार भी सकते हैं।
1: बिल्कुल, खुद से शुरुआत करनी पड़ती है सर।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल,
1: और हमारी एक छोटी सी पहल कई लोगों को प्रेरणा मिल सकती है और इसके आगे हम दूसरे भी कर सकते हैं।
0: जी बिल्कुल धीरज जी, आपके बहुत ही अच्छे विचार है धीरज जी, और बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके।
1: जी सर, वही प्रेरणा हमें आप लोगों अनाउंसर और आकाशवाणी के जरिए मिले।
0: बहुत बहुत धन्यवाद इस श्रेय देने के लिए।
1: जब लेह में जुड़ते हैं तो हमने मान लो कि हम लेह घूमने के लिए आए, मेरा बच्चा घूमने आया था, लेकिन नसीब होता है सर, सभी के सप्ताह पूरे नहीं होते, लेकिन मेरा बच्चा आया था, मैं अगर जीवित रहा तो लेह की मुलाकात लूंगा जरूर।
0: बिल्कुल बिल्कुल, आपका हार्दिक स्वागत है लेह लद्दाख में।
1: जी सर धन्यवाद।
0: जी धीरज जी, गाना कौन सा सुनना चाहेंगे आप?
1: तू इस तरह मेरी जिंदगी में शामिल हो सर, मेरे ख्याल से आपके ऐसे नाते फिल्म का गाना है अमृता जी की आवाज में।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत गाने की फरमाइश रखी है आपने धीरज जी, आपके साथ
1: एक एक गीत सर तीन आवाजों ने गाया है मेरे ख्याल।
0: जी जी बिल्कुल धीरज जी,
1: और अमृता की आवाज में हो तो सर जरूर पेश करना।
0: बिल्कुल बिल्कुल धीरज जी, हम पूरी कोशिश करेंगे।
1: और नाम थोड़ा 4-5 ले सकूं सर?
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: हमारे आकाशवाणी फोन इन एकता ग्रुप है सर, इसपे हमारे गौतम रायपुरी जी, तुकाराम दादर जी है, गुणवंत कबीर, दुखेंद्र वर्मा जी, गंगाधर सावंत, बहुत भारत के सभी राज्यों के श्रोता जुड़ते हैं इसपे, और हमें लेह की फोन की अपडेट भी हमारे श्रोता देते हैं सर। हमें अच्छा लगता है कि एक आकाशवाणी ऐसा माध्यम है जिसके जरिए से भारत के कई ऐसे श्रोता ग्रुप है, तो इसमें हमें भारत की आकाशवाणी केंद्रों की जानकारी मिल जाती है।
0: बिल्कुल धीरज जी, आकाशवाणी एक ऐसा माध्यम बन चुका है कि हम देश के कोने कोने में किसी से भी बात कर सकते हैं, किसी से भी जुड़ सकते हैं।
1: जी सर, और हमने 90 साल की जो प्रसारण यात्रा का जो हमने आनंद लिया और अभी भी ले रहे, तो वो तो ये आकाशवाणी ही कर सकती है सर। 90 साल कर श्रोताओं को मनोरंजन ज्ञान पिरोना कोई आम बात नहीं है सर।
0: बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा, और इसी वजह से हमें लगता है कि आकाशवाणी अब एक परिवार बन चुका है सबके लिए।
1: बिल्कुल सर, और मैं कहीं भी अगर लिखता हूँ सर तो मैं आकाशवाणी ले परिवार, टेक्निकल टीम और सभी श्रोताओं को सादर नमस्कार करके भी लिखता हूँ सर।
0: बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही अच्छे विचार है धीरज जी आपके।
1: जी सर,
0: और आपकी फरमाइश पर पेश करते हैं ये खूबसूरत सा गाना, तो इस तरह से
1: बात की, मैंने माफी चाहता।
0: अरे नहीं, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके धीरज जी, धन्यवाद।

मोहब्बतों में जीने वाले खुशनसीब हैं, मोहब्बतों में मरने वाले भी अजीब हैं। अजीम है हमारी दास्तां जाने मन, फासलों पर रहते हैं

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। भारत ने स्पष्ट किया है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करेगा, तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में ये जानकारी दी।
1: India's position on the Indus Waters Treaty.
2: सिंधु जल संधि पर भारत का रुख पहले की तरह स्पष्ट है। पाकिस्तान के लगातार सीमा पार आतंकवाद को मदद देने के जवाब में सिंधु जल संधि को रोक दिया गया था। पाकिस्तान को विश्वसनीय तरीके से सीमा पार आतंकवाद को मदद देना बंद करना पड़ेगा।
0: तीस्ता नदी के समग्र प्रबंधन और पुनरुद्धार परियोजना पर श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश में भारत की विकास परियोजनाएं दोनों देशों के बीच तय सहमति के आधार पर चलती हैं और समय समय पर उनकी समीक्षा की जाती है। वेनेजुएला से भारत लाए गए एक भारतीय नाविक के शव से अंग निकालने की खबरों पर उन्होंने कहा कि भारत ने इस मामले को वेनेजुएला सरकार के सामने उठाया है। भारत ने इस मामले की जल्द और निष्पक्ष जांच करने को कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने आज नई दिल्ली में बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में रहेंगे। उन्होंने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि मलक्का जल डबरू मध्य की समुद्री सुरक्षा और स्थिरता में इंडोनेशिया की महत्वपूर्ण भूमिका है। यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया में रहेंगे। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों की क्षमता बढ़ाने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार सेना के लिए आकाश तरंग इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली, पैदल सेना के लिए टैंक रोधी मिसाइल प्रणाली, मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली, बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली, टैंकों के लिए सक्रिय सुरक्षा प्रणाली और जेट आधारित कामिकाजे ड्रोन प्रणाली की खरीद को मंजूरी दी गई है। नौसेना के लिए मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन, जहाज से संचालित मानव रहित हवाई प्रणाली और इलेक्ट्रिक प्रणोदन प्रणाली के परीक्षण के लिए भूमि आधारित सुविधा स्थापित करने को स्वीकृति दी गई है। वायुसेना के लिए अधिक ऊंचाई पर लंबे समय तक उड़ान भरने वाले फिक्स्ड विंग प्लेटफॉर्म और अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद को भी मंजूरी दी गई है। पंचायती राज मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया गया। 16वें वित्त आयोग ने ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 4,35,236 करोड़ रुपए की अनुशंसा की है। ये 15वें वित्त आयोग की तुलना में लगभग 84% अधिक है। पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि 16वें वित्त आयोग ने पंचायतों के लिए

0: 80% मूल अनुदान और 20% प्रदर्शन आधारित अनुदान प्रस्तावित किए हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश में तोतापुरी आम उत्पादक किसानों की समस्याओं के आकलन के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति के गठन का निर्देश दिया है। श्री चौहान ने कहा कि तोतापुरी आम उत्पादकों की आय और आजीविका की रक्षा करना सरकार की प्राथमिकता है। सरकार ने बैट बीएमएस इपोक आई आयन और लॉसिगी एप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से हटाने का आदेश दिया है। ये कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। इन एप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से बंद करने के लिए किया जा रहा था। मामले की जांच जारी है और सरकार इस पर लगातार नजर बनाए हुए है। मौसम विभाग ने कल तक गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में आंधी तूफान के साथ बिजली गिरने की आशंका है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में रात 11:30 बजे ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। एक अन्य मैच में तड़के 3:30 बजे अर्जेंटीना का मुकाबला केप वर्डे से होगा। इससे पहले स्पेन, पुर्तगाल और स्विट्जरलैंड ने अंतिम 16 में प्रवेश किया। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। The government has reiterated that the Indus Waters Treaty remains in abeyance in response to Pakistan's continued sponsorship of cross-border terrorism. Briefing media in New Delhi this evening, spokesperson of the Ministry of External Affairs, Randhir Jaiswal, said India's position on the Indus Waters Treaty is consistent. He said Pakistan must credibly and irrevocably renounce its support for cross-border terrorism. On Teesta River Comprehensive Management and Restoration Project, Mr. Jaiswal said India's development assistance for projects in Bangladesh is based on a mutually agreed roadmap and is regularly reviewed. The Defence Acquisition Council has approved capital acquisition proposals worth 52,000 crore rupees to enhance combat readiness of defence forces. The proposals for which approval has been given include procurement of anti-unmanned aerial vehicles, electronic warfare system Akash Tarang, man-portable anti-tank guided missile systems, medium-range surface-to-air missile weapon system, very short-range air defense system, among others. Union Minister for Agriculture and Farmers Welfare Shivraj Singh Chauhan has directed the constitution of a high-level expert committee under the Indian Council of Agricultural Research to examine the challenges being faced by Totapuri mango growers in Andhra Pradesh. The decision follows the Union Minister's recent visit to Andhra Pradesh, during which farmers informed the Minister that prices of the Totapuri mango variety, which is cultivated extensively for the processing industry, have declined significantly in recent months. Mr. Chauhan said safeguarding the income and livelihoods of Totapuri mango growers is a priority for the government. The Ministry of Information and Broadcasting has directed the Broadcast Audience Research Council to stop publishing television ratings across both news and non-news genres until its license is renewed under the Television Ratings Policy 2026. The government has ordered the removal of the BAT BMS, Epoch I Iron and Lossigy apps from the Google Play Store and Apple App Store with security concerns. The action followed after allegations that the applications were being used to remotely disable e-vehicles, including e-rickshaws. Finance Minister Nirmala Sitharaman has said the India-France strategic partnership is well placed to drive the next phase of sustainable, resilient and innovation-led growth. Addressing the India-France Business Roundtable in Paris, she said the global economy is undergoing rapid transformation due to technological advances, supply chain diversification, energy transition and geopolitical developments. India has stepped up its humanitarian assistance to earthquake-hit Venezuela under Operation Amistad. Sharing pictures of the ongoing medical relief efforts on social media, the Ministry of External Affairs said the Army Field Hospital continues to provide medical care to affected communities in Venezuela. The Indian Embassy in Venezuela has said

जय हिंद फौजी भाइयों। फिल्मी गीतों के कार्यक्रम में सबसे पहले सुनते हैं ABCD2 फिल्म से ये गीत, प्रिया सरैया और दिव्या कुमार की आवाज़ों में, गीतकार मयूरपुरी और संगीतकार सचिन जिगर।

आइए अब सुनते हैं बचना ए हसीनो फिल्म से ये गीत, के और शिल्पा राव की आवाज़ों में, गीतकार अन्विता दत्त गुप्ता और संगीतकार विशाल शेखर।

अभी आप कॉकटेल फिल्म से गीत सुन रहे थे, मोहित चौहान और शिल्पा राव की आवाज़ों में। गीतकार इरशाद कामिल और संगीतकार प्रीतम। फिल्मी गीतों के कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं दिल्ली 6 फिल्म से ये गीत, एआर रहमान की आवाज़ में, गीतकार प्रसून जोशी और संगीतकार एआर रहमान।

अभी आप एक विलन फिल्म से गीत सुन रहे थे, अरिजीत सिंह की आवाज़ में, गीतकार और संगीतकार मिथुन। आइए अब सुनते हैं फैशन फिल्म से ये गीत, मोहित चौहान और नेहा भासिन की आवाज़ों में, गीतकार इरफान सिद्दीकी और संगीतकार सलीम सुलेमान।

0: Ibu Akashwani le in Kasatiang Chandolma na Natsul Sanazat. Tikse Gonpe Learning Center eka futsal court jate yotkan bo shiskyong jonba wike sakseni shkyabje tikse rimbo che chok jukte yot tuz guzuk stendil jate nok. Ladakh se na nga tseshchi kolte pankani plastik icha la kolche da kakja tangs te yotkan bo transpo na ngempo laglayan kyong chizlo kel tupa cho chizla yung tseri la sir nga shuktang ngempo sholinjik tanga nok. Umling la challenge ngistong ishu saruk julay de ches chui jaga talik za chesenok kasata na chul kun jip sal tangya po sana za tikse kon pe learning center e ka jang ring meter jip chu tang ishi na nga futsal court sa jang za te yot ka ne guzuk stendel shiskyong jon ba wi ke sakse ne skyab je tikse rimbo che chok juk se yot tu za te nok teng sa zo tap na nga po dup ka ne i bor kyute ladak se na salang se sheri ga yer gas kong pel za ches tang ladak se junu kun wang cha tang dan kan za ches ponok fursal ko rika zuzme trap yo tenok yang sacha thun pe khoryuk jigi nanga salpa kunla logang postal yerga si jongda riskap stop chuk ches ponok ladak se junu kunla chepi thop thop pa cho ches tang stanji chepi riskas ping che la shis kyong jon ba wike sakse ne sal jongda re tikrim jigi guzuk cha tenok ibul lagle ne kyong ches la junu sumchu soruk damska ni nang ne pomo sumchu sobji tang putsa ngis jong changma ne gmr varsala lakshmi center for Employment and Livelihood New Delhi Kaltenok Kongula the Nistang Sumi Ringi Advanced Computing Data Visualization Cargo Logistic Associate Customer Service Executive Tang Beauty and Spa Business Banking Associate Front Officer Guni Stalla Jongda Salchesenok Jongdari na Tukaklin Kangula Dangsa Tangjanang Jongdari Dosongun Corporate Social Responsibility Nangjin GMR Saltenok Yang Ujung Ade Jung Series Kalden in Nanga Roxalenjik Tanok Jongdar Ton Testing Ni Kongula Industry Partner Selby Relax O Walters Electric Guni Nanga Chepidis Kap Salchesi Tabding Utenok Changtang zong inanga thengchi kolte phangka ni plastiki chalak kolche la gakcha tang syut ka ne gap gal chukan gunika tim nang jin la si shul tlin jik tang anok ngume naib tasil der feroz emat khan ni ngume thom si nanga miksali la si jik shul te theng chi kol te phangka ni plastic i chalak kolche si gakcha tang syut ka ne ka khya bi gap gal chukan gunika la jik tok len te nok yang gakcha tang khan ni tims transport nang ne pol lag le na khyong che la chung kang gun hong ste nok yang gap gal chukan chung pa gun la chat pa kal te nok inna tu da naib tasil der Feroz Emati Khani Mimans Kun Tsongpa Gun Tang Skoryang Spa Gun La Teng Chi Kolkani Plastic Icha La Kolchez La Zem Te Jukchez La Jopul Tenok Tena Chok La Anle Naib Ta Sildar Kunzez Dol Me Tsongkan Gun Longs Te Teng Chi Kolkani Plastic Icha La Kolchez La Gakcha Tang Se Yotkani Toga Lazgul Isko La Shela Cha Tenok Yang Longche Si La Siri Ring La Tsongkan Gun Inang Ne Single Use Plastic Icha La Kun Gun Tsongchez Longchez Tang Sakchez Te Borchez Se thoga la sishul tenok single use plastic ichalak doms kilo sumchu jiktang tusa changka ni chalak kun zumstenok naib tasildar kunjis dolme chongpa guntang thommi gunla single use plastic ichalak e chabza khoryuk tang tun te chalak kolte khoryuk sangma borchela jopol tenok gyagari magmi jak chungi se ringi summer expedition jik ngonme chungla silam silk rodika guzuk cha tenok expedition inanga thukka len kan magmi kuni kilometer ngi pya tukchu rabji ringi lam gun par za Kyo ches tang nyampo khoruk shungs kyo bza cha se skola shiang skol ches se nok. Ina tsulguna kash vani lena san ches da pulinjik tang in. Ladak se salpa takshu jia ujung nga de jung tiri chokne ngul rok sal kan bo shiskyong joan ba wike sakse ne chakne sal tenok. Asian penchak se la tanduri na nga gyagare tuzmi tsula tukak len ches chan stanzin tsewang tang skarmar da Karma Dawa Zesal World University Games in a Tengis Ladakh se Pomo Tangpore Tsula Tuskan Shenas Parvinta NCC Expedition Gute Mount Everest Sika Zaskan Ladakh Spastal Pachungshok Padma Namgyal Kulna Peneng Ngulrok Stong Ngapchu Ngapchu Goste Saltenok Changtang Zong Inanga Hime Nanga KVK Nyuma Chokne KVK खेत बचाओ अभियान सोनम लस्कुंग इसके जुंगडेला टलिक जाते नोक डिग्री मिनांगा खतपू तंग खेमिया गमुल निस्के दोम सवनम पासुम चूजिक तु कगलें तेनोक इतुस केवे के न्यूमेस पोनबो डॉक्टर पुंचोक टुंडू बीस केमिकल फर्टिलाइजर यंगना चोस्मा लुद कुनी मीमांग से खमदे माछत से खमदे कानोस क्यों छेनमो यों कने स्कोला ठोस तुगा जा देंजिक रंगजी निर्गुई कस्तेन का नेसा जिंग बाद के जाचेस जीवामृत बीजामृत अच्छा दाना तंगवासपा गुनिस्कोला शरत जाते नोक न्यूमे सोनम लस्कुंगे खकुर पासपुन बोंगावांग पालकी दे सोनम पागुनी फंदे पिया छजी नाचोक लगले ना क्यों न्यूदकान सोयल का टिस्को लंग शरत जाते नोक यंग जुआमरी जाचे लाबालांग इच्छा चीन कुरम तंग बेसेन गुन श्रेस ते लू चोका ने से बुचिक गुन ठंसपो गुश्चे सेस्कोला शरत जाते नोक ड्रोन तं इंटरनेट ऑफ थिंग्स स्कोला दंग तं दिन इजा खुनला यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख के कारगिल कैंपस इनांगा आई हब दिवा सीमा संपर्क आईआईटी रुड़की तंग यपो जुंगडे लायु लेदाने लास्टा शिक्षाटिक जादिन जिकतानो लास्टे नांगा ड्रोन तं इंटरनेट ऑफ थिंग इनांगा ग्युजा यों न्यूत कन स्कोला चोंगदर सालिन जिकतांग नो ले जोंग डी एडिक्शन सेंटर इ छोकने स्टॉक सिदर स्कूल इनांगा राजिचे सिरमाने गबका लहा गोस्पेल चे से डिग्री मजिक टालिक जातेनो इतुस ड्रग एब्यूज इनोस्क्यून गुनेस्को लहा गोस्पेल इन जिकतांग खमदे ट्रांसपोर बोर्ड थुपा चाने मिचे फुतंग जाचेस तंग दमका गुन ग्युज जाते नंतन जाचे दस पोस पासाल तेनोक यांग गेरगन गुनला लोपठुक जिगिना ड्रग एब्यूज इ लोपसोंग ते योदना ते गुनिश चोदलाम गुनी कने ग्युज जात नियंचे से थप्स तंग तुसिका खादा लामस्तो लोपठुक गुनला सरचेस तंग डॉक्टर गुनला मंचर ला कलचेस गुनिस्को ला शंस्को ला चातेनोक मिथे दुल्ला मिस कोला ले तंग करके लेना गा उजुंग आते छोकने टलिक जाते नो इतु लोप्टो कोला एनडीआई आईआईटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गुने स्कोला हा गोस्पेल तेनो जुनु गुने तोनचा ने लास्कुंग इस माय भारत इंडस्ट्री एसोसिएशन ने छोकतंग जिक न्यू दिल्ली नंगा टलिक जाते नो सलियांग सेलोन पो मनसुब मंद वेसुंग शा सालिन जिक तंग ग्यागरी जुनु गुन शुक्स ग्यागरी जुनु गुने शुक्स वेक्सिट भारत निस्तोंग जिपचु जब्दु ने डुब चुकचे सेना कोलचे सेनो मलाचाज
1: आज के कॉन्क्लेव का उद्देश्य है युवा और यूथ एक्टिविटी के साथ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन को जोड़ना। आपको लगेंगे कि यूथ एक्टिविटी के साथ हम इंडस्ट्रीज कैसे देश की दो शक्ति महत्वपूर्ण एक श्रम शक्ति जो श्रमिक देश के 45 करोड़ की जनसंख्या है जो सभी के कोई ना कोई सेक्टर में प्रोडक्शन में जिसका दायित्व उसको दिशा दर्शन सही मिले उनके लिए सही कार्य योजना बने देश निर्माण में वैसे दूसरी शक्ति युवा देश की 65% पॉपुलेशन बिलो 30 ये डेमोग्राफिक डिविडेंड है और दुनिया के लिए हमारा ये सॉफ्ट पावर इस शक्ति को निर्माण करके देश के निर्माण में उसका उपयोग कैसे करें और देश हमारा सब
0: लद्दाख उमलिंगला चैलेंज निस्तोंग इशु सरुक छिर नांगजिन गुजुक सोंगते नोक जमलिंग इना मोटर खोलो शुल थुपका ने ग्यालम थोशोस उमलिंग लेका बंगदुर जुलाइल दे छे स्ट्री जागा टालिक जा चेस चाने नांगा जुक स्पेस टॉप दा जिस खान बंगदुर जात खान चुरुक चिगे थुकक लेंचेस ला बिब लेन छरते नोक सरमंग सोसाइटी तंग सरमंग एडवेंचर टूर टालिक जात खान समिट और सरेंडर एक्सट्रीम अल्टीट्यूड हिमालयन रेस सीरीज इनांगा बंगदुर जात खान अहमदाबाद मुंबई दिल्ली हैदराबाद हल्द्वानी बेंगलुरु रायगढ़ थाने कोलकाता ले कारगिल चेन्नई गुन्ने थु सदा चेसिनो लद्दाख पुलिस देखक सोसो आईआरपी एसडीआरएफ वुमेन्स बटालियन तंग बॉर्डर बटालियन गुनी नांगा सब इंस्पेक्टर जनरल केडे रिपियांगन जुलेन चेसे स्टिंग जु विथ सिस्टम जुलाई दे चेस दुन बोर्तो दनोक लद्दाख पुलिस ओसपाचन रेस्टोस पाकुने स्टिंग जु गी सिस्टम मशरूंगा क्योंस्पार कंचे लालब जस पेलते होते नोक से मेंटो खोजुक चेस तंग इ मेंटो खेस के से नस से नंगार मन से मोर तक जाचे ला सोआ रिक पे गिरगन तंग लोप ठुकुने योंता ने लोप चोंग इस तब स्कोर जिक शंग इ नंगा जाते नोक इ तु लोप ठुक तंग गिरगन गुला रंगजी ने खोजुक इ नंगा स्के कन मनसर नसोक शिक गुज जाते नोक ले लुमटिन खान नसुल निमे ना थेंग जी संचे ला फुल कन गुन चीज चोक्स पेला में कंगे जरंग गुला संचे ला ब्लड चुस्ते होते नोक खाचंग गुंजुना यूट्यूब का एयर ले न्यू एक्सिका एयरले न्युज एट पर्सर बर्थे तङ फेसबुक एयरले न्युज चिका सञ्चेल अपलोड चस्त्यो तेनुक स्टिङ जुक पेका नचुल खाक च्या गुनियाङ लन्चिक सना जात ठिक से गुन पे लर्निङ सेन्टर एका फुटसल कोर्ट जाते योत कान भो सिस्क्यङ जोन बा विके सक्से ने स्क्याब जे ठिक से रिम्बो चे छोक जुक्ते योतु गुजुक स्टेन्डल जाते नुक लद्दाख से नङा छेस चि कोल ते फङका ने प्लास्टिक इचाला कोल चे लगक जातङ से योत कान भो ट्रान्सपोर्ट नङ पो लगले नै खोङ चिज लोकल थुपा चोचेज ला जुङ चे रि छोङले ला सिरगुन ङा शुक तङ पो शुलिन
2: इना तंग्यापो आकाशवाणी ले नेता ना सुल्तान कसता दिलचस्प नजर।

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

0: आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं संजीव कुमार। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा का बाजाबता आगाज, लगभग 12,000 यात्रियों ने पवित्र गुफा में किए शिवलिंगम के दर्शन। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने श्री अमरनाथ जी यात्रा को मुल्क की रूहानी रिवायत और सकाफती एतिहाद का लाफानी बाप दिया करार। मुतद शख्सियात और वफूद एलजी मनोज सिन्हा से मुलाकी, अवामी नौयत के मामलात पर हुआ तबादला ख्याल। और वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में तरक्याती अमल को दवाम बख्शने और लोगों के मियारी हयात में बेहतरी लाने का दोहराया अजम। अब पेश है खबरों की तफसील। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा आज यात्रा के दोनों पहलगाम और बालतल के रास्तों से बाजाबता तौर आगाज हो गया और आज पहले दिन लगभग 12,000 यात्रियों ने पवित्र गुफा में शिवलिंगम के दर्शन किए। इंतजामिया और दीगर महकमों और एजेंसियों ने यात्रा के एहसन इनेकाद के लिए हर तरह के इंतजाम मुकम्मल किए हैं और यात्री इन इंतजाम से काफी मुतमइन हैं। यात्रा के ताल्लुक से पेश है अनंतनाग से हमारे नुमाइंदे की ये रिपोर्ट।
1: नुनवन बेस कैंप से जिला के तरक्याती कमिश्नर डॉक्टर बिलाल मोहिदीन ने एसएसपी अनंतनाग अमूद अशोक नागपुरी और पैरामिलिट्री के सीनियर अफसरान के हमरा यात्रियों के पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जबकि बालतल गांदरबल से भी यहां के जिला के तरक्याती कमिश्नर ने यात्रियों के पहले जत्थे को अगले पड़ाव की ओर रवाना किया। सुहाने मौसम के बीच बम बम बोले की गूंज में यात्रियों का कहना था ये उनकी जिंदगी का अनोखा सफर है। जिला इंतजामिया ने पहलगाम और बालतल के मुख्तलिफ पड़ावों पे यात्रियों के लिए जदीद सहूलियात दस्तियाब रखी है। तिबी सहूलियात में भी काफी बेहतरी लाई जा रही है, जबकि सिक्योरिटी के भी कड़े इंतजाम रखे गए हैं। उम्मीद यही की जा सकती है कि इस बार मुख्तलिफ राज्यों से यात्रियों की बड़ी तादाद पवित्र गुफा में शिवलिंगम का दर्शन करने के लिए आएंगे। बालतल से साथी साबिर अयूब के साथ आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के लिए नुनवर बेस कैंप से मैं तसद्दुक रशीद।
0: दरी असना 3,865 यात्रियों पर मुश्तमिल दूसरा जत्था आज भगवती नगर यात्री निवास जम्मू से वादी पहुंच गया। इनमें से 1,735 यात्री बालतल जबकि 2,130 यात्री पहलगाम के रास्ते गुफा की तरफ रवाना हुए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के आगाज पर श्रद्धालुओं को मुबारकबाद दी है। श्रद्धालुओं के नाम एक खत में नरेंद्र मोदी ने श्री अमरनाथ यात्रा को मुल्क की रूहानी रिवायत और सकाफती इतिहाद में एक लाफानी बाब करार दिया। उन्होंने कहा कि बाबा बर्फानी के मुबारक दर्शन लाखों अकीदतमंदों की जिंदगी में एक नाकाबिल फरामोश और नेक लम्हा होता है। वजीर आजम ने यात्रा की बेहतर निजामत के लिए श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड और हुकूमत जम्मू कश्मीर की तारीफ की है। उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों की मेहमान नवाजी की भी सताइश की। उन्होंने यात्रियों से कहा कि वो वोकल फॉर लोकल जज्बे को तकवियत बख्शते हुए यात्रा अखराजात का कम से कम 10% हिस्सा मकामी अशिया की खरीदारी में सर्व करें ताकि जम्मू कश्मीर के मकामी लोगों और नौजवानों के रोजगार को बढ़ावा मिल सके। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने आज श्री अमरनाथ जी यात्रियों के नाम खसूसी पैगाम पर मबनी पैम्पलेट नुनवर और बालतल बुनियादी कैंपों में यात्रियों में तकसीम किए। इन श्रद्धालुओं ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इस पैगाम को एक खुश आयन पहल करार देते हुए कहा कि इसकी बदौलत यात्रा के जज्बे को तकवियत हासिल होगी और यात्रियों की हौसला अफजाई भी मुमकिन होगी। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन ने भी सालाना श्री अमरनाथ यात्रा के आगाज पर सभी श्रद्धालुओं को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि अमरनाथ यात्रा भारत की सबसे ज्यादा काबिल एहतराम और कदीम यात्राओं में शामिल है। इससे मुल्क की लाफानी रूहानी विरासत और अकीदे और भक्ति की जारी वसारी रिवायत की अक्कासी होती है। श्री अमरनाथ जी यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को आला मियार की खसूसी रेडियो नशरियात फराहम करने के लिए आकाशवाणी श्रीनगर में इस बरस भी एक मखसूस स्टूडियो कायम किया गया है। اسٹوڈیو سے آج باضابطہ طور نشریات کا آغاز کیا گیا. اس نشریات کی ابتدائی رسم ڈیپٹی ڈائریکٹر جنرل انجینئرنگ اور اسٹیشن کے سربراہ گروندر سنگھ نے انجام دی. اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ شردھالوؤں کے لیے اس نشریات کے ذریعے مختلف عقیدتی پروگرام نشر کرنے کے علاوہ ان تک ضروری معلومات بھی پہنچائی جائیں گی. اس موقع پر انجینئرنگ شعبے کے ڈیپٹی ڈائریکٹر پرمود کمار، آکاش وانی سری نگر کے پروگرام ہیڈ غلام رسول آخون، سینئر پروگرام ایگزیکٹو سمینا شاہ، پروگرام ایگزیکٹو سریش چندر مینا، آکاش وانی نیوز سری نگر کے سربراہ اشفاق احمد شاہ، سینئر براڈکاسٹر اشفاق لون اور خصوصی نشریات کے انچارج وسیم فاروق بھی موجود تھے. عدالت عظمیٰ کی ہدایت کے مطابق اس سال شری امرناتھ جی یاترا پر آنے والے یاتریوں کی زیادہ سے زیادہ روزانہ تعداد طے کی گئی ہے. شردھالوؤں کی سلامتی اور یاترا کے احسن انعقاد کے لیے اس پر عمل کرنا لازمی قرار دیا گیا ہے. جن شردھالوؤں نے ایڈوانس رجسٹریشن نہیں کرائی ہے ان سے کہا گیا ہے کہ وہ تتکال سہولت سے استفادہ کر کے اپنی رجسٹریشن کرنے کے بعد ہی جموں کشمیر پہنچ جائے. ایک سرکاری بیان میں بغیر رجسٹریشن کے جموں کشمیر پہنچے سبھی یاتریوں کو اپنی باری کا انتظار کرنے اور انتظامیہ کی طرف سے مقرر کی گئی تاریخ پر یاترا شروع کرنے کی تاکید کی گئی ہے. شمالی ریلویز نے بڑگام اور شری ماتا ویشنو دیوی کٹرا کے درمیان چلنے والی خصوصی وسٹا ڈوم ریل سروس میں توسیع کا اعلان کیا ہے. یہ ریل گاڑی اب 2 نومبر 2026 تک اتوار کے بغیر ہفتے میں 6 دن چلا کرے گی. شری امرناتھ جی یاترا کے پیش نظر یہ ریل گاڑی 31 اگست 2026 تک بانہال ریلوے اسٹیشن پر مختصر وقت کے لیے رکا کرے گی. شری کیلاک جوتشور ویدک سنستان ٹرسٹ کے صدر مہنت روہت شاستری نے آج لوک بھون سری نگر میں لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا کے ساتھ ملاقات کی اور جموں کشمیر میں سنسکرت زبان اور ویدک اسٹڈیز کو فروغ اور تحفظ دینے سے متعلق متعدد اہم امور پر تبادلہ خیال کیا. انہوں نے شری ماتا ویشنو دیوی یونیورسٹی کٹرا میں سنسکرت فیکلٹی آسامیہ وجود میں لانے کے لیے لیفٹنٹ گورنر کا شکریہ ادا کیا. دریاسنا آل کشمیر ہاؤس بوٹ اونرز ایسوسیشن کا ایک وفد اس کے چیئرمین منظور پختون کی قیادت میں ایل جی سے ملاقات ہوا. وفد نے ہاؤس بوٹ سیکٹر سے جڑے معاملات ایل جی کی نوٹس میں لائے. گاندھی گلوبل فیملی کشمیر کے ایک وفد نے اس کے جموں کشمیر کے صدر پدم شری ڈاکٹر ایس پی شرما کی قیادت میں ایل جی منوج سنہا کے ساتھ ملاقات کی. انہوں نے منشیات پر قابو پانے کے لیے نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت عملائی جا رہی سرگرمیوں کے لیے ایل جی کی تعریف کی. ایل جی نے اس تنظیم کے سماجی اقدامات کی ستائش کرتے ہوئے اس کے ارکان پر زور دیا کہ وہ جموں کشمیر میں امن کو فروغ دینے، نیز ماحولیات کو تحفظ دینے اور نوجوان اور خواتین کو با اختیار بنانے کے لیے اپنی کاوشیں جاری رکھیں. متعدد عوامی وفود اور نمائندوں نے آج رابطہ دفتر سری نگر میں وزیر اعلی عمر عبداللہ کے ساتھ ملاقات کی اور ترقیات، عوامی بہبود، تجارت، سیاحت اور دیگر سیکٹروں کے معاملات ان کی نوٹس میں لائے. ملاقات کرنے والوں میں ایم ایل اے حبا قدل، شمیمہ فردوس، ایم ایل اے جسروٹا راجیو جسروٹیا اور ایم ایل اے ڈوڈا معراج ملک شامل ہیں. وزیر اعلی نے وفود اور ارکان کے مسائل غور سے سنے اور انہیں یقین دلایا کہ موجودہ حکومت جموں کشمیر میں ترقیاتی عمل کو آگے بڑھانے، نیز لوگوں کی راحت رسانی کے لیے وعدہ بند ہے. یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں. خبریں آپ آکاشوانی کے موبائل ایپلیکیشن نیوز آن اے آر اور ڈی ٹی ایچ پر بھی سماعت کر سکتے ہیں. جموں کشمیر کو منشیات سے پاک کرنے کے لیے نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت سرگرمیاں جاری ہیں. ایک طرف اس دھندے میں ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی کی جا رہی ہے تو دوسری طرف اس لت میں شامل نوجوانوں کی بحالی کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں. پولیس نے آج ہندواڑہ، پلوامہ اور سوپور میں منشیات کے خلاف بیداری پروگراموں کا انعقاد کیا. پیش ہے منشیات سے متعلق لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا کا پیغام.
2: اسمگلنگ ضرورت تسکر کا پاسپورٹ، اس کا ڈرائیونگ لائسنس، کارڈ آدھار نمبر، اس کے آرمس لائسنس، سب کچھ نرست کر دیا جائے گا اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا. این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی، بینک اکاؤنٹ فریز کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا.
0: وزیر اعظم نریندر مودی کل راجستھان اور گجرات کا دورہ کریں گے. راجستھان کے دورے میں وزیر اعظم جودھ پور ہوائی اڈے کی نئی ٹرمینل عمارت کا افتتاح کریں گے. 480 करोड़ रुपए की लागत से तामीर शुदा इस इमारत में सालाना 20 लाख मुसाफिरों को संभालने की गुंजाइश है। नरेंद्र मोदी जोधपुर में नजर सानी शुदा उड़ान स्कीम का भी आगाज करेंगे। इस स्कीम का मकसद हवाबाजी के शोबे की क्यादत में तरक्की के अगले मरहले को तेज करना है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और जापान की उनकी हममनसब सनाई तकाची ने पाकिस्तान की सरहद पार दहशत पसंदी समेत हर किस्म की इंतहा पसंदी की जोरदार मजम्मत की है। भारत जापान सरबरा इजलास के बाद एक मुश्तरका बयान में दोनों लीडरों ने गुज़श्ता साल अप्रैल में पहलगाम हमले और नवंबर में दिल्ली हमले की सख्त मजम्मत करते हुए कहा कि इन हमलों के सभी कसूरवारों को कैफर किरदार तक पहुंचाया जाना चाहिए। दोनों वज़ीर-ए-आज़म ने एक खुशहाल भारत बहर-उल-काहिल के लिए हम ख्याल ममालिक के माबैन इश्तराक मजबूत करने के अज़्म का भी इजहार किया। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा है कि भारत फ्रांस स्ट्रेटजिक साझेदारी पायदार मजबूत और इकतरा पर मबनी तरक्की के अगले मरहले को आगे बढ़ाने के लिए बेहतरीन बुनियाद फराहम करती है। पेरिस में भारत फ्रांस कारोबारी गोलमेज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि आलमी मईशत तेजी से बदल रही है, जिसके अहम वजूहात तकनीकी तरक्की, सप्लाई चेन में तनव, तवानाई की मुंतकली और जियोग्राफी व सियासी तब्दीलियां हैं। वजीर खजाना ने फ्रांस के सनतकारों और सरमायाकारों को विकसित भारत 2047 के सफर में भारत का शराकतदार बनने के लिए मदऊ किया। उन्होंने मुश्तरका खुशहाली के हुसूल के लिए भारत फ्रांस स्ट्रेटजिक साझेदारी को मजीद मजबूत बनाने पर जोर दिया। सरकार ने वाजा किया है कि सिंतास आबी मुहिदा इस्लामाबाद की जानिब से सरहद पार दहशत पसंदी की मुसलसल सरपरस्ती के जवाब में ताहाल मुअत्तल है। नई दिल्ली में मीडिया ब्रीफिंग के दौरान वजारत खारजा के तर्जमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि सिंतास मुहिदे के ताल्लुक से भारत का मौकफ वाजा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को सरहद पार दहशत पसंदी की हिमायत से दस्तबरदार होना होगा। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने दिफाई फोर्सेज की सलाहियतों को बढ़ावा देने की गरज से 52,000 करोड़ रुपए के मंसूबों को मंजूरी दी है। वजारत दिफा के मुताबिक इनका मकसद भारतीय फौज के लिए जदीद तर्ज का दिफाई साजो सामान खरीदना है। आम लोगों की सहूलियत के लिए यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने आधार में ईमेल का इंदराज कराने की सहूलत दस्तियाब कराई है। ख्वाहिशमंद अफराद ईमेल का इंदराज या अपडेट आधार ऐप के जरिए कर सकते हैं। ये सहूलत 1 जुलाई को मुतारिफ की गई है और आइंदा 6 माह तक दस्तियाब रहेगी। डिप्टी कमिश्नर बड़गाम अथर आमिर खान की सदारत में आज जिला सतह की अमलावरी कमेटी की एक मीटिंग मुनक्कद हुई, जिसमें जिला से ताल्लुक रखने वाले उन नौजवानों की दरख्वास्तों का जायजा लिया गया जो कारखानादारी के ख्वाहिशमंद हैं। डिप्टी कमिश्नर ने मुतालिका हुकाम को मंजूर शुदा दरखास्तों के ताल्लुक से जरूरी कार्रवाई मुकम्मल करने की हिदायत दी। इस दौरान जिला तरक्याती कमिश्नर कुलगाम शहजाद आलम ने जिले में एकलाविया मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल पर जारी तरक्याती काम का जायजा लिया। उन्होंने स्कूल के बॉयज हॉस्टल के इल्तवा में पड़े काम मुकम्मल करने की हिदायत दी। भारत में क्रिकेट के कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने भारत और श्रीलंका के दरमियान अगले माह की 15 तारीख से होने वाली 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए शेड्यूल मुश्तर किया है। इस सीरीज का पहला मैच अगले माह की 15 तारीख से श्रीलंका के गाला इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा, जबकि दूसरा मैच 23 जुलाई से सिन्हाल स्पोर्ट्स क्लब कोलंबो में होगा। भारतीय टीम की क्यादत शुभमन गिल करेंगे। इस दौरान भारतीय टीम आजकल इंग्लैंड के दौरे पर है। भारत और इंग्लैंड के दरमियान खेले जाने वाली 5 T20 मैचों की सीरीज का पहला मैच बारिश की वजह से मनसूख कर दिया गया था। सीरीज का दूसरा मैच कल मैनचेस्टर में खेला जा रहा है। और अब मौसम। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान अक्सर मकामात पर हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 31.7 डिग्री, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 19.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 37.3 डिग्री, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 26.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। श्रीनगर में कल तुलुए आफ्ताब सुबह 5:24 और गुरुबे आफ्ताब शाम 7:46 पर होगा। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।

0: यह आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है मीडियम वेव के अलावा एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। समाइन समाप्त करें आज का तबसिरा।
1: आदाब, आज का तबसिरा लेकर मैं मुबशिर रफाई। रिवायती सालाना अमरनाथजी यात्रा 2026 के बाकायदा आगाज के मौके पर श्रद्धालुओं का पहला दस्ता आज सुबह बालतल और पहलगाम के बेस कैंप से हिमालय में वाका अमरनाथ की पवित्र गुफा में शिवलिंगम के दर्शन के लिए रवाना हुआ। गांधरबल और अनंतनाग से रवानगी आज सुबह सवेरे हुई। बालतल बेस कैंप में बूंदाबांदी हो रही थी, लेकिन श्रद्धालुओं के जोश खरोश में कोई कमी नहीं देखी गयी। बालतल गुफा के 14 किलोमीटर तवील ट्रैक पर जामे मैकेनिज्म फॉल कर दिया गया है। मौसम में मजीद उतार चढ़ाव की सूरत यात्रियों की रिहाइश के लिए बालतल और नुनवन बेस कैंप्स में रिहाइश का भरपूर इंतजाम कर दिया गया है। इसके अलावा मौसमी सूरत हाल खराब होने की सूरत में जम्मू से श्रीनगर तक मुख्तलिफ मकामात पर हंगामी पनाहगाहें भी बनाई गई हैं। गुफा के दर्शन के लिए आज से ये सिलसिला यात्रा के इख्तिताम तक पूरे 56 रोज तक जारी रहेगा। इस दौरान जम्मू से बालतल और पहलगाम के लिए काफिलों की रवानगी रोजाना की बुनियाद पर होगी और रोजाना की बुनियाद पर ही दर्शन होंगे। श्राइन बोर्ड के मुताबिक इस साल 3.5 लाख यात्रियों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन करवाई है और ये सिलसिला हनूज जारी है। 2 जुलाई को पहला जत्था 4,800 से जायद यात्रियों पर मुश्तमिल था, जबकि आज दूसरे जत्थे में 3,865 यात्री शामिल थे। अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने यात्रियों के लिए एक अहम एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक यात्रा के रास्ते पर जाने वाले यात्रियों की रोजाना ज्यादा से ज्यादा तादाद को तय किया गया है। यात्रियों की हिफाजत और यात्रा के हमवार इनेकाद के लिए इस रोजाना की हद की तामील लाजमी करार दी गई है। यात्रियों की सहूलत के लिए मुल्क भर में बैंक की शाखों और ऑनलाइन चैनल्स के जरिए यात्रा के आगाज से पहले ही पेशगी रजिस्ट्रेशन दस्तियाब कराई गई थी। ज्यादातर यात्री पहले ही इस सहूलत से फायदा उठा चुके हैं और अपनी रजिस्ट्रेशन पहले ही मुकम्मल कर चुके हैं, इसलिए तत्काल इन्हें ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन स्लॉट इंतहाई महदूद है। एडवाइजरी में तमाम यात्रियों से कहा गया है कि वो अपनी पेशगी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करने के बाद ही जम्मू कश्मीर पहुंचे, लिहाजा तत्काल सहूलत के तहत रजिस्ट्रेशन किए बगैर जम्मू कश्मीर पहुंचने वाले हजारों यात्रियों को जगह देना मुमकिन नहीं है। ऐसे यात्रियों से दरख्वास्त की गई है कि वो अपनी बारी का इंतजार करें और इंतजामिया की तरफ से मुकर्रर करदा तारीख पर ही सफर करें, क्योंकि बहुत से यात्री अपनी रजिस्टर्ड सफरी तारीख से पहले ही पहुंच रहे हैं। एडवाइजरी के मुताबिक किसी भी यात्री को उनकी रजिस्टर्ड तारीख से पहले सफर करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। एडवाइजरी में यह भी कहा गया है कि बगैर रजिस्ट्रेशन के जम्मू कश्मीर पहुँचने वाले यात्रियों से कहा गया है कि वो अपनी बारी का इंतजार करें। हर यात्री को यात्रा का मौका मिलेगा, लेकिन ये सिर्फ मुकर्रर करदा तरीकेकार और दस्तियाब सलाहियत के मुताबिक ही मुमकिन होगा। यात्रा के आगाज के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अमरनाथ यात्रियों के नाम एक पैगाम में अपील की है कि वो यात्रा के दौरान वोकल फॉर लोकल के जज्बे को अपनाएं। वज़ीर-ए-आज़म ने लिखा है कि हमें अपने सफरी अखराजात का कम अज कम 10% मकामी मसनुआत की

0: और यात्रा के रास्ते से वाबस्ता दूसरे लोग मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आए हुए यात्रियों की बेलोस खिदमत करते हैं और खिदमत का ये जज्बा सनातन सकाफत का जिंदा इजहार है। यात्रा बिलाशुबा कश्मीरियों के खैर सगाली जज्बे की वाज़ेह दलील होती है, जिसका बरमला इजहार वज़ीर आज़म ने अपने पैगाम में भी किया है। बेशक यही जज्बा हिंदुस्तान की रूह है, जिसकी तस्दीक कश्मीरी अवाम दहाइयों से करते आए हैं और करते रहेंगे। तबसरा खत्म हुआ, इजाजत दें, शब बख़ैर।
1: Gajwe Akashwani Lene Juin Jigdain, Tane Chutot Rgat Charuk, Kasata Junugunifia Dikrim Sanatat, Dikrim Pulkan, Kunzang Tishkitang, Stanzin Dolgar, Yang Dikrimikotik Tatkan, Lobzang Namgyal.

0: प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RPLI इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: मिंगुर वांगपे सालकाने इलुगुनांग सनाचात।

दासंगे चिरंगी मिंगुर वंग पे सलकने लुरिक सनाजत्स ngaje akashwani le ne juin chik tam em chane chuto gyat tans karma jip chu janga charu kasata akashwani delhi ne samachar sandhya news at 9 yang te singh ne urdina nasul sanachar

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। सरकार ने कहा, सिंधु जल संधि अभी भी स्थगित। पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद करना होगा। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की राह पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 6 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। रक्षा खरीद परिषद ने युद्ध की तैयारी मजबूत करने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। फ्रांस में पिछले सप्ताह रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के कारण लगभग 9,000 लोगों की मौत। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात राउंड ऑफ 32 के मैच में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने स्पष्ट किया है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करेगा, तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में ये जानकारी दी।
1: India's position on the Indus Waters Treaty.
2: सिंधु जल संधि पर भारत का रुख पहले की तरह स्पष्ट है। पाकिस्तान के लगातार सीमा पार आतंकवाद को मदद देने के जवाब में सिंधु जल संधि को रोक दिया गया था। पाकिस्तान को विश्वसनीय तरीके से सीमा पार आतंकवाद को मदद देना बंद करना पड़ेगा।
0: तीस्ता नदी के समग्र प्रबंधन और पुनरुद्धार परियोजना पर श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश में भारत की विकास परियोजनाएं दोनों देशों के बीच तय सहमति के आधार पर चलती हैं।
1: India's development assistance.
2: बांग्लादेश में परियोजनाओं के लिए भारत की विकास सहायता आपसी सहमति से तय किए गए रोड मैप पर आधारित है। इसकी नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। तीस्ता नदी प्रोजेक्ट पर हमारे विचार पहले ही बांग्लादेश को बता दिए गए हैं। तीस्ता मुद्दे पर अपने समग्र दृष्टिकोण में हम इससे जुड़े सभी घटनाक्रमों को ध्यान में रखेंगे।
0: वेनेजुएला से भारत लाए गए एक भारतीय नाविक के शव से अंग निकालने की खबरों पर उन्होंने कहा कि भारत ने इस मामले को वेनेजुएला सरकार के सामने उठाया है। भारत ने इस मामले की जल्द और निष्पक्ष जांच करने को कहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की ओर बढ़ रहा है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में वार्षिक निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% हासिल किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तु निर्यात में लगभग 15% और सेवा निर्यात में 10-11% की वृद्धि का अनुमान है। श्री गोयल ने कहा कि सरकार की निर्यात रणनीति में प्रत्येक राज्य, जिले और उद्योग क्षेत्र को समान महत्व दिया जा रहा है। श्री गोयल ने कहा कि 38 विकसित देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों ने भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर खोले हैं। उन्होंने कहा कि भारत के साथ व्यापार और आर्थिक साझेदारी को बढ़ाने में दुनिया भर में रुचि बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में रहेंगे। उन्होंने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी।
3: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर योग्याकार्ता का भी दौरा करेंगे। वे प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स जाएंगे, जहां भारत इंडोनेशिया के साथ काम करने की योजना बना रहा है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है, इसलिए भारत और इंडोनेशिया यहां संरक्षण कार्य पर सहयोग करेंगे।
0: प्रधानमंत्री दूसरे चरण में 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। इस दौरान महत्वपूर्ण खनिज, साइबर सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला, उभरती प्रौद्योगिकी और अन्य द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत होगी। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। श्री मोदी न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पिछले 40 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड की यह पहली यात्रा होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों की क्षमता बढ़ाने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में मिले इन रक्षा खरीद प्रस्तावों से सेना, नौसेना और वायुसेना की लड़ाकू क्षमता बढ़ेगी। इसके अलावा आज के दौर में बदलती सुरक्षा चुनौतियों को बेहतर ढंग से सामना करने में भी मदद मिलेगी। भारतीय सेना के लिए एंटी ड्रोन इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली आकाश तरंग खरीद को मंजूरी दी गई है, जो भारतीय सेना को दुश्मन के ड्रोन से प्रभावी सुरक्षा देगी। इसके अलावा मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली, बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली और जेट आधारित कामिकाजे ड्रोन प्रणाली की खरीद को मंजूरी दी गई है। वहीं भारतीय नौसेना के लिए मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन, जहाज से संचालित मानव रहित हवाई प्रणाली और इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम के लिए भूमि आधारित परीक्षण केंद्र शामिल है। इसके अलावा भारतीय वायुसेना के लिए अधिक ऊंचाई पर लंबे समय तक उड़ान भरने वाले फिक्स्ड विंग प्लेटफॉर्म और अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद को भी मंजूरी दी गई है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: गृह मंत्री अमित शाह तथा कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की समीक्षा बैठक की। श्री शाह ने कहा कि सरकार अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और संभावित सूखे की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। उन्होंने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को सतर्क रहने और किसानों को उपयुक्त फसलों की बुवाई के बारे में सलाह देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। पंचायती राज मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया गया। पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि 16वें वित्त आयोग ने पंचायतों के लिए 80% मूल अनुदान और 20% प्रदर्शन आधारित अनुदान प्रस्तावित किए हैं।
5: 16वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक राज्यों में कैसे तैयारी करें, कैसे परफॉर्मेंस ग्रांट का पूरा लाभ उठा सकें, सभी बिंदुओं पर चर्चा करके सभी राज्यों को उसके लिए तैयार करने के लिए आज की यह कार्यशाला थी। 73वें संविधान संशोधन के तहत ये राज्यों का विषय है और राज्यों के सहयोग से ही हम पंचायतों को आत्मनिर्भर बना सकते हैं।
0: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश में तोतापुरी आम उत्पादक किसानों की समस्याओं के आकलन के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति के गठन का निर्देश दिया है। श्री चौहान ने कहा कि तोतापुरी आम उत्पादकों की आय और आजीविका की रक्षा करना सरकार की प्राथमिकता है। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। सूत्रों ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को इस मामले में मेटा को तलब करने का निर्देश दिया है। इस बीच मंत्रालय के अधिकारियों ने व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर शुरू किए जाने के नोटिस के बाद आज मेटा के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। मेटा को इस संबंध में विस्तृत स्पष्टीकरण देने के लिए 3 दिन का समय दिया गया है। सरकार ने बैट, बीएमएस, इपोक आई आयन और लॉसिगी एप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल एप स्टोर से हटाने का निर्देश दिया है। ये कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। इन एप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से बंद करने के लिए किया जा रहा था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि पत्रकारिता को हमेशा सत्य, ईमानदारी और उच्च पेशेवर मानकों के प्रति समर्पित रहना चाहिए। नई दिल्ली में ऑर्गेनाइजर साप्ताहिक पत्रिका के 80वें स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौरान ऑर्गेनाइजर साप्ताहिक और उसकी सहयोगी पत्रिका द मदरलैंड संविधान और लोकतंत्र की आवाज थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अयोध्या में श्री रामलला मंदिर में चढ़ावा चोरी की घटना की निंदा की है। संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने कहा कि ये घटना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे पूरे समाज तथा भगवान राम के भक्तों की आस्था को गहरी ठेस पहुंची है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। कश्मीर घाटी में अमरनाथ यात्रा के पहले दिन कुल 12,168 श्रद्धालुओं ने अमरनाथ जी गुफा में शिव की पूजा अर्चना की। कड़ी सुरक्षा और व्यवस्थाओं के बीच तीर्थयात्रियों ने गुफा के दर्शन किए। इससे पहले अधिकारियों ने तीर्थयात्रियों को सलाह जारी कर कहा था कि वे केवल अपनी पंजीकृत तिथियों पर ही यात्रा करें। इस बीच तीर्थयात्रियों का दूसरा जत्था बालतल और नुनवान बेस कैंप पहुंच चुका है और कल सुबह तड़के पवित्र गुफा की ओर रवाना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी बालूतरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। प्रधानमंत्री बालूतरा के पचपदरा में देश की पहली हरित क्षेत्र आधारित एकीकृत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। श्री मोदी जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री गुजरात के सांणंद में भारत सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत सीजी सेमी के सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। निर्वाचन आयोग ने आज 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विभिन्न जिलों के मीडिया और संचार अधिकारियों का दूसरा सम्मेलन आयोजित किया। इसमें 260 से अधिक अधिकारी शामिल हुए। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निर्वाचन आयोग का हर निर्णय संविधान, चुनाव कानूनों और समय समय पर जारी लिखित निर्देशों के आधार पर पूरी पारदर्शिता के साथ लिया जाता है। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 262 अंक बढ़कर 77,764 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 95 अंक की बढ़त के साथ 24,271 दर्ज हुआ। दक्षिण पश्चिम मानसून आज गुजरात, राजस्थान और हरियाणा के कुछ और हिस्सों तथा मध्य प्रदेश के शेष भागों में आगे बढ़ गया। मौसम विभाग ने कल गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में अगले दो दिन तेज बारिश हो सकती है। अगले दो से तीन दिनों के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और सिक्किम में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। इस बीच महाराष्ट्र के कई हिस्सों में आज भी बारिश हुई। हमारे मुंबई संवाददाता से और जानकारी।
6: आज महाराष्ट्र के कई हिस्सों में बारिश हुई, जिसमें तटीय इलाकों में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई। रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और कोल्हापुर जिलों की नदियों में जलस्तर बढ़ गया है। आईएमडी के अनुसार कल से 7 जुलाई तक राज्य में बारिश और तेज होने की संभावना है। कई जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है, जबकि कोंकण और नजदीक के घाट इलाकों में कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा बारिश होने की संभावना है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ के कुछ हिस्सों में आंधी तूफान की भी संभावना है। आईएमडी ने मछुआरों को 7 जुलाई तक समुद्र में न जाने की सलाह दी है। इस बीच एहतियात के तौर पर एनडीआरएफ की 5वीं बटालियन ने महाराष्ट्र और गोवा के संवेदनशील जिलों में बचाव दल तैनात कर दिए हैं। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: फ्रांस में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के दौरान पिछले सप्ताह मरने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी है। 22 से 28 जून के बीच लगभग 9,000 लोगों की मौत हुई है। ये पिछले सप्ताह की तुलना में 29% अधिक है। पेरिस में सबसे अधिक मौतें हुई। अस्पतालों में निर्जलीकरण, दिल का दौरा, गुर्दे की जटिलताओं और अन्य लू से संबंधित बीमारियों से पीड़ित मरीजों की संख्या में भारी वृद्धि देखी गई। कांगो में इबोला वायरस के इलाज के लिए दो संभावित दवाओं का क्लिनिकल परीक्षण शुरू हो गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने बताया कि इस परीक्षण में पहले मरीज को शामिल कर लिया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मौजूदा प्रकोप में अब तक 438 लोगों की मौत हो चुकी है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में रात 11:30 बजे ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। एक अन्य मैच में तड़के 3:30 बजे अर्जेंटीना का मुकाबला केप वर्डे से होगा। राउंड ऑफ 32 का अंतिम मैच कल सुबह 7 बजे घाना और कोलंबिया के बीच खेला जाएगा। इससे पहले स्पेन, पुर्तगाल और स्विट्जरलैंड ने अंतिम 16 में प्रवेश किया। स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराया। पुर्तगाल ने क्रोएशिया को 2-1 से, जबकि स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर अगले दौर में जगह बनाई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने कहा, सिंधु जल संधि अभी भी स्थगित। पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद करना होगा। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की राह पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 6 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। रक्षा खरीद परिषद ने युद्ध की तैयारी मजबूत करने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। सरकार बच्चों

0: Jiji so no palangias tene lokso le larga nyampu tene grozuks tene yisting ne tene ngata le lokting kange tene assistant director program tene skujap sona mausu le tene juapulin yerang dengche ga skute tene diri tene gasu sumsha pochala la. Angmala chuli ni sumon so skujap sa chen doji tena chola chotuk susi gosyong ka shafile tene chamgali tene nantakle yang yezhang. Sangmala tene yezhe lokting kange.
1: आकाशवाणी ले के असिस्टेंट डायरेक्टर प्रोग्राम सर सोनम वांगचुक ले स्वागत संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. देवियों सज्जनों, अब वो खूबसूरत पल मैं ये कहूँगी जिसका हम सब जो हैं बहुत ही प्राउड फील करते हैं, गर्व फील करते हैं. आज हम सब के लिए बहुत ही गर्व और खुशी का पल है क्योंकि जो है हाल ही में श्री अली मोहम्मद जी रिटायर्ड इंस्ट्रूमेंटलिस्ट फ्रॉम आकाशवाणी लेक वो जो है संगीत नाटक अकेडमी अवार्डी 2025 के लिए इनका नाम जो है अनाउंस हुआ है. इसके लिए जो है आकाशवाणी के पूरे परिवार की ओर से इनको हार्दिक हार्दिक बधाई देते हैं और आकाशवाणी जो है इन्हें सम्मानित करना चाहते हैं. मैं इसके लिए जो है आज के मुख्य अतिथि लद्दाख बुद्धिज एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सर सिरिंग दोर्जे लाग्रुप जी से अनुरोध करना चाहूँगी मंच पर पधार कर जो है अली मोहम्मद जी को जो है सम्मानित करें अप्रिसिएशन लेटर के साथ. संगीत प्रेमी के लिए प्रेरणा का स्रोत है. बहुत बहुत हार्दिक हार्दिक बधाई देना चाहूँगी श्री अली मोहम्मद जी आकाशवाणी के रिटायर्ड इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हैं. आपको आकाशवाणी की ओर से सम्मानित किया जा रहा है अप्रिसिएशन लेटर अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट के साथ. सर आपको हार्दिक हार्दिक बधाई. साथ ही जो है मैं डीडीजी आकाशवाणी ले को भी मंच पर जो है आने के लिए गुजारिश करना चाहूँगी. हम जो है हमारे लिए बहुत ही खुशी और गर्व का बात है क्योंकि हम जो है श्री सोनम गुरु जो रिटायर्ड हेड क्लर्क आकाशवाणी ले के हैं तो सर को अप्रिसिएशन लेटर के साथ सम्मानित करना चाहेंगे. मैं सर को भी अनुरोध करना चाहूँगी सर को कि मंच पर पधारने के लिए. सोनम गुरु सर ने जो है अपनी सेवा के दौरान आकाशवाणी ले आकाशवाणी कारगिल और दूरदर्शन को अपनी सेवा दी. उसके बाद जो रिटायरमेंट के बाद भी उनका जो रिश्ता आकाशवाणी परिवार से उतना ही मजबूत बना रहा. अब जो है हर खास अवसर की शुरुआत जो है एक मधुर स्वागत जो है गीत के साथ हो तो इससे बेहतर क्या हो सकता है. इस जो है विशेष अवसर को और भी विशेष या खास बनाने के लिए वेलकम सॉन्ग तैयार किया गया है स्पेशली 90 वर्षगांठ के अवसर पर. विशेष रचना को आकाशवाणी के जो है रिटायर्ड पद्मश्री अवॉर्डी गुरु नंगल जी ने लिखा है. इन्हें कंपोज किया है आकाशवाणी के इंस्ट्रूमेंटलिस्ट मैडम सिरिंग छोरोली जी ने. तो चलिए आज की जो है इस संगीत में सफर की शुरुआत जो है इस वेलकम सॉन्ग इस खूबसूरत सॉन्ग के साथ करते हैं.

बहुत बहुत धन्यवाद आकाशवाणी के कलाकारों द्वारा खूबसूरत जो है ये डांस, और लद्दाख की संगीत परंपरा को अगर किसी आवाज़ ने एक अलग ही पहचान दी है तो उनमें एक नाम बड़े ही अदब और सम्मान के साथ लिया जाता है, अभिनेत्री शुलामो जी, और जिन्हें सारे कहते हैं नाइटिंगेल ऑफ लद्दाख भी कहा जाता है, और संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड ही इस अवार्ड से अभिनेत्री शुलामो जी को और अपने मधुर आवाज़ से जो है लद्दाख की गज़ल को जो है एक नई पहचान, एक अलग ही पहचान दी है। और हमें जो है आज हम सभी को ये खुशी है कि ये समृद्ध संगीत जो है परंपरा, गज़ल परंपरा को आगे बढ़ा रही है। उनकी भांजी कुंजिस डोलमा जी जो है एक प्रसिद्ध लद्दाखी गज़ल गायिका के रूप में जो है हमारे पूरे लद्दाख के क्षेत्र में जाने जाते हैं, तो गज़ल जो है खूबसूरत सोलफुल गज़ल प्रस्तुत करने आ रहे हैं कुंजिस डोलमा जी।

तो आज हम जब आकाशवाणी के गौरवपूर्ण 90 वर्ष मना रहे हैं, तो इसी खास अवसर पर एक ऐसे गीत, एक ऐसे प्रेरणादायक गीत जो है हमारे कलाकारों द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है, छोड़ो कल की बातें। जी हाँ, तो ये गीत जो है फिल्म हिंदुस्तानी हम हिंदुस्तानी से लिया गया है, और ये अमर जो है देशभक्ति गीत है जो हमारे कलाकारों द्वारा प्रस्तुत करेंगे। पद्मयांचल जी और शिवम पुंसुक जी इस गीत को जो है यहाँ पे परफॉर्म करेंगे।

0: बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। इसी के साथ जो है हमारे आकाशवाणी के 90 वर्षों को समर्पित ये संगीत संध्या यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद है आप सभी ने आनंद लिया होगा, और विशेष तौर पर जो है हमारे आज के मुख्य अतिथि जो है लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट तालसिंग दोरजे लाब्रुंगले, और साथ ही साथ सभी रिलीजियस हेड्स का भी हम आभार व्यक्त करते हैं। हम आभार व्यक्त करते हैं लद्दाख एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेज लेके डेप्यूटी सेक्रेटरी श्री सेवंग पलजोर जी और एकेडमी के सभी स्टाफ को भी, उन्होंने जो हमें लोसावा हॉल दिया, और साथ ही साथ जो है जितने भी आवश्यकता थी यहाँ पर जो उन्होंने योगदान दिए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आभार व्यक्त करना चाहेंगे हमारे सम्मानित जो है रिटायर आकाशवाणी के स्टाफ कर भी हम जो है दिल से आभार व्यक्त करना चाहेंगे, और स्पेशली जो है कई दिनों से हमारे कल्चरल कोऑर्डिनेशन में सहयोग दे रहे मैडम सोनम यांगचंद चंदूसले और सेवंग पलदन जी का भी हम आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी आकाशवाणी के कलाकारों का भी आभार व्यक्त करते हैं, सभी म्यूजिशियंस टेक्नीशियंस वॉलंटियर्स और साथ ही साथ मीडिया के रिप्रेजेंटेटिव्स, आप सभी का हार्दिक हार्दिक धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। उम्मीद है आप सभी ने आज के संगीतमय समारोह का जो है आनंद जरूर लिया होगा। एक बार फिर से आप सभी का आभार व्यक्त करते हैं इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: दाग संगे जरंगे आकाशवाणी छुक्सते लोगुपचो छकाने सेवे नंगा मिक्साले लोयांग से डिग्रिम जिक्सा नजत्स डिग्रिम फुलकान इनपेन रिक्सिन नूरपू ngaje akashwani le ne juin jik tangin chane chu cho chu charuk ina botang yam po ngaje dring dikrim ngispa wo thon dikrim tang pe fya thore nga to chu cho dun tang skarma ngi shu sang ka yang jalin tete chuk pa ngaja gongspa salazat jule jai hind